प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्स्केयं राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि। ओम शम। सभी आदरणीय श्रोताओं को पंडिता पार्वती शुभ का सादर सप्रेम अभिवादन। आज के इस प्रातःकालीन शुभ बेला में जागृति कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है सत्यार्थ प्रकाश।

0: लिखने का उद्देश्य और प्रयोजन। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का रचयिता आर्य समाज का प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद।
1: कल 14 जून को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ने आज दिन की 11 बजे से क्यूबिप नगर पालिका में रक्तदान का आयोजन किया है। इससे पूर्व एक पद यात्रा भी निकाली जाएगी। इस आयोजन के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन युवाओं से कम उम्र से ही रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जो न सिर्फ अन्यों की जान बचाने में मदद दे सकता है बल्कि खुद के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि लेबनान सहित पूरे मध्य पूर्व में सभी सैन्य कार्रवाइयां समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता कायम हुआ है। जानकारियों के अनुसार इस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस संधि पर हस्ताक्षर होंगे। इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जल्द ही तेल सप्लाई सामान्य पर लौटेगा। उनके इस बयान के तुरंत बाद वैश्विक मंडी में तेल के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर रह रहकर हमारे इलाके पर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद दक्षिण पूर्व और ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर 50 तक की ऊंची लहरें उठेंगी, इसलिए आज रात से दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। साहली इलाकों पर न्यूनतम 22 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:43 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 के मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: RM3 Radio. Radio. You're listening RM3 Radio.

नाज जान अली सबाल खैर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अंजू टेक्निक की मदद दे रही हैं। आज के प्रोग्राम में कुरान पर बात होगी। आगाज कुरान मजीद की तिलावत से करने जा रहे हैं। बागौर व अदब समात फरमाएं।

कुरान करीम का एक एजाज है कि ये सीनों में महफूज हो जाता है। दुनिया में सिर्फ यही एक किताब है जिसके हाफिज लाखों की तादाद में दुनिया में हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये कुरान करीम की खसूसियत है जिसका ज़िक्र ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत में फरमाया है कि कुरान करीम की आयात अहले इल्म के सीनों में महफूज रहती है।

हज़रत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। फरमाते हैं कि कुरान करीम की असल जगह सीना है, जबकि किताबत अम्र जायद है, यानी कुरान करीम का असल मकाम ये है कि उसे सीने में महफूज किया जाए। अल्लाह ताला ने उसे दूसरे असबाब से बेनियाज कर दिया है। यह अल्लाह ताला का कलाम है जो बेनियाज ज़ात है, इसलिए उसका कलाम भी बेनियाज है और ज़ाहिरी असबाब का मोहताज नहीं।

हर तहरीर और कलाम फना हो जाएगा मगर कुरान करीम फिर भी मौजूद रहेगा जो उन असबाब से बेनियाज है और लाखों अहले ईमान के सीनों में महफूज है। कुरान करीम के चंद नुस्खे सबसे पहले हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में तहरीर किए गए, उनमें से दो नुस्खे असली हालत में आज भी मौजूद है। एक तुर्की में है जो इस्तंबुल के टोपकापी म्यूज़ियम में है और दूसरा लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है।

ये कुरान करीम का एजाज है कि 14 साल कब लिखे जाने वाले असल नुस्खे मौजूद है और आज मराकश से इंडोनेशिया तक किसी मुस्लिम मतबे का छपा हुआ कुरान करीम लेकर तकाबुर कर लें, इबारत के एतबार से कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक हमको तौफीक दे कि हम कुरान को हर वक्त सीने से लगाए रखें, हम कुरान को पढ़ें और समझें और उस पर अमल भी करें। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन कराम, सबार खैर, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। तकनीकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: 94.96
1: with RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Danny Sayaranga.

Your music, your request.

94.6 98.2 MHz మీద RM3

जय माता दी भक्तों नमस्कार, मैं हूँ पूनम और आप जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन से भक्ति में शक्ति के साथ। भक्तों, हर सुबह भगवान एक नया मौका देते हैं। कल जो रहा वो गया और आज का दिन बिल्कुल नया है, तो चलो इसे भक्ति से भरते हैं।

0: RM3 रेडियो।
1: भक्तो, बप्पा के बारे में आज एक बात तो शायद आपने कभी सोची ना हो। बप्पा का एक दांत टूटा हुआ है जिसे कहते हैं एक दंत, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले पूजे जाते हैं, सबसे ज्यादा प्यारे हैं। भक्तो, बप्पा सिखाते हैं टूटे होने से महानता कम नहीं होती, आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो आज जो भी अपनी कमी लगती है आपको अपने में, उसे कमजोरी मत समझो। बप्पा की तरह अधूरे भी पूजने हो जाते हैं, बस आपको

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: RM3 रेडियो।
2: भक्तों, शिव को ओघरदानी कहते हैं, यानी जो मांगो वो देते हैं। असुरों ने भी मांगा, उन्होंने दिया। देवताओं ने मांगा, उन्होंने दिया। क्योंकि महादेव कभी भेद नहीं, उनके लिए सब एक हैं। भक्तों, आज हम यही सीखें, जो आपके पास है थोड़ा किसी के साथ बांटो। शिव भी खुश होंगे और आपका।

0: RM3 रेडियो।
1: भक्तो, राम जी ने 14 साल वनवास में बिताए, 14 साल जंगल में बिना महल के, बिना राज सिंहासन के। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं गई उनकी जिंदगी से, वो था उनका धैर्य और उनका विश्वास। भक्तो, जिंदगी में वनवास आते ही हैं, कभी नौकरी का, कभी रिश्तों का, कभी सेहत का, लेकिन राम जी की तरह हमेशा धैर्य रखो।

0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो।
1: नारायण के हजार नाम हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम। हजार नाम यानी हजार रूप, हर जरूरत के लिए एक रूप। जब डर लगे तो अभय देने वाले नारायण, जब थक जाओ तो विश्वास देने वाले हरि, जब खो जाओ तो रास्ता दिखाने वाले श्री हरि। भक्तों, आज जो भी चाहिए बस नारायण से मांगो, उनके पास

0: RM3 रेडियो।
1: प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा का नाम दुर्गा कहाँ से आया? दुर्ग यानी वो जगह है जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो, और दुर्गा यानी जो उसे मुश्किल जगह से भी बचाए। भक्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, उस वक्त माँ दुर्गा को याद करो। वो दुर्गम रास्तों की देवी है, वो रास्ता निकालती है। जहाँ कोई रास्ता नहीं होता, वहाँ दुर्गा साथ चलती है।

तो आप जुड़े थे रेडियो मनोरंजन से पूनम के साथ। आज की भक्ति, आज की शक्ति और माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। खुश रहिए, हिम्मत रखिए और याद रखिए, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जय माता दी, जय

0: चुके हैं, अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ अदिति। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार। गैल सादाल हत्या मामले में दो और संदिग्धों दोगिन यान कान्युएन और उसके बेटे शहाद यान कान्युएन को हिरासत में लिया गया है। शनिवार को रेजिडेंस लाकिया में भड़के एक हिंसक झगड़े में 28 वर्षीय गैल सादाल की मौत हुई थी। उस पर चाकू से हमला किया गया था। लिमाओयान में हिल्स व्यू रिसेप्शन हॉल के पास शनिवार रात को 54 वर्षीय एक महिला रीता सिबरत की मौत एक दुर्घटना में हुई। उसके बेटे की लॉरी एक ढलान पर खड़ी थी जब वो अचानक चल पड़ी और महिला से जा टकराई। इस मामले में जांच शुरू की गई है और लॉरी का तकनीकी मुआयना भी किया जाएगा ये जानने के लिए कि अगर उसमें कोई तकनीकी खराबी पाई जा रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी ताकतों द्वारा किए गए सिलसिलेवार मिसाइल हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और एक ऐतिहासिक कैथेड्रल को की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनियन प्रधानमंत्री ने इसे देश की ऐतिहासिक विरासत का गहरा आघात बताया। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 61 फ्लोरियाल रोड वाकवा में, नंबर 61 फ्लोरियाल रोड वाकवा में 89 साल की 89 years old की लेडी सारा मुलन जो हामिद मुलन की बीवी थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 3:30 बजे इनके मकान नंबर 61 फ्लोरियाल रोड वाकवा से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: You're listening RM Free Radio.

0: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: जी हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का स्वागत करते हैं रेडियो मनोरंजन आर एम थ्री पर. मैं हूं विदिता सारदीनी, आई हूं आपके अपने प्रोग्राम में. सुहाना सफर यहां शुरू होता है. भूलिएगा नहीं कि हमारा टिकटॉक थोड़ी देर में लाइव होगा और आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं आपका स्वागत करती हैं. आज सोमवार है और सोमवार 15 जून अपना जन्मदिन मना रहे हैं. हैप्पी बर्थडे जी. 12:08 सादित रहिए.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं. प्रोग्राम है सुहाना सफर. वेदिता के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन RM3 पर. कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, आप मुझे बताइएगा जरूर कहां से सुन रहे हैं. और अभी फिलहाल के लिए तो हमारा टिकटॉक लाइव है रेडियो मनोरंजन पर. आप हमें वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं. वहां बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ आपके डेडिकेशंस भी होते हैं जो हम मिस नहीं करते हैं और मिस करना भी नहीं चाहते. बस फरमाइशी थोड़ी गाने जो हैं उसको कोशिश करते हैं अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने की. अदरवाइज़ आपको तो पता ही है कि यहाँ पर हमारे जो सिलेक्शन है इसमें भी कहीं ना कहीं आपके कुछ फरमाइशी गाने छुपे हुए होते हैं. तो अभी ऐसा करते हैं, हमारे टिकटॉक के जो दोस्त हैं उनको हम हेलो हाई कह देते हैं. रेशमा राम की सुन, दीप्ति गंदावरी, नमस्कार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. सुल्ताना खानदाय, हाय, कैसे हो आप? और यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे लोग मैसेज भेज रहे हैं. और आपका नाम तो मुझे पता नहीं आपने क्या लिखा है, लेकिन थैंक यू सो मच, आई एम फाइन एंड हाउ आर यू. चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हमारी प्यारी सी आयशा आ गई हैं. जल्दी जल्दी आती हैं, जल्दी जल्दी भाग जाती हैं. बस

हेलो कहने के लिए आती हैं, अच्छा लगा जानकर। हेलो ए जी, आपके लिए गाना होगा हाय देव एंड हाय रायन, हाउ आर यू, सो गुड टू सी यू माय डियर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारे साथ कहते हैं कि आज मेरी चाचा असलम का बर्थडे है, एंड चलो आप उनको याद कर रहे हैं तो हम भी प्रे करेंगे कि वो जहाँ भी रहें भाई आपके दिल में हमेशा रहे। रेशमा हाय, कैसे हो आप? यहाँ पर कौतिक सुबीता हमारे साथ है जी, नमस्ते, आपको कहेंगे वेलकम। हवा का झोंका जी, बिल्कुल हवा की झोंके की तरह आती हैं आयशा और उड़ जाती हैं। कल्याणी हरी, नमस्कार, स्वागत है आपका। इंदिरा जी एंड यहाँ पर रिव्या जी गौपा से सुल्ताना हमें याद करी है, वहीं पे शवि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू सो मच माय स्वीराज। एंड चलिए नेक्स्ट गाना आपके लिए, नमस्कार सुबी इंदिरा जी, आपके दोस्त शाम के लिए अगला गाना मिस्टर नूरुद्दीन जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम फ्रांस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चलिए इसी के साथ अभी अगला गाना होगा आप सभी लिसनर्स के नाम, और यहाँ पर हमारे साथ गीता जुड़ गई हैं फ्रॉम स्कॉटलैंड। हाय गीता जी, हाउ आर यू डूइंग टुडे, कैसी हैं आप? साथ देते रहिए, गाने गुनगुनाते चलिए।

सुहाना सफर। चलिए जी, 12:20 हुए हैं। विनीता का साथ दे रहे हैं आप लोग रेडियो मनोरंजन RM3 पर, और मैं यहाँ लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम सुहाना सफर। सुहाना सफर में अब हमारे साथ और भी बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं, गाने की भी फरमाइश आ रही है। सो वी हैव अनिल जी, जो मैं तेरे लिए फिल्म के गाने की फरमाइश कर रही हैं, वहीं पे केशनी हमारे साथ हैं। पूर्णिमा मोती कहती हैं कि थर्सडे को उनके हस्बैंड का बर्थडे है, उनका नाम है सुनील, तो उनको अभी से हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हाँ, साथ में सरिता थापा, सुबी आपने भी गाने की फरमाइश की है, नोट कर लिया हमने। हमारे साथ है अफीसा एंड साइलेश, उनके लिए नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे। और साथ में यही गाना जो है हम डेडिकेट करते हैं पीकू के नाम। और शर्मिला बुदन जी, हेलो जी, कैसे हो आप? वैसे आपका ओ कहीं गायब है, ऐसा ना करो, हेल में से अगर ओ निकल गया तो हेल हो जाता है। तो ये गाना आपके लिए। और गीता जी कहती हैं कि हमें आपका नाम याद है, थैंक यू सो मच। रेशमा जी, चलो जी, आपकी भी फरमाइश हमने नोट कर लिया है। और मेरे ख्याल से ये गाना हमने फ्राइडे को चलाया था, है ना? आई डोंट नो, तुम्हारी आँखें, आई थिंक ये आँखें देख कर हम सारी, ये गाना हमने चलाया था फ्राइडे को। चलो अभी के लिए कविता अनु हमारे साथ हैं, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच शर्मिला जी। और गाना तो आपके लिए हम ज़रूर चला रहे हैं। गीता जी कहती हैं, हम सो एक्साइटेड, मैं जुलाई में मॉरिशस आ रही हूँ, हम भी बहुत खुश हैं आपके लिए। हाय माथी, हाउ आर यू? एंड यहाँ पर साहिल आ गए हैं साथ देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी वो कहते हैं बॉस नहीं है ना, बॉस आ गए। दोनों साथ में मिलकर प्रोग्राम सुनते हैं। वीमा पेंची, आपका भी स्वागत है। RM3 Radio.

0: है तो खुलाओ।
1: एक डोर में होते हैं दो मोती,
0: एक

0: दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। आशा भोसले के साथ जब मिलती है आवाज रफी साहब की तो कमाल तो ऐसे ही होता है। गाना पसंद आया आपको?
1: सुहाना सफर।
0: वेलकम टू सुहाना सफर वेदिता के साथ ऑन रेडियो मनोरंजन RM3। और चलिए यहाँ पर हमारे टिकटॉक पे बहुत सारे दोस्त जुड़ गए हैं, नाम लेते हैं उनका। वी हैव प्रिया, मेनका दीनू, वीना एंड वी हैव तारा नरसिंह, मन प्रिया, यजेश्वरिया पाडू और इंदिरा राम रेखा, सना सीता फ्रॉम होलैंड और वहीं से हमारे साथ है RJ भूपी फ्रॉम न्यूजीलैंड। क्या बात है, क्या बात है। वैसे उनका भी शो चल रहा है और वो भी सनसेट शरारत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू। और यहाँ पर पप्पू हमारे साथ है, हेलो पप्पू कैसे हो। अनुष्का मोहन हमारे साथ, हेलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर पोंटो कानूनी से हमारे साथ इंदिरा जी जुड़ी हुई हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। साथ में यहाँ पर सुमन जो है वो भी हमें प्रणाम करिए जी। वैसे UK में जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको हम हेलो कहना चाहेंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने से हमें सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक हो चाहे हमारा रेडियो लाइव आज सुन रही हैं, थैंक यू। करुणा जी कैसे हैं आप? एंड कहती हैं कल मैंने आपको देखा था, हमसे बात हुई थी। ओके करुणा जी, शायद मुझे याद है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और मेनका जी आपको शमी कपूर बहुत पसंद है, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी उनके कई सारे गाने हैं हम पेश करेंगे आपके लिए। एंड वी हैव वनेसा विलियम्स फ्रॉम UK, हाय, कहती हैं लव ओल्ड सॉन्ग्स, कौन पसंद नहीं करता, सब करते हैं, मैं भी करती हूँ इसलिए तो यहाँ पे होती हूँ। रूबा गंगा आपका स्वागत है, कवि किशन, वी हैव संजय बुधवा जी, थैंक यू सो मच। एंड साथ में यहाँ पर दीप्ति जी, क्या बात है, साथ हमारे जुड़ी हुई हैं। एंड ऑल्सो वी हैव ललिता, हाय ललिता कैसी हो। चलो अभी कहते हैं, साहिल कहते हैं कि आज सिर्फ गाना सुनेंगे, कोई कॉमेंट या रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ मुझे पता है कि आपको बहुत काम है, चलिए आप अपना काम

कीजिए और हम यहाँ पर आपके साथ हैं। और चलते चलते यहाँ पर वेलकम करते हैं परी का हमारे इस प्रोग्राम में। भाई उनके बिना तो हमारा प्रोग्राम अधूरा होता है। वो भी आती हैं बिल्कुल आयशा की तरह हवा का झोंका बनके और तूफान बनके सब पे झा जाती है। आरती सुकन का वेलकम और यहाँ पर डबलिन से जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं हेलो ओवन हाय हाउ आर यू।

कोई हम सबको ऐसे दोस्तों की तलाश होती है जो हमारे हर मोड़ पे साथ दे, जो हमारे साथ दूर चले, दूर बहुत दूर, और सफर को बनाए सुहाना। सुहाना सफर और हमारे सफर को सुहाना बनाते हैं हमारे वो लिसनर्स, हमारे वो दोस्त जो हमारे साथ हैं, चाहे वो हमारे अगल बगल ना हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से हमारे सुन रहे हैं, लेकिन होते हैं हमारे साथ ज़रूर। चलिए यहाँ पर उन्हीं को याद करने का टाइम आ गया है। हमारे साथ परी आ गई है और है विमला लक्ष्मण, आपका हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। वी ऑल्सो हैव खेमराज जोशी फ्रॉम नेपाल। हेलो नेपाल वालों, कैसे हो, साथ दे रहे हो, थैंक यू। नीरू रामसन, दीप्ति जी, और वी हैव सना कहती है गाना बहुत प्यारा था, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मनप्रिया कहती हैं संगम फिल्म का गाना हो जाए, ठीक है, अगर आपने मांगा है तो संगम फिल्म का गाना भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, और साथ में यहाँ पर जो गाना होगा हम नजीमा जी आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। और अजय हाय, लॉन्ग टाइम, कहाँ रह गए। करुणा भोला कैसे हो आप, आपने भी गाने की फरमाइश की है। वैसे तो ये गाना बहुत फास्ट है थोड़ा सा, चलो देखते हैं, पहले सुन लेते हैं फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं, अगर चला पाए तो चलाएंगे, नहीं तो। रेखा जी स्वागत करती हूँ मैं आपका। मनोज प्रतिया जी नमस्कार, आपकी वाइफ विमला के लिए हम गाना डेडिकेट करेंगे, और फिल्म बड़दा, ये कौन सा फिल्म है भाई। हाय रॉबर्ट, रॉबर्ट आ गया चलो। रेशमा जी स्वागत हैं, और हमारे साथ हैं हरिचंद्र पासवान जी, नमस्कार, आपका भी हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और गाना हम कहें तो साथी फिल्म का कैसा रहेगा।

चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम चलाएंगे माया के लिए. कहते हैं कि मेरी जान माया के लिए जो रहती है वो बस है. साथ में विशाल, आदिशराज, भरत, यश आपने भी गाने की फरमाइश की है. इंदिरा, मुताव सिंह, राजेश और प्रकाश के लिए गाना मांग रहे हैं. वहीं पे केशनी कुमार हमारे साथ जुड़े हैं. बस ये वाला भी गाना आपको बहुत पसंद आएगा, वन ऑफ माय फेवरेट्स. ये कालिया फिल्म का गाना है. मंडे हो और ऐसे गाने ना चले हो ही नहीं सकता. अरे भाई ये नींद तो अभी भी आंखों में ऐसे बसे रहते हैं कि पता नहीं ऐसा लगता है कि अभी आंखें बंद हो जाए. इस मंडे के चक्कर में कितने सारे लोग हैं जो संडे को सोते नहीं हैं. और आजकल वैसे भी वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है थक गए होंगे. चलो मूड बदलते हैं.

0: जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: You're listening to Suhana Safar Radio Manoranjan RM3 पर मैं हूँ वेदिता, आपका साथ दे रही हूँ। और चलिए इसी के साथ हम जो अगला गाना होगा डेडिकेट करते हैं अपनी इन प्यारी प्यारी दो बहनों के नाम जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर लिस्ट में अब हम जोड़ लेते हैं आयशा, परी, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें बहुत प्यार भेजते हैं, और उनमें से एक है वनीदा। वनीदा तोपलान, आपका हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में और बहुत प्यार से आती हैं। तो पहला चीज़ कहती हैं हाय दी, तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपको दिल से अपना मानते हैं। रक्षा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम गुलशन कावलेसर जी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। और कृष्ण कुमार, आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं हमें बताइएगा, ज़रूर हमें भी अच्छा लगेगा। दीप्ति जी, आप बताओ आप कैसे हो। और यहाँ पर फिजी से कृष्ण कुमार हमारे साथ हैं। तो मैं आपको बताऊँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन, ये MBC यानी मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का एक रेडियो चैनल है। और जितने भी लोग टिकटॉक पे हमें सुन रहे हैं, होप कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो लोग रेडियो पे हमें सुन रहे हैं, और टिकटॉक पे हम लाइव हैं तो ये लाइव आप देख भी पाओगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ हैं राज किशोर सिंह जी, हेलो जी कैसे हो, एंड थैंक यू सो मच विशाल जी, आपको कहेंगे हैव अ गुड डे। देवी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर साधना गिबिया दिखेल से, और आज कहते हैं कि और

गाना प्लीज आप हमारी फैमिली के नाम डेडिकेट कीजिएगा. थैंक यू सो मच, जरूर करेंगे. गाना कौन सा होगा? अरे भाई गाना तो कुछ ऐसा होगा जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाओगे. It's time for some gappuchi gappuchi gum gum. चलो एक साथ जैसे च्युइंग गम.

0: चलिए जी प्रोग्राम में उत्तम जी का स्वागत करते हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं उनका भी नाम ले लें।
1: सुहाना सफर।
0: तो यहाँ पर शिरीन हमारे साथ हैं, शाहिद इकबाल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फतेह मिर्ज़ा आपका भी हम स्वागत करते हैं और यहाँ पर दिन के एक बजने को हैं और हम बढ़ने जा रहे हैं समाचारों की ओर। तो ऐसा करते हैं, गाना सुनते हैं और पहुँचते हैं समाचारों की ओर, मिलते हैं उस पार। तीना टोरी आपका हम स्वागत करते हैं एंड यहाँ पर फरानाज के लिए गाना होगा उनके सभी फैमिली के लिए और साथ में गीता कालीचंद नमस्ते स्वागत है आपका। साथ में ये गाना जो होगा हम मरियम आपके नाम डेडिकेट करते हैं और आपने गाने की फरमाइश की है, फिलहाल अभी के लिए जगजीत सिंह की आवाज में पेश है अर्थ फिल्म का ये गजल। मनीता जी हर हर महादेव स्वागत है आपका।

0: 94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: संक्षिप्त समाचार आपके साथ याचना। नमस्कार आपको।
2: नमस्कार मनीष मां, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। शनिवार रात को मोताइलों के पास लिमारियान के हिल्स व्यू रिसेप्शन हॉल में एक दर्द के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। 54 साल की रीता सिवारत की मौत एक ट्रक से कुचल जाने से हुई। ये ट्रक उसके बेटे युधिष सिवारत की थी जो एक ढलान पर पार्क की गई थी और अचानक चल पड़ी। तकनीकी खराबी की जाँच का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स ट्रक का परीक्षण करेंगे। घायल सदाल हत्याकांड के सिलसिले में दो अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दोहिन यान कान्युएन और उनका बेटा शहाद यान कान्युएन शामिल हैं। दोनों पर इस सोमवार को हत्या के आरोप पर अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि शनिवार शाम रेजिडेंस लाक्यूआ की रॉबर्ट स्कॉट गली पर हुई एक हिंसक झड़प में 28 वर्षीय घायल सदाल की मौत हो गई। चाकू से किए गए गंभीर हमले में लगी चोटों के कारण उनकी जान गई। पुलिस द्वारा जुटाई गई शुरुआती जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोहिन यान कान्युएन और घायल सदाल के बीच तीखी बहस हुई थी। इस हमले के तीसरे संदिग्ध मोहम्मद शेख बुलाकी, जो दोहिन यान कान्युएन के सबसे छोटे बेटे और झड़प के दौरान घायल भी हुए थे, फिलहाल पोटलुई के जितू अस्पताल में पुलिस निगरानी में भर्ती है। देश में पहली हिंदी संस्था तिलक विद्यालय अपनी शताब्दी मना रहा है। उसकी स्थापना को 100 साल हो गए। इस अवसर पर कल मोताइलोंग में हिंदी प्रचारणी सभा की सीट पर लोकमान्य तिलक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारतीय मूल के लोकमान्य तिलक ने देश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति सहित कई अन्य मंत्री, सांसद और भारत से आए डेलीगेशन के सदस्य शामिल रहे। वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद दोनों पक्ष स्थायी और व्यापक समझौते तक पहुंचने के लिए आगे की वार्ता जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकाबंदी हटा दी जाएगी। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 73 इंक अमान स्ट्रीट रोजिल में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड के जनाब सामान याकूब जो समाह के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व सर्जेंट ऑफ पुलिस थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज सुपहर 3 बजे उनके मकान नंबर 73 इंकियामान स्ट्रीट रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए सहमौतें का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
3: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: You're listening to RM3 Radio. My

0: खाना सफर खाना सफर
1: All right, दिन के 1:09 हुए हैं मंडे 15th of June आप विनीता का साथ दे रहे हैं प्रोग्राम चल रहा है रेडियो मनोरंजन RN3 पर पुराने गाने आपके लिए लेकर आए हैं 2 बजे तक तो हमारे सेकंड आवर में आपका हम स्वागत करते हैं यहां पर लक्ष्मी नेहा निलानी विहावलीना मोहम्मद अनंतो मोहिनी अकरम डेजी विदुला सिगुबिन श्यामा महराली जोड़ी एस के रोहित फ्रॉम सुरीनाम हाय रोहित एंड वी हैव ऋषिका उत्तम शिरीन और शाहिद इकबाल खान तो हमारे साथ हैं ही जुड़े हुए और यहां पर जो नेक्स्ट गाना होगा वो हम देवी जी आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हुए हमारे गाने एंजॉय कर रहे हैं इंदिरा लौटन जी आपके साथ भी जुड़ गई हमारे साथ तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो गाना होगा ये गाना भी हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए वैसे गाने की फरमाइश आई है प्यार किसे कहते हैं मुझे नहीं पता प्यार किसे कहते हैं अगर आपको पता है तो बता दो हमारा जो शो है हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है इस समय ये रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पे लाइव है वैदेही जी स्वागत है आपका हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं एकदम मस्त मूड में हैं मंडे वाले मूड में हैं यानी कि मंडे में मन लगाना होता है तो मन लगाने आए हैं और आपकी परेशानियों को बस उड़न छू करने आए हैं

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: वही मुझे तो वो वाला प्यार पता है जो मेरे और मेरे लिसनर्स के बीच में है, जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। कभी फोन करते हैं 4028070 पे, कभी उनके मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर 5250620200 पर, या तो फिर वो जुड़ जाते हैं हमारे टिकटॉक लाइव के साथ जहाँ पे हमारी बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रीति घोंगुप से नेक्स्ट गाना लीना के लिए जिनका बर्थडे है, और साथ में यहाँ पर पुष्पा जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवनगर नेपाल से, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे दोस्त, वैसे उनके भी मैसेजेस में पढ़ रही हुई गाना सत्यमेव जापानीज दिल में हो तुम, ये कौन सा गाना है भाई नहीं समझ में आया, श्वेता सीता और देवांश के लिए, और यही गाना हम गाना डेडिकेट करते हैं अनुराधा जी आपके लिए। वैसे ये जापानीज वाला कौन सा गाना है मुझे पता नहीं, प्लीज बताइएगा।
2: RM3 रेडियो
1: ये गाना भी मेरे फेवरेट गीतों के लिस्ट में से है, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। गिरवर कैसे हैं आप, बहुत दिनों के बाद आए हो प्रोग्राम में, स्वागत है आपका। एंड वी हैव ऐश रूपलाल जी, नमस्कार, स्वागत है।

0: वो भी आ गए हमसे जुड़ने के लिए उनसे बात न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता
1: सफर
0: दिन के 1:20 हुए हैं चलिए जानते हैं कौन है हमारे साथ हेलो नमस्कार
2: हेलो प्रणाम विदिता जी
0: प्रणाम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपना नाम बताइएगा
2: हम तो सुहन हैं
0: सुहन जी कहाँ से ओके और बताइए गाना कौन सा
2: सब ठीक है आपके आप यहाँ
0: बताइए क्या सुनना चाहेंगे आप
2: हम एक ये फिल्म है एक लड़का एक लड़की
0: एक लड़का एक लड़की
2: उसका वो उसका गायक है उदित नारायण और
0: यहाँ पर हम सिर्फ पुराने गाने चलाते हैं सोहन जी
2: छोटी सी दुनिया मोहब्बत की है
0: अनफॉर्चुनेटली हम नए गाने नहीं चलाते लेकिन हमारे पास बहुत सारे पुराने गाने हैं हम जरूर आपके लिए कोई खूबसूरत सा गाना चुन लेंगे
2: थैंक यू
0: जी नहीं जी ये गाना हमारे लिए जरा चलाना मुश्किल है हम कोशिश करेंगे लास्ट में क्योंकि अभी हमारे पास और भी बहुत सारी फरमाइश
2: है मालूम है ना ये छोटी सी दुनिया मोहब्बत की
0: जी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ पर 90s के गाने नहीं चलाते सिर्फ 80s के गाने चलाते हैं तो मैं आपके लिए 80s का कोई प्यारा सा गाना चुन लूंगी वैसे भी हमारे पास बहुत सारी फरमाइश हैं थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग चलिए जी एक और कॉलर है उनसे भी मिल लेते हैं हेलो कोई बात नहीं लगता है चले गए रेडियो सुन रहे होंगे आप सुनिए ये गाना और ये प्यारा सा गाना अरुणा और सूर्या के नाम

का साथ दे रहे हैं और ऐसे में चलिए खूबसूरत गीतों का ये जो सिलेक्शन है इसमें अब शामिल करते हैं शागिर्द फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना खास लेकर आए हैं आपके लिए और ये गाना हम डेडिकेट करेंगे अजद महमूद के नाम अनुराधा. वी हैव जोहरा फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कहते हैं कि नाउ दिस इज़ माय हैप्पी प्लेस, आई जस्ट लव लिसनिंग टू सुहाना सफ़र रेडियो मनोरंजन. थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट, हमारे लिए बहुत बहुत बहुत बहुत क्या कहूँ मैं, बहुत मेरे पास शब्द नहीं है. You left me speechless. बस आपने यूँ समझ लीजिए कि आपने हमें अपने दिल में जगह दे दी है. तो थैंक यू सो मच जोहरा. एंड वी हैव सूर्या जो साथ दे रहे हैं, कहते बारिश हो रही है और बरसाती मौसम में मूड रोमांटिक होता है तो कुछ गाने ऐसे होने चाहिए. ऑफकोर्स वैसे मेरे पास आपके लिए एक प्यारा सा गाना है जो मैं बाद में चलाऊंगी, अभी नहीं, अभी तो शागिर्द फिल्म का गाना मैंने बताया वो चला रही हूँ. सो नेक्स्ट गाना होगा सरवीर शेखर के लिए, अभी सलून में काम कर रहे हैं और वहीं पे साधना और मुकेश लाल माटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनका भी स्वागत है. रेशमा किश्तो, आपका भी हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं. हाँ, सूर्या ने कहा फिजी आइलैंड में बारिश हो रही है, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, पता है ना मैं गजनी की बहन सजनी. ऋषि देव हमारे साथ हैं, कैसे हो ब्रो, सब ठीक. खतीबा मंगर आपका वेलकम है. सरिता नमजान आपका भी स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम में. चलिए जब बात चली है गाने की तो

0: ना सफर खाना सफर
1: रिम झिम गिरे सावन भाई जहां पर बारिश हो रही है गाना एकदम फिट आता है जहां पे नहीं तो वहां पर हम अपने गीतों की बारिश कर रही हैं तो वहां पर भी फिट हो जाता है।

0: ठीक है, यहाँ पर हम पामेली के लिए गाना डेडिकेट करेंगे, लव ना, उनकी मम्मी आशा फकीर के लिए गाना मांग रही हैं जो पिछले हफ्ते से हैं विश्वराज गोपी, आज 48 ईयर्स ओल्ड के हुए हैं, तो इंदिरा जी की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर गाना जो होगा, चलिए भाई नीलिमा जी आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। हाय एश, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो आप? ये है राजेश फ्रॉम वाकवा, एंड साथ में अभी गाना जो होगा हम आपके नाम डेडिकेट करेंगे। यहाँ पर फ़ोन बज रहा है, जैसे आप हेलो कहते हो फ़ोन कट जा रहा है, या तो फिर ऐसा होता है कभी कभी जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली फ़ोन के उस पार रेडियो सुना जाता है, मुझे खुद की आवाज़ आ रही होती, कोई हेलो हाय कहता नहीं है। मेक श्योर जब आप हमसे बात करें फ़ोन पर तो आपका जो फ़ोन है आपके हाथ में हो, आपके कान में हो, आप सुन रहे हो जब हम कहें हेलो, तो रेडियो ना सुनकर आप सीधे हमसे बात करें। कौन है हमारे साथ, चलिए जानते हैं। हेलो
1: हेलो बेबीता,
0: हेलो जी, कैसे हैं जी मनोज जी?
1: How are you doing?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं?
1: Long time I am not talk to you.
0: Of course, मुझे पता है।
1: तो आपको पता है क्यों?
0: जी आप बताएं कैसे हो, कहाँ हो?
1: क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ।
0: अच्छा कोई बात नहीं, वो बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए कि आप गाना क्या सुनेंगे, तब तक मैं गाना ढूंढ लेती हूँ।
1: नहीं पहले आप ये बताइए कि आपकी तबीयत ठीक है, परिवार सब ठीक ठाक?
0: सब बढ़िया, सब ठीक है। लाइन में बहुत सारे लोग लगे हैं बात करने के लिए।
1: मैं आपके शो हमेशा एंजॉय करता हूँ।
0: थैंक यू जी, थैंक यू।
1: सुनता हूँ, हंसता हूँ, रोता हूँ, सब कुछ करता हूँ।
0: सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच।
1: अभी मुझे मन कर रहे हैं सुनने को मुकद्दर का सिकंदर।
0: मुकद्दर का सिकंदर, और वो कौन सा गाना होगा जो आपको आज खुश करेगा?
1: जी ने गाए हुए है वो मुकद्दर का सिकंदर।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग
1: देना। सोहन परिवार, गया सिंह आश्रम और बेबीता जी के परिवार सब ठीक।
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू जी, बाय बाय। चलिए एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं हमारा। कौन है हमारे साथ, चलिए जानते हैं। हेलो
2: जी।
0: हेलो जी, नमस्कार जी, आपका नाम?
2: नमस्ते।
0: नमस्कार जी,
2: मैं उमा हूँ।
0: उमा जी कहाँ से बोल रही हैं आप? जी बताइए उमा जी, क्या सुनेंगी आप?
2: देखो ये गाना है संदेशा आते हैं
0: जी। अनफॉर्चुनेटली मैंने बार बार रिपीट किया कि हम नए गाने नहीं चलाते हैं और हम सिर्फ पुराने गाने चलाते हैं। 80s का कोई गाना है तो वो हम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 90s के भी गाने नहीं चलाते।
2: आप पुराने गीत सुनाते हैं,
0: पुराने गाने चलाते हैं। अभी मेरे पास एक फरमाइश आई है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से, और ये किशोर दा की आवाज़ में है, आप चाहे तो
2: मेरे लिए आप हो सकते हो
0: जी,
2: अगर तुम साथ हो।
0: ठीक है जी, थैंक यू सो मच उमा जी, हमें याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: ये गाना बजाएंगे?
0: मैं ढूंढती हूँ गाना, कौन सा गाना है मैं ढूंढती हूँ, फिर चलाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
2: तमाशा फिल्म का?
0: नए गाने नहीं चलाते हैं हम,
2: पुराने गीत है ये क्या नहीं है।
0: थैंक यू सो मच उमा जी, मैं आपसे बात करती हूँ अभी थोड़ी देर में, फोन ना काटे।
3: RM3 Radio Radio Radio
0: जी, हम समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि नए गाने नहीं चलाते और सिर्फ पुराने गाने चलते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, ये गाना हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैसे मुझे पता है तमाशा फिल्म जो है इसमें मेरे ख्याल से रणबीर कपूर हैं और इसमें है दीपिका पादुकोण, ये नई फिल्म का गाना है।

चलिए जी, अगले गाने के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रेमा की तरफ से क्लागाओ फिली आना, और साथ में सेबास्टियन के लिए गाना होगा अनु शारदा रिसोल रीता, जो कहते हैं उनकी जितने भी CW टीम है बनमिया में उनके लिए। माया रामदेव जी का स्वागत है, हर हर महादेव आपको। करुणा साकुन, वी हैव प्रेमा फ्रॉम फ्रांस, गाना कविता चन्नू के लिए। मिमी एंड कैलाश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और चलिए इसी के साथ साकुन जी आपके लिए भी नेक्स्ट गाना होगा, और जगदीश जी आपका भी हम स्वागत करते हैं। वी हैव धनुष बाबना, हाई हाउ यू, कैसे हो आप, सिलेक्शन को पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। और एक गाना बेटी के लिए ज़रूर, तो यहाँ पर गाना उनके नाम, और साथ ही साथ ये जो नेक्स्ट गाना होगा हम डेडिकेट करते हैं हमारे उन तमाम लिसनर्स के लिए जिस समय एक्चुअली ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में हैं और हमारे गाने सुन रहे हैं।

जी जो कि हमारे साथ काम करती हैं किरण जानकी जी, आज उनकी मम्मी का जन्मदिन है और रेडियो मनोरंजन के साथ वो जुड़ी रहती हैं और आज मम्मी जी का जन्मदिन है तो ऐसे में और भी सारे लोग हैं जन्मदिन मना रहे हैं। जितने भी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करें उनके लिए गाना है और हम यही दुआ करेंगे आप हमेशा खुश रहें, हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहें और बस प्यार से हमारे प्रोग्राम सुनते रहे। गाना जाएगा अविनाश, वशिष और करण के नाम। और शारदा जी थैंक यू सो मच, मीला रामा आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।

चलिए गाना रेहा और विकास के लिए शारदा शैला वाइतलिंगम रोशन साथ में अमिता चतु हमारे साथ हैं उनके लिए भी डेडिकेट करते हैं और मीनू अतवाल पूनम शंभू रवीना फ्रॉम फिजी आइलैंड एंड वी हैव तानिया इसी गाने के साथ जाने का समय हो गया है थैंक यू सो मच धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए अगेन फ्रॉम फिजी आइलैंड्स फिजी वालों आई लव यू सो मच थैंक यू चलिए चलते हैं मिलते हैं आपसे अब वेंसडे को आ जाएंगे 12 बजे साथ देने के लिए ख्याल रखिएगा थोड़ी देर में संस्कृति की बातें प्रोग्राम आप सुन पाएंगे यानी कि समाचारों के बाद

0: आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार शनिवार रात को मुतालों के पास दिमागियान के हिल्स व्यू रिसेप्शन हॉल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया 54 साल की रीता सिबारत की मौत एक ट्रक से कुछ ले जाने से हुई ये ट्रक उसके बेटे युधिश सिबारत की थी जो एक ढलान पर पार्क की गई थी और अचानक चल पड़ी तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स ट्रक का परीक्षण करेंगे गायल साढ़ाल की मौत के सिलसिले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है इनमें दोहिन यानकान्युआन और उनका बेटा शाहद यानकान्युआन शामिल हैं दोनों पर इस सोमवार को हत्या के आरोप में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और तलब है कि शनिवार शाम रेजिडेंस लाकुआ की होबेस्टत गली पर हुई झड़प में 28 साल के गायल साढ़ाल की मौत हो गई चाकू से उस पर वार किया गया था पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोहिन यानकान्युआन और गायल साढ़ाल के बीच बहस हुई थी इस मामले के तीसरे संदिग्ध मोहम्मद शेख बुलाकी जो दोहिन यानकान्युआन के सबसे छोटे बेटे और झड़प के दौरान घायल हुए फिलहाल पोटलुई के जितु अस्पताल में पुलिस निगरानी में भर्ती हैं देश में पहली हिंदी संस्था तिलक विद्यालय अपनी शताब्दी मना रहा है यानी उसकी स्थापना के 100 साल पूरे हो गए हैं इस अवसर पर मोतालोंग में हिंदी प्रचारनी सभा की सीट पर लोकमान्य तिलक की प्रतिमा का अनावरण किया गया भारतीय मूल के लोकमान्य तिलक ने देश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति कई अन्य मंत्री सांसद और भारत से आए डेलीगेशन के सदस्य शामिल रहे विदेश में वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस का दौर जारी है नेदरलैंड्स और जापान के बीच खेला गया मैच आज ड्रॉ रहा 2-2 स्वीडन का सामना हुआ ट्यूनिशिया से इस मैच में ट्यूनिशिया की भारी हार हुई स्कोर रहा स्वीडन 5 और ट्यूनिशिया 2 ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वेडर को हराया 1-0 आज रात को लोगों की नज़र एक और रोमांचक मैच पर होगी ग्रुप एच में स्पेन खेलेगा काबो वर्दे के खिलाफ और रात 11 बजे बेल्जियम का सामना होगा इजिप्ट से ये रही अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार नंबर 73 इंक्यामान स्ट्रीट रोजिलमी नंबर 73 इंक्यामान स्ट्रीट रोजिलमी 90 साल के 90 इयर्स ओल्ड के श्री समा याकूब जो समा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व सर्जेंट ऑफ पुलिस थे उनकी मृत्यु हो गई है उनका जनाजा शाम 3 बजे उनके मकान नंबर 73 इंक्यामान स्ट्रीट रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए सैमौतें का कब्रस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट 3 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
4: Your kind of music all day all night right here on your one and only station

संस्कृति की बातें नमस्कार, संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। संस्कृति की बातें इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे शिक्षण और संस्कृति पर, किस तरह से शिक्षण संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। ख़ास तौर पर महात्मा गांधी संस्थान में जब हम भोजपुरी के शिक्षण के क्षेत्र में बात करें तो संस्कृति बहुत हद तक इसके साथ जुड़ी हुई है। और इस प्रोग्राम का प्रसारण होता है MBC और आप्रवासीघाट ट्रस्ट फंड के मिले जुले सहयोग से। और आज हमें टेक्निक पर सहयोग दे रहे हैं शिव, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं उरुषा और हमारी प्रोड्यूसर हैं रत्नामाला, जिनका हम धन्यवाद करते हैं। और आज शिक्षण और संस्कृति पर बात करने के लिए हमारे साथ एक विशेष

0: मेहमान हैं, आप हैं श्री जय गणेश दाव सिंह। नमस्कार।
1: नमस्कार किरण जी,
0: आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जय गणेश दाव सिंह, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं MGI में, डिपार्टमेंट ऑफ भोजपुरी फोलक्लोर एंड ओरल ट्रेडिशंस का, और साथ में आप कई वर्षों से लेक्चरर हैं वहाँ पर। आप हमेशा व्याख्यान देते हैं, तो इस संबंध में आज हम चाहते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ें, संस्कृति की बातें प्रोग्राम में, और हमें बताएं कि महात्मा गांधी संस्थान, जो अपने आप में संस्कृति की एक मूर्ति है, वहाँ पर जब आप शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो किस तरह से इसमें संस्कृति पग पग पर आती है, किस तरह से आज जब आप भोजपुरी पढ़ा रहे हैं, भोजपुरी और फोलक्लोर साथ में ओरल ट्रेडिशंस यानी कि मौखिक इतिहास के साथ जब आप जुड़े हुए हैं, तो कैसे इसका संबंध सीधा संस्कृति से है।
1: बहुत धन्यवाद किरण जी, हमके आज मौका दिला। तो हमने के जोन परंपरा है संस्कृति से जुड़ल है, खास करके महात्मा गांधी संस्थान के हमर जोन विभाग बाटे भोजपुरी और लोक संस्कृति से जुड़ल है, तो हमने के जोन काम है कलेक्शन है, हमने के जोन लोक परंपरा बाटे, हमने के जोन मौखिक परंपरा जैसे बोल ले हव, तो उनकर संकलन करे के कलेक्शन ऑफ ओरल ट्रेडिशंस, तो ई रिकॉर्डिंग के माध्यम से होवेला। हमने के पुरखन के मुखारबिन उनकर जोन पाउस लाइफ जैसे बोलल जाला, जे उनकर जोन खान पान क्लोज गहने आगे के जोन परंपरा रहल, उनका जोन जीवन
0: के तरीका रहल,
1: उन पर हमने खोजकार करीला जा। और साथ ही साथ जैसे अभी बोलला शुरुआत में कि महात्मा गांधी संस्थान जोन है संस्कृति के मूर्ति है, तो हमने के जोन संस्थान बाटे उनकर में अलग अलग स्कूल बाटे, खास करके हमने के जोन मोशन एंड एयर स्टडीज है, हमने के एगो फोल्क म्यूजियम बाटे, हमने के जो फोल्क म्यूजियम ऑफ इंडियन इमिग्रेशन अवकाश और से जुड़ल बाटे, तो इन सब से हम के बुझाला संस्कृति जो न बहुत ही जुड़ के बहुत ही गहरा संबंध बाटे।
0: जरूर, और अभी जब बता इंडियन आर्काइव्स, तो इंडियन आर्काइव्स और हमने के पुरखन के जन जड़ी बा किधर से अलन जा, एक बारे में शोध कर बताऊ तो हौजे चाहिए जाए के
1: जी।
0: तो मतलब कि संस्कृति के जो जड़ी बा वो महात्मा गांधी संस्थान में ही है।
1: साथ ही साथ हमने के जोन परफॉर्मिंग आर्ट्स बाटी, नृत्य गायन वादन इन सब के जोन कोर्स बाटे महात्मा गांधी संस्थान में मिलेला, हिंदी भाषा तमिल तेलुगु मराठी ये सब पढ़ावल जाला। साथ ही साथ हमने के फाइन आर्ट्स के भी एगो स्कूल बाटे जहाँ पर संस्कृति से जोन टैंजिबल हेरिटेज बाटे उनकर प्रिजर्वेशन होवेला, खास करके तो महात्मा गांधी संस्थान के अलग अलग विभाग जो न अलग अलग संस्कृति से जुड़ल बातें हमने के जोन पारंपरिक ढंग से सिखावल जाला वो सब महात्मा गांधी संस्थान में पावल जाला।
0: जरूर, और जैसे सुनत हवा आज हमने के मेहमान हवन जय गणेश दाव सिंह, जो कि महात्मा गांधी संस्थान में वहाँ पर भोजपुरी फोलक्लोर और ओरल ट्रेडिशंस विभाग के ओकर हेड हवन और साथ में लेक्चरर भी हवन। कितने बरिस से आप भोजपुरी पढ़ावेला सिखावेला और आप ये दिशा में शोध भी कर ले हवा, ये सब विषय पर आपसे अभी थोड़ा घड़ी में विस्तार से बतिया जा, और फिर आप महात्मा गांधी संस्थान के साथ जुड़ते हुए आपके जन जीवन बा, आप अलग अलग जैसे बोली राजा क्षेत्र से जुड़ल हवा, जो इन संस्कृति से ही जुड़ल बा, मतलब कि आप खुद एगो सांस्कृतिक व्यक्ति हवा, तो ये सब पर अभी थोड़ा घड़ी में हमने और बतिया जा, फिलहाल ले जा एगो छोटा सा विराम।

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में हम आप सबको के एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज हमारे मेहमान हवन महात्मा गांधी संस्थान के जय गणेश दाव सिंह, जे भोजपुरी फोलक्लोर और ओरल ट्रेडिशंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हवन महात्मा गांधी संस्थान में, और भोजपुरी के पढ़ाई के क्षेत्र में आप बहुत बड़ी से जुड़ल हवा। आपके ढेर शोध, ढेर रिसर्च भी चल रहा हमने के जो ओरल ट्रेडिशन, ओरल हिस्ट्री बा, मौखिक इतिहास, मौखिक परंपरा, ये पर काफ़ी शोध कर ले हवा, कितना पेपर प्रस्तुत कर ले हवा। तो अब हमें जब तहर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जब विभाग के महात्मा गांधी संस्थान में भोजपुरी फोलक्लोर, तो ये जो विभाग बा, एक में कौन कौन विषय बात, एक बारे में थोड़ा जानती जा।
2: किरण जी, हमने के जो विभाग में एगो ऐसन मजूर बातें, इंट्रोडक्शन टू भोजपुरी लैंग्वेज एंड कल्चर, इनकर में भोजपुरी भाषा, संस्कृति, कला आदि पर बात करी रासा। साथ ही साथ एगो दूसर मजूर बातें, इंट्रोडक्शन टू फोलक्लोर, फोल कल्चर एंड ओरल ट्रेडिशन। ये खास करके हमने के

0: जो लोग बीए कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी उर्दू तमिल जितना भोजपुरी भाषा के भले ही जानकारी ने रखे लन सा, बाकी ई अंग्रेजी के माध्यम से भोजपुरी सीखे लन जा। साथ ही साथ एगो दूसर सर्टिफिकेट कोर्स बाटे, सर्टिफिकेट कोर्स इन भोजपुरी गदबरी शुरू करनी करले हैं सर। और इनकर में 122 एप्लीकेशन हमने के मिलल और बहुत ही खुशी के बाद बाकी प्रथम हला सर्टिफिकेट इन भोजपुरी जो न हमने महात्मा गांधी संस्थान में शुरू करनी है जा। और अब तक 80 से अधिक छात्र बाटे। अच्छा। हमने के ई कोर्स से जुड़ल जो हवन जा। साथ ही साथ एगो नया कोर्स, नया ई खातिर बोलत है काहे दो तीन साल ई नए रहल, अब फिनो से ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी कोर्स इन भोजपुरी हम शुरू करब जा। और आवत महीना के हमार देखे में हमने के 15 गो स्टूडेंट मिलल बा।
1: अच्छा। और इतना जितना कोर्स के बात कर ला, मतलब ऑनलाइन कक्षा में ई सब के एक तो बोल रहा कि जिन लड़का लोग जो स्टूडेंट लड़का नहीं जो स्टूडेंट लोग पहले से कोनो कोर्स में हवन जा, जैसे कि अलग अलग कोर्स के नाम ले ला, तो ओकर संगे जुड़ के भोजपुरी के भी शिक्षण में वो लोग शामिल होते हवन जा सीखे में।
0: एगो इलेक्टिव के रूप में आवेला इंट्रोडक्शन टू भोजपुरी लैंग्वेज एंड कल्चर, जो लोग डिप्लोमा करत हवन सा तबला में, वोकल हिंदुस्तानी में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, त 3 महीने खातिर हमने के जोन इलेक्टिव बाटे इंट्रोडक्शन टू भोजपुरी लैंग्वेज, जिनकर में भोजपुरी भाषा, संस्कृति, फोक टेज, फोक सॉन्ग आदि। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इस भाषा इस मॉड्यूल को करने के बाद अपने जोन शोध कार्य बाटे वो भोजपुरी से संलग्न रखे लंसा, related to music, what we are doing and also what we have been taught in Bhojpuri.
1: मतलब कि आप लोग के ये जो कक्षा आप चलावा था वजह भोजपुरी और भोजपुरी संस्कृति के लेके बहुत अच्छा से चला था और आप लोग काफ़ी आशावादी है वजह देखा थे जाके बरिस बाद देखा थे जाके ये कोर्स के नवा नवा रूप प्रस्तुत करा था वजह और अभी ऑनलाइन कोर्स भी शुरू करे जाता वजह। और आपके जान के खुशी हुई जय गणेश जी कि पिछला सप्ताह एगो हमने के मेहमान रलन कुनाल हीरीलाल, वो हमने के बोलन कि वो अपन गीत लिखेलन, जब उनकर से पूछली कैसे प्रेरणा आपके मिलेला, तब बोलन प्रेरणा ता जीवन के जो स्थिति बा परिस्थिति बा ओकर से मिलेला, लेकिन लिखे के जो गुण बा वो तो रबे करल, लेकिन ओकर में चाहे परिष्कृत ना हर एगो चीज के एगो गुरु चाहेला। तब बोलन कि जब वो संगीत सीखत रलन महात्मा गांधी संस्थान में, तो वहाँ पर एगो भोजपुरी के इलेक्टिव रहा जहाँ पर वो सीखलन कैसे लिखे के, कैसे भोजपुरी में अपन जो विचार बा ओके सही ढंग से प्रस्तुत करेगी। और ऐसा निशन विचार और भी कलाकार प्रस्तुत कर लन जा, किशोर किमिया जी भी बोल लन कि ऐसा निशन जो आप लोग कक्षा चलावा था वन जा, ई जो दूसर क्षेत्र के लोग हवन जा उ लोग के भी मदद मिलता अपन दूसर क्षेत्र के जस्ती निखारे में। और अभी जब ओरल हिस्ट्री ओरल ट्रेडिशंस के बात करते हैं जा, तो जब हमने के पूर्वज लोग से जैसे बोला मुखारविंद से चाहे उन लोग के कहानी सुने के, तो हमने के पूर्वज हमने के बड़जना में सबसे जस्ती तो लोग भोजपुरी बोले लन जा, किरियोली में जाके जे वो लोग से पूछताछ करबा इंटरव्यू करबा उन लोग के अपन जीवन के बारे में बोले के कोनो घटना के बारे में बोले के, तो उन लोग के धरला आप सीमित कर देबा, लेकिन जब भोजपुरी में उन लोग से बतियाईबा उ लोग के भाषा उ लोग संगे, तब उ लोग के जो बात बा बांटे के वो सकें जा जस्ती खुल के बांटे। और इस तरह से आप लोग तैयार कर रहा था वजह हमने के आवे होला इतिहासकार लोग के ओरल हिस्टोरियन लोग के कैसे ये भाषा सीख के जाके बतियाए के जाके इंटरव्यू करेंगे।
0: बहुत ही निमन बात बोल रहा, खास करके हमने के जो इलेक्टिव है एगो ऐसन टॉपिक आवेला उनकर में कि डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ भोजपुरी वेडिंग सॉन्ग्स, हमारे एगो रिसर्च पेपर वो बाटे पब्लिश बाटे उन पर। तो जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है उनकर में हमने के जो हल्दी के गीत, परछावन के गीत और सुनले हवा हमने के जो मंगलाचरण के जो

0: इतनी बातें उनकर में वर्षा रानी और हमने के जो भोजपुरी विभाग संगीत विभाग बातें महात्मा गांधी संस्थान के कलाकार उन लोग द्वारा प्रस्तुत करल गए तो उनकर ई मजूल में हमने के जोन फोक सॉन्ग्स बाटे जोन गायक बाटे हमें दिखे में उन लोग ज्यादा उनसे प्रभावित होवेला और लिखे में उन लोगों के जस्टी
1: मदद
0: मिलेला सहायता होवेला। जैसे कुनल हिरीलाल बोल रहा सच्चे में हमके यार बातें हमार इनिशियल बैच में रहल वो बहुत ही निमन
1: गीत
0: हाँ विद्यार्थी रहल और साथे साथ भोजपुरी गीत गावेलन तो उन लेक्चर नोट से हमारे देखे में प्रेरित होकर के और जस्टी आगे बढ़ता भोजपुरी के क्षेत्र में
1: तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखत है जा कि ये सब जो हमने के बातचीत हुआ था आज जय गणेश दाव सिंह से कैसे महात्मा गांधी संस्थान संस्कृति से कितना घनिष्ठ संबंध बावकर कैसे ये भोजपुरी डिपार्टमेंट के माध्यम से आप लोग कलाकार लोग के तैयार करा था वजह कलाकार के साथ साथ आप लोग ओरल हिस्टोरियन लोग तैयार करा था वजह और संस्कृति जब देखबा तो कितने प्रोग्राम कर ले आवे थे जा संस्कृति के लेके एक घर में धार्मिक लोग आल बुजुर्ग लोग आल अपन खिस्सा सुनैलन जा और कितने कलाकार लोग आके बोलन जा कैसे लोग के गीत में संस्कृति बा और आज इस मंच पर जय गणेश दाव सिंह हमने के बतावत हवन कैसे भोजपुरी के शिक्षण हमने के संस्कृति से कितना जुड़ल बा और खाली भाषा के यहाँ पर प्रचार नहीं हुआ था भाषा के बढ़ावा नहीं देवल जाता खाली भाषा नहीं सिखावल जाता लेकिन भाषा के सीख के कितना कितना सीमा खुलता हमने के देश के जो क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़ल हवन जा इतिहास के क्षेत्र से जुड़ल हवन जा ये सब नव युवक नव युवती लोग के एक बारे में का बोलवा जय गणेश जी
0: तो हमने के जोन परंपरा है जैसे बोले हवा वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध बाटे कला से संगीत से पकवान से वेशभूषा से तो हमने के जो नौजवान बाटे उन सब से बहुत ही प्रभावित होवेला। हमने के जोन कला बाटे गीत गवाए में देखबा आजकल तो आगे के ज़माने में दशक पहले बहुत नानी दादी लोग गीत गवाए में भाग ले बैठा रंजा आजकल दिखबा तो हमने के जोन युवा पीढ़ी बाटे हमने के जोन जिनिस लोग बाटे वो लोग हमने के गीत गवा से जुड़ल हो जा हमने के जोन आर्ट है हमने के जोन मधुबनी पेंटिंग्स है हमने के जोन खान पान दाल पिठा खिचड़ी दूध पीटी ये सब फिनों से वो लोग दिलचस्पी दिखावत हवन जा और साथ ही साथ हमने के जोन संस्कृति है वो हमने के युवा पीढ़ी द्वारा बहुत ही हमारे देखे में प्रकाश बहुत ही
1: फलत फूलत बा
0: फलित होता और वे लोग बहुत ही कैसे बोलो
1: आकर्षित होवेला
0: जा और हम लोग निश्चिंत रहेला कि हाँ अब जाकर के उन लोग के हाथ में सुरक्षित रही हमने के जोन
1: जरूर तो जैसे जय गणेश जी बोलत हवन कि जब महात्मा गांधी संस्थान में देखबा संस्कृति के अलग अलग रूप बा तो हुआ पर आपके नज़र आवेला कि ये जो भविष्य बा संस्कृति के लेके हमने के पूर्वज की संस्कृति काफ़ी उज्ज्वल बा काहे कि हुआ पर नौजवान नवा पीढ़ी से लेके हर उम्र के लोग अपन संस्कृति से जुड़ल परंपरा रीति रिवाज भाषा इस सब में बहुत दिलचस्पी दिखावत हवन जा अपन पूर्वज के भी खोज में वो लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़त हुआ जा देखत है जा कि वहाँ पर जो अकाइवल बा इंडेंचर इमिग्रेशन अकाइव्स वहाँ पर तो लोग के आवाजाही भरल रहेला कौन दिन के हम हुआ रही देखत है कि एक के बाद एक कितना कितना जना आवत हवन जा अपन जड़ी तक पहुँचे खातिर
0: को लेकर के हाँ बहुत लोग आवेलन सा हमने के जोन वीज़ा मिलेला भारतीय उच्चायोग की ओर से तो उसी आय और महात्मा गांधी संस्थान के इंडियन अवकाश में मिलेला हमने के भाई गोविंदन रहेला तो सकबा आवे महात्मा गांधी संस्थान के अवकाश में अपन पुरखन के जो जानकारी प्राप्त करे खातिर तो लोग सकबा आवे
1: ज़रूर तो अभी हम बात कर रहे थे जय गणेश दाव सिंह से जो महात्मा गांधी

संस्थान से हवन वहाँ के भोजपुरी फोल्कलोर और ओरल ट्रेडिशंस विभाग के आप हेड हवा और साथ में आप भोजपुरी शिक्षण से जुड़ल हवा और कितने शोध भी प्रस्तुत करेला आप एक क्षेत्र के लेके और इस विषय में हमने अभी और आगे बतियाब जा हमने देखब जा कि जय गणेश दाव सिंह जे ई विभाग से इतना घनिष्ठ रूप से जुड़ल हवन इतना उनकर लगाव बा ई विभाग से उनकर जोन जीवन बा वो और कितना विस्तृत बा संस्कृति के लेके फिलहाल एगो छोटा सा ब्रेक

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में हम किरण आप सबको एक बार फिर स्वागत करत है। और जैसे शुरू में बोली ई प्रोग्राम के प्रसारण होवेला MBC और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से। और आज नहीं देखत है जा कैसे भोजपुरी शिक्षण और महात्मा गांधी संस्थान में देवल जाय होला ई जोन कक्षा बा उ हमनी के संस्कृति से बहुत हद तक जुड़ल बा। और ई विषय पर बात करे खातिर हमनी संगे हवन भोजपुरी फोल्कलोर और ओरल ट्रेडिशन के हेड ओकर मुखिया जय गणेश दाव सिंह। और हमी देखत है जा कैसे जब आप ई सब विषय के साथ जुड़ल हवा एक क्षेत्र में जुड़ल हवा आपके शोध भी आपके रिसर्च भी हमने के जो ओरल ट्रेडिशंस बा एक पर आधारित है तो थोड़ा हमने के आप जन जन रिसर्च करेला जन पेपर प्रस्तुत करेला ओकर पर बोलते हुए हमने के अपन थोड़ा परिचय दिया कि आप कैसे ई सब इस क्षेत्र में रहते हुए संस्कृति और धर्म और भाषा के अलग अलग क्षेत्र से भी जुड़ल हवा।
2: जी किरण जी, आप जानते ही हैं कि मैं पार्ट टाइम पंडित भी क्या करता हूँ और आज कल तो मैं त्रिलोकीनाथ मंदिर जो लाटू के निक में है वहाँ संलग्न हूँ। पहले मैं अरबियों के मंदिर में था। और जो हमने की संस्कृति है वो बहुत ही बढ़िया है। आज सोमवार है, मैं मंदिर जाऊंगा, वहाँ पर अभिषेक करने जाएंगे। सोमवार के दिन कहा जाता है मन को चंचलता से दूर बचाने के लिए जब शिवलिंग पर जल चढ़ाए जाते हैं तो हमारे मानसिक शांति हमको मिलती है, साथ ही साथ हमें जीवन में उन्नति प्रगति इन सब से लाभ प्राप्त होते हैं। तो संस्कृति से जो पूजा पाठ जुड़ल है उसको हम लोग स्वीकारें या माने या न माने, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो मुझे लगा कि पिताजी ने बहुत ही उचित चयन किया कि बचपन से ही कहा कि तुमको तो पंडित बनना है
1: जी।
2: मेरी रुचि देख करके बचपन से जैसे मैं बैठका में जाता था, मंदिर में आगे आगे रहता था, सहायक करता था, तो पिताजी के लगा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना पड़ा चाहिए। और HSC के बाद उन्होंने मनन जोगी डू, बाद में जाकर के आचार्य हंसलाल शुक्ला जी के सहायक पंडित रहे, वेद गोपी जी के साथ रहे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि किस प्रकार हमारी संस्कृति धरोहर की बातें हम लोगों को यदि बचाना है तो इस क्षेत्र में उतरना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि दुर्गा पूजा, यज, हवन, जितने भी जयंती हम लोग मनाते हैं, जितने भी हम लोग रीतियां करते हैं, जितने भी विधियां हम लोग करते हैं, उसका कोई साइंटिफिक रीज़न रहता है। जितने भी पत्तों पुष्पों के प्रयोग हम लोग करते हैं तो इन सभी का हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है।
1: और ये प्रकृति के संसाधन है और हमारा जो जीवन है वह प्रकृति से एकदम जुड़ा हुआ है और हमें हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ कर जीना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। घर आंगन में आज बाग बगीचे नहीं हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब कहते थे कि आपके घर आंगन में कम से कम एक आम का पेड़ होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये जो मान्यताएं हैं, वो धीरे धीरे लोग इसे छूटते जा रहे हैं। और अभी जब आप कह रहे हैं कि हमारे जीवन में पत्तों का, फूलों का बहुत गहरा संबंध है, हमें उनके साथ उनसे जो हमको लाभ होता है उनको पहचानना चाहिए
2: जी।
1: तो ये प्रकृति से हमारी जो घनिष्ठता है उसको भी मतलब कि सामने रखता है ये।
2: एग्जैक्टली, जब प्रकृति से हम लोग जुड़े रहेंगे तो हमारी संस्कृति भी गहरी होती जाएगी। घर आंगन में हम लोग कंक्रीट के बनाते ही जा रहे हैं, लेकिन देखेंगे आगे के ज़माने में कैसे वे लोग अब उनके जो लैट्रिन थे वे एकदम घर से अलग बनाते थे। रसोई घर कहाँ बनाते थे, कहाँ पर वे लोग रुपाई करती थी, ये जो धनिया है, जो लाके जवाइयों की टिमली आदि वे लोग रोपते थे।

0: और गाय बकरी आदि का पालन पोषण करती थी। तो हमारी संस्कृति में सभी देवी देवताओं के वाहन भी पाए जाते हैं, भोलेनाथ नंदी पर सवार करते थे, तो वे लोग गौ माता को बहुत मानते थे। और आज भी हमारी संस्कृति में भले ही इतने आसान बात नहीं है, हम भी चाहेंगे कि गौ पालन में जाए, लेकिन जहाँ पर रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, कुछ बातों को हम लोग रियलिस्टिक के रूप में स्वीकारना पड़ता है। तो लेकिन जो मान्यता है, जो विश्वास है, वो गहरी बनते जाते हैं हमारी इन संस्कृति के बातों के साथ।
1: ज़रूर। और जैसा कि आपने कहा कि पहले के ज़माने में किस तरह से घर की व्यवस्था की जाती थी, घर को बनाया जाता था, चौतरा किस तरह से स्थापित किया जाता था, और फिर आंगन में तुलसी का पेड़ होना, फिर तुलसी का पौधा होना, फिर बेल पत्र, पान के पत्ते, आम के पत्ते, ये जो पूजा में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, घर आंगन के सामने ही, घर आंगन में ही फूल हुआ करते थे, ये जो पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे संसाधन हमको आंगन में ही मिलता था। लेकिन आज हम प्रकृति से छूटते जा रहे हैं, और जब रीति रिवाज, जब पूजा पाठ का समय आता है, तो हमें दूर दूर जाकर ये सारी चीजें ढूंढना पड़ता है। अगर हमको,
0: क्या आप बिना पान के पत्ते पूजा कर सकते हैं?
1: कहाँ कर सकते हैं?
0: बिना आम के पत्ते कलश में क्या डालेंगे? जब हम लोग बिठाते हैं कलश को पौच पल्लव दुर्गा पूजा में, तो आप जानते हैं कितने प्रकार के पत्तों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस संस्कृति में प्रकृति के साथ यदि हम लोग रहेंगे तो हमारी उन्नति होती रहेगी, और जो पकड़ है हम लोगों को सशक्त बनाना चाहिए। तो इन सभी बातों को मुझे लगता है जो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही प्रभावशाली रूप से हम लोगों को समझाया, तो जाकर के आज भी हम लोग देखते हैं कि हम सब उससे जुड़े हुए हैं। और कभी ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी जो है, हाल ही में मैं वारिडीप्रेत गया था, वहाँ पर मासिक ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ के जो महाकाली प्रभावशाली ग्रुप बहुत ही सुंदर ढंग से युवा पीढ़ी ने आयोजित किया है, और देख करके मन आनंदित होता है कि वे लोग अपनी संस्कृति से जुड़ी रहती हैं। शिवलिंग की पूजा बराबर चलती रह रही है, वहाँ पर रामायण का पाठ हो रहा है, सत्संग हो रहा है, भजनों के वातावरण से, शिवय वातावरण में बहुत जो युवा पीढ़ी है, बहुत लोग दिखे वहाँ पर।
1: जी हाँ।
0: तो ये देख करके अच्छा लगा किरण जी।
1: ज़रूर। और फिर आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनका बस एक ही मानना है कि अगर आप, चाहे वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ हो, जो भी तथ्य, जो भी कथ्य उनके सामने रखे कि पूजा के लिए आपको इतने पत्ते चाहिए, इतने फूल चाहिए, तो आपको उनको बताना पड़ता है क्यों। हर एक जो भी रस्म है, जो भी रीति है, उनको समझाना पड़ता है क्यों करना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे सीधा जवाब यही है कि अगर किसी पूजा में आपको 25 पत्तों की आवश्यकता है, 25 किस्म के पत्तों का, तो मतलब कि ये जो पत्ते हैं, इनका एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है, बहुत ही मतलब कि शुद्धता है इनमें, इनकी हमको आवश्यकता है। और यही कारण है कि हमें हमेशा अपने घर आंगन को ऐसी प्रकृति के संसाधनों से हमें घिरे हुए रहना चाहिए, ताकि आपको दूर ना जाना पड़े। और अगर ऐसे पेड़ पौधे आपके आंगन में रहेंगे, तो एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में आता है। कहते हैं तुलसी के एक पौधे से इतने सारे ऑक्सीजन मिलते हैं कि एक पूरा पेड़ में आपको नहीं मिलेगा। और फिर जब कहते हैं कि आपको इतने नदियों का पानी लाना चाहिए, तो इससे शायद ये एक संकेत मिलता है कि आप जब निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो अपने आस पड़ोस में जो नदी नाले हैं उनको बंद ना करें, इनकी आपको जरूरत पड़ेगी।
0: जी, नदी के पानी के बिना कलश की पूजा नहीं हो सकती है। और आपने एकदम सही कहा, मान लीजिए आज सोमवार है, बेलपत चढ़ाए जाएंगे, तो जो बेलपत आप जानते हैं, एक ही पत्ते हैं, लेकिन तीन उनमें पत्ते होते हैं, और कहा जाता है कि ये महादेव के त्रिनेत्र का प्रतीक है, ये त्रिदेव है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश बैठते हैं, साथ ही साथ उनको चढ़ाने से हमारे जन्म जन्मांतर के समस्त पाप मिट जाते हैं। हमारे आंगन में आप जैसे बता रही हैं कि यदि बेल

0: पत्र भी हो, उनके जो वृक्ष हैं उनसे कितने ऑक्सीजन हम लोगों को प्राप्त होगा, हाँ। कितने हमारे वातावरण शुद्ध रहेंगे। और तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, कुश विच वेज से बोलते हैं, लिलापियस नीम, जब रोग आते हैं तो आप जानते हैं उसमें शीतला माता वास करती है, किस प्रकार अभी भी परंपरा पारंपरिक रूप से ऊंच करके जो सिरने हम लोग बच्चों को चढ़ाते हैं, ये
1: और
0: सब
1: आम के पत्ते सबसे बेसिक
0: जी मांगलिक कार्यों में बहुत ही ऑस्पिशियस मानी जाती है। तो इन सभी के प्रयोग से संस्कृति जीवित रहती है।
1: जरूर, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो संस्कृति है वह प्रकृति से जुड़ना सिखाती है। हमारी संस्कृति आपको सिखाती है कि किस तरह से प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। अगर प्रकृति कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, वैसे ही जो प्रकृति की रक्षा करता है प्रकृति उसकी रक्षा करती है। तो इस बातचीत को हम थोड़ी ही देर में जारी रखेंगे। बहुत सुंदर बातचीत चल रही है संस्कृति को लेकर, और आज के हमारे मेहमान हैं जय गणेश दाव सिंह, जो कि महात्मा गांधी संस्थान में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हुए, एक लेक्चरर होते हुए, एक पुरोहित भी हैं, पंडित भी हैं और धर्म के प्रणेता भी हैं। थोड़ी ही देर में हम फिर मिलते हैं, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: संस्कृति की बातें संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। संस्कृति की बातें इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे मेहमान हैं जय गणेश दाव सिंह, जो कि हमें शिक्षण और साथ में धर्म और संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। अपने अनुभव पर आधारित, अपने जो कैरियर हैं उस पर आधारित उनका जो अनुभव है वो आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे जय गणेश जी कि आपने जो रिसर्च किया है, जो शोध किया है, वो किन किन विषयों पर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपका जो संबंध है वह भोजपुरी फोलक्लोर से बहुत दूर तक जुड़ा हुआ है। सिर्फ फोलक्लोर ही नहीं बल्कि आप धर्म से भी जुड़े हुए हैं, तो अपने रिसर्च के बारे में, शोध के बारे में ज़रा बताएं।
1: जी किरण जी, जब मैंने अपना रिसर्च मॉस्टर्न रिसर्च किया था एमरेस, तो मैंने डिस्कोर्स एनालिसिस पर अपना प्रोजेक्ट किया था, डिसर्टेशन, जो भोजपुरी लोकगीत है, खास करके हरदी के गीत, उस पर मैंने काम किया था। और जब जाकर के लेक्चर करने लगा तो बच्चे कहते हैं कि गुरुजी रिसर्च पेपर्स नहीं है एकेडमिक जर्नल्स में। जब हम लोग जाते हैं तो भोजपुरी मॉरिशन फोकटेस, मॉरिशन हिस्ट्री, ये सब नहीं मिलते हैं। तो

0: मुझे लगा कि कहीं पर ये अन्याय हम लोग कर रहे हैं
1: और एक तो, गैप है, रिसर्च गैप
0: एग्जैक्टली रिसर्च गैप है जो मुझे पूरा करना है। तो मुझे मैंने यहाँ ठानी कि कम से कम साल भर में मैं 2 पेपर पब्लिश करता जाऊँगा। तो कोविड के अंतर्गत जो मेरे रिसर्च पेपर्स रहे थे सभी को संजो करके मैंने पब्लिश किया है। तो 2-3 मैं पढ़ना चाहूँगा अभी टाइटल जो है। एक है जो मैं दुबई जा कर के प्रस्तुत किया था कोविड से पहले 2019 में, ए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ भोजपुरी झूमर इन मॉरिशस, ये पब्लिश हुआ है एडवांसेस इन सोशल साइंसेस रिसर्च जर्नल में 2020 में। उस पर फोकस ज़्यादातर इवोल्यूशन ऑफ भोजपुरी झूमर सॉन्ग्स इन मॉरिशस एंड वेयर सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पर था। दूसरा था द साइकोलॉजी ऑफ वर्शिप इन मॉरिशन भोजपुरी फोक सॉन्ग्स, जो धरती बंधाई से जुड़ल बातें उन गीतों को लेकर के मैंने एनालिसिस किया था और ये पब्लिश है पीपल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेस 2018 में। और इसमें एग्जामिन्स किया है कि वर्शिप, पैंथेइज्म, स्पिरिचुअलिटी को मॉरिशन भोजपुरी फोक सॉन्ग और गीत गवाई का जो संबंध है उसको दर्शाया गया है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, उसको कुछ फिर से रिव्यू करके मैंने पब्लिश किया था मेलांकोलिक गीतों को लेकर के, जो बिरहा के गीत बातें उनको लेकर के मैंने एनालिसिस किया है और ये पब्लिश है ग्लोबल जर्नल ऑफ ह्यूमन सोशल साइंस 2020 में। और डायस्पोरा एनालिसिस करता है होम सिकनेस एंड इमोशनल एक्सप्रेशन इन भोजपुरी सॉन्ग्स ऑफ मॉरिशन एक्सपैट्रिएट। साथ ही साथ गीत गवाई को लेकर के जो टावर्स सेफ गार्डिंग कंसेप्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है मॉरिशस में, ये प्रकाशित है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंस रिसर्च 2020 में। इट डिस्कसेस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ भोजपुरी फोक ट्रेडिशंस एंड यूनेस्को रिकॉग्निशन ऑफ गीत गवाई हेरिटेज और पेविंग द वे फॉर द भोजपुरी लैंग्वेज एंड कल्चर थ्रू आर्टवर्क। ये एगो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर रहा हमने के जोन फाइन आर्ट्स विभाग से डॉक्टर हरिहवन और साथ ही साथ नालिनी गोपाल अप्रवासी घाट में एगो प्रदर्शनी कर ले रलन। तो गोबर से उन्होंने खटिया पर कुछ लिखा था भोजपुरी के कुछ कहावतें और नलिनी जी ने आम के वृक्षों को लेकर के जो पगड़ी है उसको उनमें बांधा कुछ डिजाइन। आप जाते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं उनकी कल्पना
1: दूर तक उड़ान भरती है,
0: जाते हैं। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पर उन्होंने गोबर को लाल मिट्टी से मिला करके जैसे नई स्याही बना करके भोजपुरी देवनागरी में खट्टे पर लिखा, तो मुझे लगा कि ये उस पर रिसर्च पेपर बननी चाहिए। सो इट एक्सप्लोर्स हाउ विजुअल आर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी इन मॉरिशस। तो उसको भी हम लोगों ने प्रकाशित किया है। साथ ही साथ जो मॉरिशन भोजपुरी फोक सॉन्ग्स हैं साइकोलॉजिकल वर्शिप धरती बंधाई से लेकर के उसको रिव्यू करके फिर पब्लिश किया मैंने। और 2-3 और हैं पब्लिकेशन को लेकर के, खास करके एक बुक रिव्यू में अनिशा बादल कुसी के साथ मैंने जो डायस्पोरिक कंट्रीज को लेकर के बिरहा के गीत को लेकर के मैंने उस पर भी काम किया है। द वे फॉरवर्ड फॉर भोजपुरी लैंग्वेज इन मॉरिशस रिसर्च प्रेजेंटेशन इन द प्रोसीडिंग्स, जो नेशनल रिसर्च वीक लास्ट ईयर गत बरिस हुआ था उसमें भी हम लोगों ने भोजपुरी को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया। एंड इट डिस्कशन ऑन रिविटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजीज फॉर मॉरिशन भोजपुरी लैंग्वेज। तो जैसे आप देख रहे हैं कि भोजपुरी भाषा को लेकर के, भोजपुरी संस्कृति को लेकर के, भोजपुरी परंपरा को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी पब्लिकेशन किया है। हमारा यही ध्येय रहते हैं कि खास करके रिसर्च अकादमी स्कॉलर्स जो हैं हमारे विद्यार्थीगण जो हैं जब गूगल स्कॉलर पर जाएं फिर से ना बोले कि गुरुजी हम लोगों को वहाँ पर
1: सामग्री नहीं मिला,
0: सामग्री नहीं मिला
1: जी। मतलब कि जब हम आम तौर पर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं और ख़ास तौर पर जब विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं

थीसिस होता है तो उसमें एक समस्या को लेते हैं, एक विषय को लेते हैं और उस विषय में एक रिसर्च गैप ढूंढते हैं कि उस विषय में क्या क्या कमी है, किन किन क्षेत्रों में वहाँ पर रिसर्च नहीं हुआ है। और कई बार

0: इतने सारे प्रकाशन किए गए, इतने सारे शोध हुए. अब हमें, हमारे पास अभी लगभग 7 मिनट है. हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो दिलचस्प शोध आपने किया है, जो रिसर्च आप कर ले हवा, किस तरह से आप मतलब कि जनसाधारण के साथ, जिस जो धर्म और जन संस्कृति के ठेकेदार हैं, उनके साथ मिलकर आपने ये शोध किया है, उनसे बातचीत जरूर आपने उनसे बातचीत की होगी, तभी जाकर आपने ये सामग्रियां इकट्ठा की और फिर ये प्रकाशन हुए.
1: तो भोजपुरी लोकगीत को लेकर के गिटारिन के पास जाना तो पड़ा ही. गांव में श्रीमती अनुमादा ओकेज, उसका नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जितने भी रिसर्च कार्य हुए हैं बहुत ही उन्होंने सहायक वे बनी. और जो बिरहा के गीत बातें हमने के जो स्कूल ऑफ मोशन एंड एयर स्टडीज और साथ ही हमारे भोजपुरी विभाग से जुड़ा डॉक्टर अरविंद बिसेसाव के बहुत ही बड़ा योगदान रहा. तो फोक ट्रेडिशंस ओरल भोजपुरी जो उन परंपरा बातें हमने के फोक सिंगर्स के माध्यम से मुझे सामग्रियाँ प्राप्त हुई, इंटरव्यूज के माध्यम से ओरल ट्रेडिशंस को जो मैंने सामग्रियाँ ग्रहण किया, तो उनको लेकर के और मंगलाचरण. पहले मैं डॉक्टर सुचिता रामदीन, महात्मा गांधी संस्थान के विभाग के जो प्रथम भोजपुरी विभाग अध्यक्ष रहे, हाँ, और वो संस्कार मंजरी उनका बड़ा ही हम बोलब एगो ऑस्क्रोपेजी है हमने के जो लोकगीत, भोजपुरी लोकगीत को लेकर के जो संस्कार मंजरी के गीत बाटे, उनकर से प्रेरित होकर के हमर जो रिसर्च पेपर रहर हम पब्लिश कर ले हैं. और साथ ही साथ जो हमने के जो विभाग बाटे, हमने के जो इन्फॉर्मेट्स बाटे, उन लोग संगे वर्कशॉप कर जा उनको कैसे भोजपुरी के गीत जब गाने को होते हैं कैसे प्रशिक्षण करना चाहिए, किस विषय पर आप लोगों को ज़्यादा बल देना चाहिए, वेशभूषा जब आप लोग टीवी पर जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए और समाज में जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो इन सभी पर हम लोग चर्चा करते हैं. तो हमारे रिसर्च पेपर्स के जो रिकमेंडेशंस रहे हैं, जो हम लोगों ने खामियां देखी हैं रिसर्च गैप को भरने के लिए, तो इन सभी की चर्चा हम लोग खास करके उस प्लेटफॉर्म में करते हैं. और आजकल जैसे मैंने कहा कि हमारे सर्टिफिकेट कोर्स इन भोजपुरी लैंग्वेज में 80 से ऊपर छात्र हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग हमारे लेक्चर के माध्यम में उन लोगों को समझाते हैं, हमारे जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उन लोगों तक पहुँचाते हैं.
0: ज़रूर, बहुत बढ़िया. और हम देखत है जा कि इसे जो शोध के दुनिया है, रिसर्च के दुनिया है, हुआ आप अकेले एक बंद कमरा में बैठ के ये रिसर्च नहीं करेला. ये रिसर्च करे खातिर खास तौर पर मौखिक इतिहास आपके चाहना चार दीवारी से बाहर निकल के, ये तो पहला बात. और फिर आपके चाहना एगो पूरा टीम, जैसे बताओ कितना जना के सहयोग बा, कितना जना के प्रेरणा बा, कितना जना के करल काम बा, जे के आप एगो नवा रूप में प्रस्तुत करत हवा. कहे कि रिसर्च के दुनिया में आपके चाहना जे आप ज़्यादा प्रकाशन नहीं करबा, तो वो जन काम करत हवा वो व्यर्थ चल जाला. मतलब कि जितना काम करत हवा आप संस्कृति के लेके, भाषा के लेके, रीति रिवाज परंपरा के लेके, और जन समुदाय जन संस्कृति के ठेकेदार हवन जाए, जैसे बोला वर्कशॉप करेला जा, ये बहुत ज़रूरी है ये सब कार्य करे के और एकर पर प्रकाशन करे के. और देखत है जा कितना बहुत सुंदर ढंग से महात्मा गांधी संस्थान ये सब काम के अंजाम देवता. और आज हमने के नवयुवक, हमने के स्कॉलर्स, खाली मॉरिशस के ही नहीं बल्कि विदेश से भी जो नवयुवक जो स्कॉलर्स लोग रिसर्च कर रहे अंजाम मॉरिशस में, हमने के संस्कृति के बारे में, हमने के भाषा के बारे में, तो ये सब पर प्रकाशन नियमित रूप से महात्मा गांधी संस्थान में होता.
1: और मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा किरण जी, मैं हो सकता है शुरुआत में कहना भूल गया, हमारे एक शॉर्ट कोर्स है अंडरस्टैंडिंग भोजपुरी कल्चर, और उसमें डायस्पोरिक कंट्रीज़ के लोग जुड़े हुए हैं, उसमें हमारे 20 छात्र होंगे, और उसमें ट्रिनिदाद से हैं, भारत से हैं,
0: इंटरनेशनल
1: स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे शॉर्ट कोर्स भी है भोजपुरी में.
0: अच्छा जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई. और जैसा कि आपने देखा, आपने सुना, हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए MBC ने एक प्लेटफॉर्म रखा है, आप्रवासी घाट सहयोग दे रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में महात्मा गांधी संस्थान के साथ साथ व्यक्तिगत रूप

0: रूप से कितने सारे लोग इसमें अपने अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि जय गणेश दाओ सिंह जो कि एक प्राध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, इसके साथ साथ आप एक सांस्कृतिक व्यक्ति भी हैं जो धर्म के साथ बहुत निकट से जुड़े हुए हैं, आप पंडिताई के साथ जुड़े हुए हैं, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामना। आप धर्म और संस्कृति और भाषा साथ साथ शिक्षण को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें, शोध की दुनिया में आप अपना और अपने संस्था का नाम आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।
1: धन्यवाद किरण जी, आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद,
0: आभार। और आपने हमें देखा और हमें सुना, आपका भी हृदय से धन्यवाद। अगली संस्कृति की बातें कार्यक्रम के साथ हम अगले सप्ताह फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। शनिवार रात को मोतायलों के पास दिमागियान के हिल्स व्यू रिसेप्शन हॉल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। 54 साल की रीता सिबारत की मौत एक ट्रक से कुछ ले जाने से हुई। ये ट्रक उसके बेटे युधिष सिबारत की थी, जो एक ढलान पर पार्क थी और अचानक चल पड़ी। तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स ट्रक का परीक्षण करेंगे। घायल सदाल हत्याकांड के सिलसिले में दो अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दो हिन्यान का न्यून और उनका बेटा शाहद यानकान्युएन शामिल हैं। दोनों पर इस सोमवार को हत्या के आरोप में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और तलब है कि शनिवार शाम रेजिडेंस लाकिया की रोबर्ट स्कॉट गली पर हुई एक झड़प में 28 वर्षीय गायल सादाल की मौत हो गई। उसे चाकू लगी थी। पुलिस द्वारा जुटाई गई शुरुआती जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोहिनियान का न्यून और गायल सदाल के बीच बहस हुई थी। इस मामले के तीसरे संदिग्ध मोहम्मद शेख बुलाकी, जो दोहिनियान का न्यून के सबसे छोटे बेटे हैं, उनको

0: लगी। फिलहाल वे पोटलुई के जीतू अस्पताल में पुलिस की निगरानी में भर्ती हैं। पुएंटो साबला में एक नाली से गंदा पानी बहकर लगून के पास पहुंच गया। इस पानी के बहाव को रोकने के लिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की लगभग 100 टैंकर तैनात की गई हैं। 5 दिनों में करीब 1000 क्यूबिक मीटर गंदा पानी पंप किया गया। गलती से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पाइप टूट गया, जिसके बाद बुधवार रात से ही एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। नाली में भले ही मरी हुई मछलियां पाई गई हैं, लेकिन पुएंटो साबला के समंदर को प्रदूषित होने से बचाया जा सका है। विदेश समाचारों में वर्ल्ड कप की बात करते हैं। वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस का दौर जारी है। नेदरलैंड्स और जापान के बीच खेला गया मैच आज ड्रॉ रहा 2-2। वहीं स्वीडन का सामना हुआ ट्यूनिशिया से और स्कोर रहा स्वीडन 5 और ट्यूनिशिया 2। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वेडर को हराया 1-0। आज रात को लोगों की नजरें एक और रोमांचक मैच पर रहेगी। ग्रुप एच में स्पेन खेलेगा काबो वर्दे के खिलाफ और रात 11 बजे बेल्जियम का सामना होगा इजिप्ट से। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सब का स्वागत है, स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। जी हाँ, हर सोमवार की तरह हम लोग कृषि बाड़ी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको याद है तो पिछले हफ्ते हम एग्रो फॉरेस्ट्री माने के कृषि वन पर चर्चा कर रहे थे और जो उसके बेसिक्स कैसे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए कृषि वन का लाभ होता है और आर्थिक विविधीकरण और रोज़ाना का काम, इन सब पर हमने चर्चा की थी। लेकिन समय के अभाव के कारण हमारा जो कार्यक्रम था वो पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए आज एक बार फिर जो एग्रो फॉरेस्ट्री माने कि कृषि वन पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो दूसरा और आखिरी भाग है। और आज इस दूसरे और आखिरी भाग में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार कृषि वन में प्रैक्टिकल चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। साथ ही जब हम बात करते हैं बात कृषि वन एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह, तो क्लाइमेट चेंज, जो मौसम का जो बदलाव हम लोग देख पा रहे हैं, इसका जो असर है कैसे, लाइक क्लाइमेट रेजिलियंस, और जो भविष्य है वो कैसा रहने वाला है, कैसे उज्जवल हो सकता है, और नेशनल विजन, सपोर्ट सिस्टम और टेक्नोलॉजी। आज हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ ही हम चल रहे हैं। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत आज की चर्चा कार्यक्रम में। और एक बार फिर हमारे मेहमान हैं फागे की तरफ से सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट श्रीमान विशाल भिखारी जी, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विशाल जी, आपका स्वागत है आज की चर्चा कार्यक्रम में, नमस्कार। तो हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हमने की अबाउट कृषि वन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो बहुत सारे लोगों को की दिलचस्पी रहती है जब हम लोग बात करते हैं कृषि के बारे में, और एग्रो फॉरेस्ट्री उसके एडवांटेजेस के बारे में हमने देखा कि कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप कृषि वन के एक रफ जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स हैं दे सकते हैं जिससे किसानों ने अपनाया।
1: पहले तो नमस्कार सभी सुनने वालों को और हमारे को जो देख रहे हैं। तो आपकी सवाल के ऊपर पूरे विश्व में कुछ एग्जांपल हैं, एक 100 करोड़ के ऊपर यानी कि 1.2 बिलियन से ज़्यादा लोग अपने फूड सिक्योरिटी लाइवलीहुड घर की इनकम के लिए डायरेक्टली कृषि वन के ऊपर निर्भर है। जैसे सब सहारन अफ्रीका यानी कि सहारा डेजर्ट के नीचे जो सभी कंट्रीज जो आते हैं, 48 कंट्रीज हैं जो मॉरिशस में भी शामिल हैं, तो इसमें 2019 में किसानों की संख्या 10 लाख थी।
0: अच्छा।
1: 2019, तो धीरे धीरे 2024 में वो बढ़ गए हैं, और जो जो लगातार ये कृषि वन का जो अपना रहे हैं बढ़ गए धीरे धीरे। तो जब भारत की संख्या देखते हैं तो लगभग 50 लाख किसानों ने काफ़ी स्ट्रक्चर और इंटेंसिव टिम्बर का एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कि वुड का एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल को अपना लिया है। और चाइना में 3 मिलियन 30 लाख हेक्टर से ज्यादा

0: ज्यादा जमीन पर फास्ट ग्रोइंग टिम्बर का कमर्शियल स्पीसीज के रोज के बीच में फसलें उगा रहे हैं।
1: अच्छा, ये तो काफ़ी बड़ी मात्रा में, जैसे कि आपने कहा 2019 से अब तक कितने सारी बढ़ोतरी हो गई हैं और कितने सारे जो लोग उगाते हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कृषि वन, अगर कुछ सवाल पूछना है, हम मांग करेंगे, हमारे जितने भी श्रोता है, दर्शकगण हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर हो सके तो उसी टॉपिक पर आप प्रश्न पूछें, कोई सवाल पूछ सकते हैं हमारे मेहमान से। विशाल जी, जब वृक्षों की बात करते हैं, पेड़ों की बात करते हैं, सालों लग जाते हैं उनके उगाने में, तो जो छोटा किसान है, फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर वो कैसे सर्वाइव करते हैं?
0: ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग पूछते हैं, ये कॉमन है। लेकिन याद रखिए कि एनुअल क्रॉप्स जो को छोटे पौधे के साथ ही प्लांट किया जाता है, तो बड़े पौधे टाइम लगता है। किसान अपने वेजिटेबल्स, ग्रेन्स या ट्यूबर जैसे स्वीट पोटैटो या कुछ तो भी, इसे तुरंत इनकम, तुरंत यानी कि दो तीन महीने के बाद मिलते हैं, थोड़ा सा 6 महीने के बाद। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से जब भी वृक्ष बैकग्राउंड में ग्रो करते हैं, तो इसके मिडल में जो मीडियम एंड शॉर्ट साइकिल क्रॉप्स होते हैं, धीरे धीरे उगाते हैं और इनकम मल्टीडिसिप्लिनरी में आते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उनका मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत कम होते हैं।
1: अच्छा, ये तो सही बात आपने कही है। आपने बताया कि क्या एक फ्लैट या फिर ओपन खेत, जो खुला मैदान होता है, उसके मुकाबले एग्रोफॉरेस्ट्री जो है, एग्रोफॉरेस्ट्री फार्म को मैनेज करना, फसल करना मुश्किल है? कितना मुश्किल, कितना कम?
0: अगर फ्लैट जमीन है, ये तो एडवांटेज हो गए
1: जी,
0: तो सोने पे सुहागा हो गए अभी। तो इसमें मशीन इंटेंसिव मोनोकल्चर के हद कर थोड़ा थॉटफुल मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: तो हालांकि वृक्ष के रोज के बीच, जैसे आले क्रॉपिंग, जैसे पिछले बार मैंने बोला था, आले क्रॉपिंग में प्रॉपर स्पेसिंग प्लान करना है
1: जी,
0: ताकि किसानों का वो जो स्टैंडर्ड फार्म मशीनरी है, गार्डन रोटोवेटर्स या कोई ऑटोमेटेड टूल्स, आसानी से प्रयोग कर सकते
1: जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक किसान को कैसे पता चलेगा कि उसकी स्पेसिफिक जो जमीन के लिए कौन से वृक्ष, पेड़ की स्पीशीज जो है सबसे अच्छा है?
0: ये बहुत टेक्निकल है, तो ये पूरी तरह से लोकल क्लाइमेट।
1: अच्छा।
0: लोकल क्लाइमेट, क्योंकि मॉरिशस में बहुत सी माइक्रो क्लाइमेट होते हैं, तो लोकल क्लाइमेट है, सॉइल टाइप और किसान के लक्ष्य यानी कि एम पर निर्भर होते हैं। तो हमारे संस्था फरे के एक्सटेंशन ऑफिसर्स और साइंटिस्ट इसमें मदद कर सकते हैं, ये देखकर कौन से नेटिव ट्रीज लोकली अच्छे से उगते हैं वहाँ।
1: अच्छा।
0: पे जैसे फास्ट ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज या नाइट्रोजन फिक्सिंग श्रब, ज़्यादातर स्मॉल होल्डर्स के लिए सबसे अच्छा शुरुआत है।
1: मतलब कि ज़्यादा रिसर्च भी करने पड़ते हैं ना,
0: एग्रोफॉरेस्ट्री करने के लिए थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड होना पड़ता है
1: जी,
0: मालूम है,
1: इट्स अ मस्ट जी,
0: इट्स अ मस्ट
1: जी। तो आप हमें बताएं कि क्या एग्रोफॉरेस्ट्री को एक बहुत छोटी जमीन पर भी प्रैक्टिस की जा सकती है, या इसके लिए ज्यादा जो बड़ी जगह होनी चाहिए?
0: कृषि वन को ये हर एक स्केल पर परफेक्टली काम करता है। कोई लोग रूफ के ऊपर एक माइक्रो फॉरेस्ट बन सकते हैं
1: जी,
0: लेकिन जब मुनाफा की, प्रॉफिट की बात आती है, तो थोड़ा सा जमीन ज़्यादा होते हैं। जब प्रॉफिटेबल का होते हैं, तो एक एक छोटे फैमिली प्लॉट पर भी, जैसे एक एक एकड़ में मल्टी लेयर यानी कि ऊपर का बड़ा वृक्ष, मीडियम साइज और छोटे का, और इसके मिडल में जो क्रॉप्स डालते हैं
1: जी,
0: होम गार्डन कर सकते हैं, फ्रूट ट्रीज, क्लाइंबिंग बेलेन यानी कि क्रीपर्स, जो बेलेन होते हैं जैसे पेपर या वनीला, और ग्राउंड वेजिटेबल्स आसानी से फिट हो सकते हैं। छोटी ज़मीन पर स्पेस को मैक्सिमाइज करने का ये आमतौर पर सबसे एफिशिएंट तरीका है.
1: अच्छा,
0: मिक्स क्रॉपिंग.
1: मिक्स क्रॉपिंग. तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, साथ निभाते रहिएगा. बस थोड़ी देर में एक छोटी सी मिस कर ब्रेक के बाद

0: बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की चर्चा कार्यक्रम में। और आज भी हम बात कर रहे हैं एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वन के बारे में और जितने भी पहलुए हैं आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और एक बार फिर हमारे मेहमान हैं फागे की तरफ से सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट श्रीमान विशाल भिखारी जी। विशाल जी, आप के बारे में हमको पता चला कि आप भारत के झांसी गए हुए थे यानी कि एक स्टडी टूर के लिए, और वहाँ पर एग्रोफॉरेस्ट्री इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर गए हुए थे और जो टेक्निकल टर्म्स हैं यानी कि एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में और भी, क्योंकि आप एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं, वहाँ पर गए हुए थे। ये हालांकि काबिले तारीफ की बात है।
1: हाँ, तारीफ की बात है क्योंकि शायद मैं पहला मॉरिशन हूँ जहाँ पे वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे एक एक हफ्ते वो जो स्टडी टूर था और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलना चाहता हूँ इक्राफ के सभी स्टाफों को। काफ़ी काफ़ी टेक्निक्स को वहाँ पे सीख गए थे, कैसे करते हैं ये आली क्रॉपिंग, कैसे करते हैं टिम्बर की फार्मिंग, कैसे करते हैं। तो अलग अलग की टेक्निक थी जो हमने सीख के यहाँ पे लाए
0: जी। और आपकी जो सीख है आज आपके काम आ रहे हैं और आपकी वजह से हमारा भी, जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पर, जब क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं जंगल फॉरेस्ट्री तो हमेशा कहा जाता है कि आप एक, अभी जो स्थिति आ गई है आप एक पेड़ को काटते हो, हालांकि काटना नहीं चाहिए, अगर आप काटते हो तो एक दूसरे को आप उगाते चले ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे और हम भी आने वाले जो जनरेशन है वो सब सुरक्षित रहे। तो चलिए 402-85-402-8-08-5 पर अगर कोई प्रश्न है, सवाल है तो हमारे मेहमान हैं श्रीमान विशाल भिखारी जी, आपका प्रश्न, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए बिल्कुल सच है। अभी हम बात कर रहे थे बात क्लाइमेट चेंज, जो मौसम का बदलाव हो रहा है ये काफ़ी चर्चे में है और साल दर साल बहुत सारे ऐसे जो बातें होती रहती हैं, कन्वेंशंस होती रहती हैं कि कैसे हम क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो छोटे देश है बड़े देश है सब कोई अपना अपना हाथ बटा रही है, हर कोई अपना काम कर रहा है ताकि आने वाले दिनों आने वाले सालों में हम लोग और सुरक्षित हो जाए। तो विशाल जी, आप हमें बताएं कि क्योंकि आजकल हम मौसम की अचानक जो बदलाव है और तेज हवाएं ज्यादा देख रहे हैं, हालांकि अभी तो सर्दी का मौसम है लेकिन दस यानी कि मौसम बदलता चला जा रहा है। जब जोरों की बारिश होती है तो एक ही घंटे में फ्लैश फ्लड हो सकता है। अभी सुखारी आ रही है तो हमें बहुत ही फज्जत, जैसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, तो वृक्ष जो हैं, पेड़ जो हैं और खेत को खराब मौसम से कैसे बचाया जाए?
1: पहले तो अभी जो हम जो फेज जो वर्ल्ड का जहाँ पे जो फेज हम अब में है वो एल नीनो का है
0: जी।
1: एल नीनो का असर बहुत ज्यादा अब है लेकिन आने वाले कुछ हफ्ते या महीने में उसका असर बहुत बहुत प्रभावित होगा।
0: काफी लोग आपको देख रहे सुन रहे बोल रहे एल नीनो, नाम से तो सुना होगा, इनको बता दीजिएगा एल नीनो है क्या।
1: एल नीनो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे गर्मी वर्ल्ड में ऊपर का गर्मी
0: तापमान जो है
1: तापमान है बढ़ जाते हैं और नीचे जो आते हैं ज्यादा तक पानी होते हैं या बर्फ होते हैं या ठंड होते हैं लेकिन एक्सट्रीम में। अभी अभी हालांकि मैं भारत में 3000 के ऊपर लोग मर गए
0: जी
1: सिर्फ तापमान के वजह से
0: जी।
1: तो तापमान है, टेम्परेचर है, फ्लड है, बर्फ है, विंड है, साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन है, सब मिक्स करके जब ये होते हैं ये एल नीनो के स्पेस इसमें होते हैं। तो इसके इसके ओपोजिट जो है वो लानीना बोलते हैं, जो अभी हम गुजर में रहे हैं वो एल नीनो होते हैं।
0: एल नीनो जी जी। तो यहाँ पर यानी कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम लोग कौन सा एक्शन कर रही है जिसकी वजह से ये जो एल नीनो है और ना हो जाए। क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे कि अभी आपने कहा कई देशों में इतनी ठंड लग रही है पड़ रही है कि लोगों की जान भी चली जा रही है और धीरे धीरे हम भी यहाँ पर देख रहे हैं मॉरिशस में भी जो तापमान है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम अभी संभल कर नहीं चलेंगे अपना कार्य नहीं करेंगे तो शायद 5-10 सालों में 40+ का हो जाएगा।

0: इतनी ठंड लग रही है, पड़ रही है कि लोगों की जान भी चली जा रही है, और धीरे धीरे हम भी यहाँ पर देख रहे हैं मॉरिशस में भी जो तापमान है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम अभी संभल कर नहीं चलेंगे, अपना कार्य नहीं करेंगे, तो शायद 5-10 सालों में 40+ का हो जाएगा, तो
1: स्लो कर देते हैं
0: जी।
1: तो ये उन तेज हवाओं की स्पीड को कम करते हैं जो डेलिकेट क्रॉप्स को तोड़ सकते हैं और जो टॉप सॉइल को उड़ सकते हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे इरोजन हम बोलते हैं, सॉइल इरोजन पानी के साथ, वो सॉइल इरोजन होते हैं एयर के साथ भी
0: जी।
1: तो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के खेत के ऊपर बनते हैं उसको बचा सकते हैं, ये एक जैसे एक सुरक्षित माहौल बनते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: वृक्ष के साथ।
0: अच्छा, तो यहाँ पर बात हो रही है बात क्लाइमेट चेंज, तो बस हम सब अपनी जिम्मेदारियों को निभाते चले पूरी ईमानदारी के साथ, और जो हमारे बच्चे हैं अभी से ही उनको सिखाना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा जो पर्यावरण है और एक वृक्ष की क्या अहमियत होती है हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस में, उनको सिखाना चाहिए। आप हमें बताएं विशाल जी कि एग्रोफॉरेस्ट्री फार्मिंग हाउस होल्ड को ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाती है।
1: ये एक क्या बोलते हैं, एक होलिस्टिक होमस्टेड का निर्माण करते हैं
0: जी।
1: राइट, तो एक डाइवर्स फार्म फैमिली को फलों और सब्जियों की बैलेंस डाइट देते हैं, कटे हुए ब्रांचेस से कुकिंग के लिए फ्यूल मिलता है। हालांकि यहाँ मॉरिशस में हम लोग बहुत कम वुड का प्रयोग करते हैं कुकिंग के लिए
0: जी।
1: तो पशुओं के लिए चारा यानी कि फोडर मिलता है, मधुमक्खी से शहद मिलते हैं, पशु बेचकर लगातार आमदनी मिलते हैं। ये बाहर की चीज़ें खरीदने पर कम निर्भर करता है
0: जी। अभी आप बात कर रहे थे कि पहले से ज़्यादा, यानी कि आज काफ़ी लोग हम लोग गैस यूज़ करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात तो अभी होने वाली है, और पहले के ज़माने में हमारे दादा दादी तो लकड़ियों का ही इस्तेमाल करते थे, अभी तो है नहीं। तो आजकल एक और प्रॉब्लम है हमारे नौजवान जो है आजकल खेतों में ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग समझते हैं कि नहीं, इतनी पढ़ाई कर ली हमने, हम लोग खेत में काम करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो जैसे कहते हैं मैं अवैध करना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको एग्रोफॉरेस्ट्री के जरिए खेतों में आने के लिए जो है कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: जब हमारे दादा लोग खेती बाड़ी करते थे
0: जी,
1: तो वो एक अलग सी खेती बाड़ी करते थे
0: जी,
1: क्योंकि उस टाइम पे ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी नहीं था। आज के नौजवान अक्सर ट्रेडिशनल फार्मिंग को रिस्की और फिजिकली एग्जॉस्टिंग समझते हैं।
0: अच्छा,
1: वो नहीं चाहते हैं धूप जाने के लिए, ये करने के लिए, सिर्फ काम करने का, गाड़ी चलाने का और खरीदने का
0: जी,
1: लेकिन उगाने का नहीं। अगर कोई ये जो सब जो एआई पे जा रहे हैं अभी
0: जी,
1: लेकिन एआई खाना नहीं देता है, एग्रीकल्चर खाना देता है। तो एग्रोफॉरेस्ट्री एक एग्रीटेक और इकोसिस्टम मैनेजमेंट का माइंडसेट लेकर आती है
0: जी।
1: ये खेतीबाड़ी जो को एक सस्टेनेबल मल्टी रेवेन्यू बिजनेस में बदल देता है। तो नौजवानों को आज की जनरेशन के लिए कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव, मॉडर्न और फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, लेकिन प्लानिंग अच्छा करना पड़ेगा।
0: वो तो ज़रूरी बात है ये डेफिनेटली, जैसे कि आपने कहा प्लानिंग, एक जो भी हम लोग काम करते हैं प्लानिंग के सिवा उसके बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो एग्रीफॉरेस्ट्री जो है एक ऐसा माध्यम हो सकता है, हमारे जितने नौजवान हैं अगर आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हैं देन वाई नॉट, और इतनी सारी मदद भी मिलती है फाग की तरफ से, सरकार की तरफ से इतने सारे स्कीम्स होते हैं, तो आप लोग ट्राई तो कीजिए। और हमेशा कहते हैं माटी के हमेशा मोल ही रहती है और उसका मोल कभी घटती नहीं है, तो बस हमारे ज़मीन के साथ जुड़े रहें। आप हमें बताएं कि अगर कोई किसान कल से एग्रोफॉरेस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाहे तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए।
1: पहला स्टेप है कि लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं, फूल, शहद, टिम्बर का पैदावार, फल का या पशुपालन का, दूसरे बाद में अपने खेत को

0: या मिट्टी को ऑब्जर्व करो
1: जी,
0: देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी फसलें को सबसे ज्यादा नुकसान कैसे होते हैं, जोर हवा से या धूप से या चोरी से या सोइल इरोजन से, और अपनी खली जगहों को नोट कीजिए, कहाँ फेंसिंग डालना पड़ेगा या फील्ड बॉर्डर्स को लगाना पड़ेगा, और तीसरी एक कृषि वन की प्रोजेक्ट को पूरा प्लानिंग के साथ करना है
1: जी,
0: एक अच्छा मैप टोपोग्राफी के साथ तैयार करने का, और अपने मिट्टी का लैब लेबोरेटरी का एनालिसिस करने का, देखते हैं जैसे एनपीके या ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, ये सब आधार पर प्लानिंग करना है, और फिर हमारा संस्था जो फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट के द्वारे से हमारे एक्सटेंशन सर्विस ऑफिसर्स या साइंटिस्ट से बात कीजिए, हम हैं यहाँ पे मौजूद हैं बात करने के लिए, ताकि उन स्पॉट्स या उन प्रोजेक्ट्स को फॉलो साथ ही साथ काम कर सकते हैं, तो बेस्ट मैचिंग ट्रीज की एडवाइस दे सकते हैं या वो मिल सकते हैं
1: जी।
0: और पांचवा, शुरुआत में स्मॉल स्केल पर कीजिए, स्मॉल सीखिए
1: जी,
0: स्मॉल स्केल पर, और फिर एक्सपांड कीजिए हर साल या हर 6 महीने, ऑल डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल, अगर फाइनेंस है तो आप एक ही तरफ से 10 एकड़ तो लगा सकते हैं, लेकिन धीरे से स्लोली कीजिए, ये नए तरीके को अपनाइए और हमारे मिट्टी को बचाइए, मोनोक्रॉपिंग पर मत जाइए, मिक्स क्रॉपिंग को अपनाइए वृक्षों के साथ
1: जी। और पिछली बार भी आपने कहा था कि मोनोक्रॉपिंग पर मत, तो मिक्स क्रॉपिंग जो है बहुत ही फायदेमंद है, तो अभी जैसे विशाल जी ने कहा कि अपनी मिट्टी को पहचानिए, आप एनालिसिस कीजिएगा और अपनी मिट्टी के बारे में, आपको अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जितने भी खेतीहर अपने खेत के बारे, अपनी मिट्टी के बारे में उनको सब कुछ अब पता होना चाहिए, और स्कीम्स के बारे में इतनी सुविधाएं जैसे कि आप बता रहे हैं विशाल जी कि फाखे की तरफ से इतने सारे प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग है दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है, सुविधाएं मिलती हैं, तो कितने सारे लोगों ने फायदा उठा लिया है, अब आपकी बारी है। चलिए वापस आते हैं एक छोटे से मिस कॉल ब्रेक के बाद।

0: बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमारे हम सफर बनने के लिए आज के चर्चा कार्यक्रम में। तो हम इस अंतिम पढ़ाओ के बस आ ही पहुँचे हैं करीब, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और इसको अपनाने से हमारे पर्यावरण, हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा भविष्य कैसे उज्ज्वल हो सकता है, कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, और इनको अपनाते हुए अडॉप्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर हमारे खास मेहमान श्रीमान विशाल भिकारी जी, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट फागे की तरफ से। विशाल जी, हम लोग अब बात कर रहे हैं भविष्य के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। जिस क्षेत्र में भी आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी ने अपना कदम बढ़ा ही लिए है। तो हम बात करेंगे नेशनल विजन सपोर्ट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। आप हमें बताएं कि जो फार्मर आज हमें सुन रही हैं, देख पा रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, और एग्रोफॉरेस्ट्री में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, क्या उन्हें इस ट्रांजिशन करने में कोई मदद, लोकली कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम है, कोई ग्रांट जैसे कि स्कीम्स के बारे में बात करें, टेक्निकल जो असिस्टेंट प्रोग्राम है, क्या कुछ उनके लिए अवेलेबल है?
1: जो संस्था है, संस्थाएं
0: जी,
1: सिर्फ फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट सिर्फ ये नहीं, फॉरेस्ट्री सर्विस भी है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी है
0: जी।
1: तो टेक्निकल गाइडेंस के लिए किसानों डायरेक्टली फरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, हम बात करेंगे, देखेंगे उसकी ज़मीन क्या है, टोपोग्राफी क्या है, एरिया क्या है, क्लाइमेट क्या है, क्या दे सकते हैं, और इसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे उसको कैसे कनालाइज करेंगे, ताकि उसकी लक्ष्य पर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और सेकंडली, जब आप बात कर रहे थे इंसेंटिव के लिए, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल ग्रांट स्कीम को एक्सप्लोर करें, बहुत सी स्कीम है जो एक्सटेंशन सर्विसेज में है, जो ऑर्गेनिक जो

0: और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए हैं, बहुत सी स्कीम हैं, और कम्युनिटी और नेटवर्क सपोर्ट के लिए लोकल एग्रीकल्चरल नेटवर्क्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशलाइज्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटीज या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से जुड़े एसोसिएशन, और आपस की मेंटरशिप जब बात करते हैं, जब ग्रुप होते हैं, क्या करना है, अगर मैं ये आपको मदद कर सकता हूँ, मैं ये आपको देता हूँ,
1: आइडियाज मिल जाते हैं,
0: मिल जाते हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं
1: जी, जी.
0: और साधन के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग में काफी मदद करते हैं. तो डिस्कशन करना पड़ेगा
1: जी.
0: और फाइनली अगर अच्छे प्लानिंग है
1: जी.
0: और जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग या कुछ तो भी, जैसे कैसे उगाना है, कैसे करने का सब प्लानिंग करना है.
1: मैंने कि साधन तो है, वेज टू है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है फागी है, जैसे कि और आपने अभी नाम लिया है, और कम्युनिटी जो नेटवर्क, जैसे कि आपके कोऑपरेटिव्स होते हैं बहुत सारे. तो सबसे पहले जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं, उनको वो कदम बढ़ाना पड़ेगा सबसे पहले.
0: बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट का संस्था नहीं है, सिर्फ पैरासिटिकल बॉडीज नहीं है, एनजीओज भी है, प्राइवेट बॉडीज भी है.
1: अच्छा.
0: अगर सब एक ही लक्ष्य पे काम करते हैं तो हम आसानी से वो जो गोल है
1: अचीव कर सकते हैं,
0: अचीव कर सकते हैं
1: जी. अब आप हमें बताएं कि जो इंडिविजुअल फार्म से आगे अगर पूरे आइलैंड पर बड़े संख्या पर एग्रोफॉरेस्ट्री को अपनाया जाए तो इससे पूरे आइलैंड को क्या फायदा हो सकता है, हमारा जो छोटा सा मॉरिशस है.
0: ये आपके सवाल की बहुत छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी
1: पेचीदा है.
0: आसानी से करता हूँ क्योंकि कार्बन जो बोलते हैं, जो हमारे देश का जो फायदा होते हैं, रिफोरेस्टेशन एक चीज, और एक और चीज जो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन को बोलते हैं. जब एक वृक्ष या कुछ तो ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से कैप्चर करते हैं
1: जी,
0: और इसके फ्रूट्स में या पूरे वृक्ष में जाते हैं, पूरे वेजिटेबल्स में जाते हैं, और शुगर बनाते हैं. तो एक तरफ से एक चीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं, तो यानी कि क्वांटिफाइबल कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन. तो इसके बारे बड़े पैमाने से एग्रोफॉरेस्ट्री एक मैसिव कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं. जैसे हम सब कार्बन डाइऑक्साइड को अट्रैक्ट करते हैं, अगर वृक्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं है एब्सॉर्ब करने के लिए
1: जी.
0: तो अगर पहले से ही मिट्टी खराब हो गए हैं, जैसे सालों तक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना, तो डेकेड्स में वो मिट्टी का खराब हो जाएगा. तो वृक्ष कृषि वन से एक जो, जब हर बार मैं बोलता हूँ मल्टी लेयर ट्री सिस्टम, यानी कि बड़ा, मीडियम और छोटे के साथ, धीरे धीरे समय के साथ एटमोस्फेरिक कार्बन मेट्रिक टन्स में कैप्चर होते हैं. और नेशनल क्लाइमेट टारगेट्स, हमारे जो नेशनल क्लाइमेट टारगेट्स हैं, जहाँ पे काम करते हैं बहुत की संस्थाएं काम कर रहे हैं इसके ऊपर, को पूरी करने में मदद करती है.
1: अच्छा, तो ऐसी अगर बात है तो अगले एक दशक माने कि जो डिकेड को देखते हुए एग्रोफॉरेस्ट्री को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड बेसलाइन बनाने के लिए कौन सी पॉलिसीज की आवश्यकताएं हैं.
0: एक चीज है जो उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स.
1: बाप रे बाप, बड़े बड़े शब्द है.
0: यानी कि मानकित वैज्ञानिक ढंच. तो पॉलिसी मेकर्स को लॉन्ग टर्म रिसर्च को सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है, ताकि लोकलाइज. एक चीज एक और बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक है, उसको बोलते हैं एलोमेट्रिक इक्वेशन या डेंडोमेट्रिक्स, जो मैथमेटिक्स और प्लांट पौधे के जब मिक्स करते हैं तो डेंडोमेट्रिक्स बन जाते हैं. और कार्बन स्टॉक वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल डेवलप किए जा सकते हैं. तो एलोमेट्रिक इक्वेशन से या ऐसे ऐसे कैलकुलेशन से हम जान सकते हैं अगर हमारा कंट्री

0: हमारे देश का ब्लूप्रिंट कार्बन प्रूफिंग क्या है, तो एक्यूरेट और आइलैंड स्पेसिफिक साइंटिफिक डेटा होने से इंश्योर होगा कि एग्रोफॉरेस्ट्री को नेशनल कार्बन अकाउंटिंग में फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जा सकते हैं पूरे विश्व में हम क्या कर रहे हैं ऐसे छोटे देश में, जो हम इतना छोटा है तो एक एक एक मिसाल बन जा सकते हैं।
1: जी, यहाँ पर आप इतने बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं ये कौन से शब्द हैं भाई। बस हमको आम इंसान हैं और यही सोचते हैं कि हम जो करते हैं उसका रिएक्शन होता है, प्रसिक्यूशन भी होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अभी आपने कहा कि हम मॉरिशस जो है एक छोटा सा देश है और इतने बड़े बड़े देश जो हैं कभी कभी बोलो काफ़ी पॉपुलेट यानी कि ओवर पॉपुलेटेड भी हैं, और पॉल्यूशन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो वे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, लेकिन इसका असर जो है हम लोगों को भी भुगतना पड़ता है, है ना?
0: हम लोग तो कैसे बोलते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को बोलते हैं, तो हम लोग बहुत नाजुक हैं
1: जी,
0: छोटे देश हैं, ज्यादा तक बाउंड्रीज नहीं है, सिर्फ समुंदर है, एक सुनामी आ जाएगा तो लाखों लोग मर जाएंगे यहाँ पे। तो अभी गर्मी के वजह से जो ओशानिक साइकिल है बदल रहे हैं, तापमान समुंदर का बढ़ रहा है, हमारे कोरल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे इरोजन बीच को इरोड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो समस्या आने वाले हैं सबसे गंभीर होने वाले हैं, अवश्य गंभीर होने वाले हैं। तो जो भी हम कर सकते हैं करना पड़ेगा
1: जी
0: अभी।
1: जी, तो हमारे ये जब हम लोग मॉरिशस की बात कर रहे हैं, छोटा सा देश है और लाइक अगर देखा जाए तो अगर आप बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज है जब हम फॉरेस्ट्री जंगल की बात करते हैं तो
0: मॉरिशस में?
1: जी,
0: ज़्यादा तक फिगर्स दिमाग में नहीं है, लेकिन बहुत घट चुके हैं, शायद 3-4% है मॉरिशस,
1: बस यही है,
0: क्योंकि 1800 में मॉरिशस का 80% 75% के ऊपर था
1: जी।
0: तो धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ गए,
1: डेवलपमेंट होने लगी, कंस्ट्रक्शंस,
0: एग्जैक्टली
1: जी,
0: तो ये धीरे धीरे फॉरेस्ट को घट गई है, तो हम सिर्फ 3-4% पर है,
1: देखा जाए तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर डेवलपमेंट भी ना हो, कंस्ट्रक्शन भी ना हो, तो जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनका हम कैसे समाधान ढूंढेंगे, ये भी एक प्रश्न है। तो हम क्या कर सकते हैं अगर ये 3% तो थोड़ा सा उसको और बढ़ा सके तो?
0: बढ़ा सकते हैं जैसे भारत या चीन या ब्राज़ील को एग्जांपल लेते हैं, तो वो पाइलर्स के ऊपर रोड बनाते हैं
1: जी,
0: फॉरेस्ट नीचे होते हैं, वाइल्ड लाइफ नीचे होते हैं, तो एरियल रोड बनाते हैं, तो अगर ये कर सकते हैं अच्छा होगा, तो जमीन ही बचेगा और ट्रैफिक भी अच्छा होगा, शायद ये सोचने की बात है
1: जी,
0: कैसे करने का, कैसे बचाने का वृक्षों को या नेचर को
1: जी। चलिए, हर कोई सोचता रहे, एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर हमारे हम सफर बनने के लिए। तो हम इस आज की चर्चा कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक पहुंच आए हैं। विशाल जी, अभी आपने इतने बड़े बड़े शब्द की बात की है, कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, पता है हमने सीखा है स्कूल कॉलेजेस में, जब आप पेड़ वगैरह उगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनको अब्सॉर्ब करते हैं। ये कार्बन फुटप्रिंट क्या है, अभी इसके बारे में आपने काफ़ी बात की है, लेकिन जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं फूड जो क्रॉप्स हैं उनके साथ जो पेड़ लगाना वगैरह, यानी एग्रोफॉरेस्ट्री, आखिर में एक फार्म को क्लाइमेट चेंज से लड़ने में कैसे मदद करते हैं?
1: पहले एक चीज को बोलना चाहता हूँ कि जो जब हम कार्बन फुटप्रिंट को बोलते हैं
0: जी,
1: एक वृक्ष, जैसे वन एग्जांपल लेता हूँ, एक वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं, और प्रकृति में
0: जी
1: सिर्फ प्लांट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं
0: जी,
1: कोई नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। तो जब भी एक वृक्ष या कोई स्पीसीज या एक एरिया जो भी जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब किया, जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना कार्बन, कितना मेट्रिक टन कार्बन को सेकेस्ट्रेट किया, वो इसका एक जैसे एक फुटप्रिंट, जैसे हम वॉक करते हैं
0: जी,
1: एक फुटप्रिंट होते हैं
0: जी,
1: तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसे फुटप्रिंट होते हैं।
0: अच्छा।
1: कहाँ पे छोड़ दिया, कितने मात्रे में छोड़ दिया, कैसे में छोड़ दिया, तो ये एक एक एक पूरी वर्ल्ड डिबेट है
0: जी।
1: जो कौन सी देश कौन सी फुटप्रिंट को लगाते हैं, तो जैसे फूड कार्बन प्रिंट या ये एक बिजनेस बन गई है। तो कृषि वन को आप प्रकृति के एक चीज बोल रहा हूँ जो जो जो टेक्निकल है लेकिन सब समाते हैं इसमें, उसके बोलते हैं अल्टीमेट ग्रीन वैक्यूम।
0: मतलब
1: यानी कि एक एक ऐसा वैक्यूम, ऐसा स्पेस होते हैं जो जो सभी जो कार्बन है, जो जब भी आप सोप करते हैं सब स्टडीज में वो इसके अंदर में जाते हैं। तो अल्टीमेट ग्रीन वैक्यूम

0: समझ सकते हैं कृषि वन के ऊपर, जहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग से अक्सर कार्बन रिलीज होता है, वहाँ क्रॉप्स के साथ वृक्ष लगाना पूरा खेल ही बदल देता है,
1: अच्छा।
0: पूरा वो पलट देता है जब भी वृक्ष आते हैं। तो वृक्ष हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, जो खींच करके उन्हें सालों तक अपने वुड या जड़ें या लीव्स या ब्रांचेस में लॉक कर देते हैं। तो अगर वृक्ष और फसलें को साथ साथ कृषि करेंगे तो हम सिर्फ खाने नहीं उगाएंगे
1: जी,
0: हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं और फार्म पर ही क्या बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट फ्यूचर बना रहे हैं, जो आने समय में बहुत लाभ होगा। हमारे जनरेशन जो आ रहे हैं वो नहीं जानते हैं पीछे में हम लोग क्या किया, काटा है या डिस्ट्रॉय किया है। तो आने वाले समय में हम तैयारी करना पड़ेगा।
1: जी जी, तो चलिए चलते चलते हमारा आज का जो प्रोग्राम है, आज की चर्चा कार्यक्रम समाप्त हो चला। आपका जैसे कहते हैं अंतिम मोदुलाफा
0: मोदुलाफा एक एक एक चीज है, जैसे पिछले बार मैंने बोला था कि बहुत समय पहले हम लोग कृषि करते थे वन में, तो एक अथर्ववेद के एक श्लोक है जो कृषि वन फूड प्रोडक्शन सिस्टम पर पूरी तरह से फिट होते हैं। तो ये जो श्लोक है, यते भूमे विखानामि श्री प्राण ताद प्री रोहतु, अर्थात जो भी मिट्टी से लेता हूँ जल्दी फिर से उगाना
1: जी।
0: तो जो भी हम लेते हैं प्रकृति से वापस देने का,
1: तो चलिए हम भी मिट्टी में ही आए थे, मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही चले जाएंगे। बस अंतिम शब्द है, जितना हो सके आप वृक्ष जो है पेड़ जो है उगाते रहे, और जो कार्बन मोनोक्साइड है, जैसे यहाँ पर श्रीमान विशाल भिकारी जी ने कहा, जो कार्बन फुटप्रिंट्स है, आगे जो जनरेशन है वो ही उनको पता चलेगा हमने क्या किया, और उनके आने वाले भविष्य को हम सुरक्षित करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विशाल भिकारी जी, आप फागे के सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं, और जितने भी हमारे श्रोता दर्शकगण हम लोगों को देखा, फॉलो किया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन, प्रणाम।
2: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: ट्रकियो टाइम स्टूडियो की घड़ी में इट्स एग्जैक्टली 4 PM। आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार यनिशा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। पंटो साबले में एक नाली से गंदा पानी बहकर लगून के पास पहुंच गया। इस पानी के बहाव को रोकने के लिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की लगभग 100 टैंकर तैनात की गई। 5 दिनों में करीब 1000 क्यूबिक मीटर गंदा पानी पंप किया गया है। गलती से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पाइप टूट गया, जिसके बाद बुधवार रात से ही एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। नाली में भले ही मरी हुई मछलियां पाई गई हैं, लेकिन पंटो साबले के समंदर को प्रदूषित होने से बचाया जा सका है। हायर स्कूल सर्टिफिकेट के लिए सब्सिडियरी विषय के रूप में खोल मोरिसिया की पहली परीक्षाएं 2027 के लिए निर्धारित हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट को अक्रेडिटेशन के लिए जिम्मेदार संस्था के रूप में मान्यता दी है, जिसके लिए कैम्ब्रिज MES की जॉइंट सर्टिफिकेट दी जाएगी। कैम्ब्रिज और शिक्षा मंत्रालय की बैठक के दौरान इस पर बात की गई। SC और HSC के स्तर पर खेल मोहिसिया का चयन करने वाले छात्रों के लिए मंत्रालय की ओर से अन्य 8 विषयों की तरह ही सरकारी सहायता से लाभ मिलेगा। शिक्षा की ही बात करते हैं। देश में पहली हिंदी संस्था तिलक विद्यालय अपनी शताब्दी मना रहा है। उसकी स्थापना को 100 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर कल मोतालोंग में हिंदी प्रचारणी सभा की सीट पर लोकमान्य तिलक

0: तिलक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारतीय मूल के लोकमान्य तिलक ने देश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति सहित कई अन्य मंत्री, सांसद और भारत से आए डेलीगेशन के सदस्य शामिल रहे। विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में किए जाएंगे। इसके बाद दोनों पक्ष स्थायी समझौते तक पहुंचने के लिए आगे की वार्ता जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM3 Radio. Radio. Radio.
3: आइए जानते हैं NBC Play पर New World Sports Pack में सब्सक्राइब करने का तरीका। Step 1. सब्सक्राइबर को पहले NBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप 2, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द NBC Play एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा NBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
4: 94.6, 98.2 megahertz. You're listening RM3 Radio. Radio.
3: आपके सितारे।
0: सोमवार 15 जून घड़ी मिला लीजिए 4:06 RM3 रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का वेलकम है। आप सभी का स्वागत हम करते हैं। कैसे हैं आप सभी? ठीक तो है ना? तो चलिए बिल्कुल ठीक है, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और आज के आपके सितारे इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज आपके सितारे प्रोग्राम एक ऐसे एक्टर पर हम करने वाले हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है और जो खासकर अपने एक्शन के लिए तो जाने ही जाते हैं, अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने ही जाते हैं, साथ ही अपने डांसिंग स्किल्स के लिए भी काफ़ी मशहूर है। और ये जो है कल अपना बर्थडे मनाने वाले हैं। सो इनको हैप्पी बर्थडे इन नहीं कल नहीं है इनका बर्थडे कल नहीं है इनका बर्थडे हम जो है कल नहीं है इनका बर्थडे आने वाले मतलब कि हो चुका है इनका बर्थडे, लेकिन जो है आज हम इन पर जो है आपके सितारे ये प्रोग्राम करने वाले हैं। यहाँ पर किसी का बर्थडे का मैसेज आया तो हमसे बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो चलिए आज जो है, आज आपके सितारे इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जो अपनी एक्टिंग के लिए तो जाने ही जाते हैं।

0: आपके सितारे।
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं और आज आपके सितारे प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में। और यहाँ पर कभी कभार ये जो इंटरनेट है ना, हमें कभी कभार ऐसी जानकारी देता है जिस पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते ना कि जब भी सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी के बारे में आप मतलब के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मेक श्योर कि वो जानकारी सही हो। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में। कल 16 जून को ये मनाने वाले हैं अपना जन्मदिन। सो इनके सभी फैंस की ओर से, इनके सभी चाहने वालों की ओर से इनको हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और इनके बारे में क्या कहे, इन एक्टर तो है ही, साथ ही फिल्म प्रोड्यूसर भी है और साथ ही पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत जो है आजमा चुके हैं। और जितना ये अपने बेहतरीन एक्टिंग और अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं, उतना ही अपनी डांसिंग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं। और साथ ही 5 दशक से भी ज़्यादा फैले अपने करियर में इन्होंने 350 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं, हिंदी के साथ साथ बंगाली फिल्में और साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं में, भोजपुरी, तेलुगू, उड़िया, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए मिथुन जी के बारे में कुछ और अगर आप भी जोड़ना चाहते हैं तो बेशक आपका स्वागत है। अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन 5250600 पर, या तो यू कैन कॉल अस ऑन 4028070। ऐसे तो इन्होंने जो है मृग्या इस फिल्म से जो है अपने करियर की शुरुआत की थी, जो 1976 में आई थी और पहली ही फिल्म के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था।

0: आपके सितारे
1: चले आपके सितारे इस प्रोग्राम में या कनेक्टेड है। थैंक यू सो सो मच। और आज मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको इन द बिगनिंग बताया था 1976 की फिल्म मृग्या से इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। बाकायदा इन्होंने एक्टिंग सीखी है और पहली ही फिल्म के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था फॉर बेस्ट एक्टर। हाँ, और उसी साल में कुछ अन्य फिल्में भी आई थी और उसके बाद इन्होंने फिर पहले तो इन्होंने हिंदी फिल्म में जो है डेब्यू किया और फिर बंगाली फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की 1978 में, और कुछ साल हिंदी बंगाली फिल्में करने के बाद इनफैक्ट वो फाइनली वो फिल्म डिस्को डांसर थी जिसके ज़रिए इन्हें इतनी बड़ी शोहरत हासिल हुई। डिस्को डांसर इस फिल्म की बात करें तो वो फिल्म अब भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स में गिनी जाती हैं। ओवरसीज इस फिल्म को आज भी बहुत पसंद किया जाता है और इसी फिल्म के ज़रिए इन्हें एक ऐसे एक्टर का टैग भी मिला था जो एक्टिंग के साथ साथ बहुत ही खूबसूरती से डांस भी करता है और इनका स्टाइल इनका अंदाज़ एक अलग ही था। पहले के एक्टर्स की बात करें तो हर एक एक्टर का अपना एक यूनिक अंदाज़ होता था, फिर चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, बालों का स्टाइल हो, चलने फिरने का स्टाइल हो या डायलॉग डिलीवरी हो, इनका भी स्टाइल कुछ ऐसा ही था और लोग इनके स्टाइल को बहुत ही पसंद किया करते थे और आज भी करते हैं, नो डाउट।

0: आपके सितारे।
1: जी हाँ, कोई भी दिल में ना आया था। खूबसूरत गाने तराने यहाँ चल रहे हैं और आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तो फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन किसी कलाकार पर बात हो रही है और कोई गाना अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस गाने को चलाने की। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगला गाना आपके नाम हम करते हैं, प्यार का मंदिर फिल्म का ये तराना है, ऐ दुनिया तुझको सलाम। किशोरदास साथियों की आवाज़ों में चले। आप भी अगर मिठुनदा के फ़ैन हैं और उनका कोई गाना सुनना चाहते हैं या किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन 5250-6200 पर, या तो यू कैन कॉल अस ऑन 4028070 पर। यहाँ पर वरुणा जी, आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अगला गाना चल पड़ा आप सभी के लिए।

गाने आप पसंद कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मिठुन दा के लाइफ के बारे में क्या कहें, हम सभी तो जानते ही हैं और उनके फिल्मों के बारे में, और यहाँ पर जो है उनके फिल्मों की बात करें तो जितना करियर का शुरुआती दौर इनका कमाल का रहा है वैसे ही बाकी सारे साल भी इनके करियर के लिए काफ़ी कमाल के रहे हैं। जैसे कि 350 से भी ज़्यादा फिल्में इन्होंने की है और अपने टाइम के शायद ही कोई ऐसे एक्टर्स होंगे जिनके साथ या एक्ट्रेस होंगे जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया है। ऐसे जो है इनके ज़्यादातर पॉपुलर फिल्मों का जो म्यूज़िक है वो बप्पी लाहिरी साहब ने दिया है, गाने भी काफ़ी सारे बप्पी लाहिरी साहब ने इनके लिए गाए हैं, किशोर दा ने भी काफ़ी गाने इनके लिए गाए हैं, इनकी आवाज़ इन पर बड़ी जचती थी। फिर कसम पैदा करने वाली फ़िल्म की बात करें, घर एक मंदिर इस फिल्म की बात करें, या प्यार झुकता नहीं, जी हाँ, मतलब कि फिल्मों के नाम ऐसे, फिल्मों के गाने भी उतने ही कमाल के हैं। और चलिए प्यार झुकता नहीं फिल्म की बात की ही है तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गाना हम आप सभी लवली लिसनर्स के लिए चलाए जो इतने प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्यार झुकता नहीं फिल्म की बात करें तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। तो चलिए ये गाना जाता है यहाँ पर सरिता जी आपके नाम कटरबोन से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। यहाँ पर माय नेम इज़ रेणुका लिसनिंग फ्रॉम लंदन। हेलो रेणुका जी, कैसी है आप? कह रही आज आपकी छुट्टी है तो आपको इस प्रोग्राम से जुड़ने का मौका मिला, थैंक यू सो मच। ऐसे अभी के लिए जो गाना हम चला रहे हैं इस गाने में आपका नाम हम जोड़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा, प्रोग्राम को आप पसंद कर रही है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लवली सा तराना आप के लिए भी रेणुका जी चल पड़ा।

0: तो चलिए फूल और अंगार फिल्म का ये खूबसूरत सा तराना अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू सुजाता गोस्वामी की आवाजों में।
1: आपके सितारे
0: टुडे इन आपके सितारे हम बात कर रहे हैं मिथुन दा के बारे में। टुमारो हिल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे और आपके इतने सारे मैसेजेस इतने सारे फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर विशाल जी हमारा साथ दे रहे हैं गानों को पसंद कर रहे हैं थैंक यू सो सो मच। अगला गाना जाता है सूरज सूरज शर्मा जी आपके नाम थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। बिल्कुल अगला गाना आपके नाम हम करेंगे। अगला जो गाना है डिस्को डांसर फिल्म का ही तराना होगा लेकिन चलिए कुछ और बातें हम मिथुन दा जी के बारे में जोड़ते हैं। प्यार झुकता नहीं 80 के सालों की पॉपुलर फिल्मों में से एक रही है। फिल्म के गाने भी बड़े कमाल के थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने गानों को जो है कंपोज किया था और उसके बाद कई अन्य फिल्में आई उसी दशक के दौरान जो बहुत ही सक्सेसफुल रही इनके करियर के लिए जैसे कि गुलामी गुलामी इस फिल्म में अनीता राज जी के साथ ये नज़र आए थे। इसे गुलामी फिल्म में भी एक बड़ा ही कमाल का गाना है थोड़ी देर में हम ज़रूर चलाएंगे इस गाने को। वहीं पर अगली फिल्म आंधी और तूफान में नज़र आए क्योंकि 80 का जो साल ऐसा था जहां पर रोमांटिक फिल्मों के साथ साथ एक्शन फिल्मों में भी इन्होंने काम किया और बहुत सारे फिल्मों में इनके डांस सिक्वेंस भी हुआ करते थे जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। चले अभी के लिए हो जाए ये गाना आप सभी लवली लिसनर्स के लिए।

0: चलिए यहाँ पर आपके सितारे इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। देखते ही देखते शाम के 5:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। एक दौर ऐसा था जहाँ पर मिठुन दा की फिल्में इतने कमाल के हिट कर होती थी, और एक समय ऐसा भी आया जहाँ पर जो है ये कुछ ऐसी फिल्में करने लगे जहाँ पर इनका करियर ग्राफ जो है थोड़ा सा गिरने लगा। और उसके बाद जो है एक समय ऐसा था अर्ली 90s की अगर हम बात करें, अर्ली 90s मतलब कि 90 का दशक इनके करियर के लिए ऐसा रहा कि बैक टू बैक जो है इनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और वहीं पर इनका जो करियर है ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे आने लगा। और लेकिन कहते हैं ना कि जो सितारा है वो तो हमेशा चमकता ही है, इन्होंने कभी भी जो है हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। और उसी समय इन्होंने बंगाली फिल्मों पर फोकस करना शुरू किया और वहाँ पर जो है एक जगह इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही थी, वहीं पर दूसरी ओर इन्होंने अपनी तकदीर आजमाई और फिल्मों के प्रति लगाव होने के प्रति जो है इन्होंने कुछ बंगाली फिल्मों में काम करना वहाँ पर फिर आगे बढ़ाया और वहाँ पर उन्हें काफ़ी शोहरत मिली। एक समय ऐसा भी आया जहाँ पर इन्होंने हिंदी फिल्मों में फिर कमबैक किया। जी हाँ, 2007 में मनी रत्नम की फिल्म गुरु के साथ इन्होंने कमबैक किया और इस फिल्म में इनके किरदार को बहुत पसंद किया गया। इनके काफ़ी कैरेक्टर रोल्स ऐसे रहे हैं जो काफ़ी कमाल के रहे हैं लोग, जैसे कि गुरु फिल्म में इनका जो किरदार था वो काफ़ी अच्छा था, गोलमाल 3 में भी ये नज़र आए थे, और इस फिल्म में इनका जो एक कॉमेडी कैरेक्टर था जो लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। वहीं पर जो है इन्होंने पॉलिटिक्स में भी किस्मत आजमाई है। मेरे
1: हीरो ये क्या करती?
0: अभी के लिए हो जाए अग्निपथ फिल्म का ये तराना। ये फिल्म भी इनके करियर के एक बेहतरीन फिल्मों में से एक है। ऐसे ये फिल्म में मेन कैरेक्टर तो अमिताभ जी का था लेकिन इनका भी रोल काफी सराहनीय था। इनके ऑपोजिट नीलम नजर आई थी।
2: मेरे जानो,
1: मुझे डर लगती है।
2: मेरे बालम,
1: तेरा भाई हमको मारती।
2: तुझे सलाम, मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
3: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
3: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
3: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
3: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
3: हाँ मर जाता।
2: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
3: हाँ, यू आर इन लव।

0: के सितारे।
1: ऐसे मिथुन साहब से तो हर कोई प्यार करता है, इनके सभी फैंस, इनके सभी चाहने वाले, और इन्होंने काफ़ी रियलिटी शोज भी होस्ट किए हैं एज अ जज, मतलब कि होस्ट नहीं जज किए हैं, जहां पर खासकर डांस रियलिटी शो। और इनके अगर करियर की बात करें तो करियर के दौरान इन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया था मृग्या इस फिल्म के लिए, अपनी पहली ही फिल्म के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, मतलब कि इन्हें इन ऑल 4 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं और 1 स्क्रीन अवार्ड्स। नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो मृग्या इस फिल्म के लिए, फिर ताहेदार कथा इस फिल्म के लिए, स्वामी विवेकानंदा इस फिल्म के लिए, और साथ ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी ये जो है नवाजे गए थे। और स्वामी विवेकानंदा इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो है इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। अग्निपथ इस फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड मिला था। वहीं पर जल्लाद इस फिल्म के लिए, इनके नेगेटिव किरदार के लिए इन्हें अवार्ड जो है दिया गया था। काफ़ी बंगाली फिल्मों के लिए भी इन्हें अवार्ड मिले हैं और साथ ही जो है अन्य अवार्ड से भी ये नवाजे गए हैं। और चलिए अभी के लिए हो जाए एक और खूबसूरत सा गाना, और ये भी आपको याद दिला दें कि साल 2024 में भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो चलिए इस समय हमारे साथ नंदिनी जी जुड़ी हुई है। नंदिनी जी शुक्रिया आपके प्यार भरे साथ के लिए। माला जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

listening to RM3 Radio Manoranjan. चले इसी के साथ आपके सितारे जो प्रोग्राम है ख़त्म होने को चला। आज मिथुन दा पर आधारित था हमारा, आप दे रहे हैं इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो थैंक यू सो सो मच। और चले इसी के साथ इस आखिरी गाने के साथ हमारी आज की जो ये मुलाकात है ये ख़त्म होने को चली। हम आपसे जल्द फिर मिलेंगे, ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर साथ देते रहिएगा, हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और 6 बजे जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। हम आपसे मिलने जल्द फिर लौटेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार आप सभी को।

0: शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष खत्म करने और होर्मुज तेल शिपिंग चैनल दोबारा खोलने पर समझौता हुआ, जिसकी घोषणा मध्यस्थ रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने की। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले एसएमईज इस समय बढ़ती लागत, श्रम शक्ति कमी और फंडिंग की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए सरकार ने से वित्तीय मदद और तकनीकी मदद की मांग। आज विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये एक ऐसा अवसर है जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तेजी से बढ़ती वैश्विक आबादी के संदर्भ में बुजुर्गों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। और लॉन्ग माउंटेन स्थित मॉरिशस के पहले हिंदी स्कूल तिलक विद्यालय के शताब्दी समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति और हिंदी प्रचारिणी सभा के सदस्यों की उपस्थिति में एक प्रतिमा का किया गया अनावरण। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब पेश समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद दोनों पक्ष स्थायी समझौते तक पहुंचने के लिए आगे की बातचीत जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकाबंदी हटा दी जाएगी। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: अमेरिका और ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए एक रूपरेखा समझौते पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होने तय हुए हैं। इसे महीनों की लड़ाई के बाद एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं और वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस समझौते के हिस्से के रूप में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान, जिसने रविवार देर रात इस समझौते की घोषणा की थी, का कहना है कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान समाप्त हो जाएंगे। ये युद्ध 28 फरवरी को ईरान भर में अमेरिका और इजराइल के हमलों के साथ शुरू हुआ था, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले किए थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने समझौते की सराहना करते हुए इसे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री स्टॉमर ने इस समझौते को युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बिना किसी शुल्क के नौवहन यानी नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जरूरत पड़ने पर बारूदी सुरंगें हटाने के अभियानों में सहायता देने की भी पेशकश की। कतर राज्य ने दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए अमरीका और ईरान के इस्लामी गणराज्य के बीच हुए समझौता ज्ञापन का स्वागत किया है,

0: जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी शामिल है। कतर इसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी शांति को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है। दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली सहित ईफो देशों ने रविवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए समझौते के बाद ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम पर उठाए जाने वाले कदमों के जवाब में वे उस पर से प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हैं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नौसैनिक नाकेबंदी को समाप्त करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक ऐतिहासिक अमेरिका ईरान समझौते की घोषणा के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 3.9% गिरकर लगभग $84 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट लगभग 4.8% की गिरावट के साथ $80 प्रति बैरल से नीचे चला गया, जो मार्च की शुरुआत के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है।
1: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आगे आई हैं वैश्विक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनको सुनते हैं।
2: अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिखाई देने लगा है। यूरोप और एशिया के लिए शेयर बाजारों में फिर से तेजी दर्ज की गई है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4% की गिरावट आई है। होर्मुज को फिर से खोलने की संभावना पर भी चर्चा तेज हुई है, जिसे मॉरिशस के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। विदेश मंत्री रितेश रामफल ने बताया, मॉरिशस जैसे छोटे टापू देश के लिए जो पेट्रोली सामानों के आयात पर निर्भर करता है, बेहद अच्छी खबर है। हम खाद्य सामान भी बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। फ्रेट के बढ़ने से दाम भी बढ़े हैं। शांति समझौता मॉरिशस और दुनिया भर के हित में है। समझौते की शर्तें तय करने और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए 60 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है, लेकिन पिछले समझौते के विफल रहने के अनुभव को देखते हुए सतर्कता अब भी बनी हुई है। जॉन क्लोड दुलिक्साक बताती हैं, ये 60 दिन बेहद कठिन और महत्वपूर्ण होंगी। इसराइल इस समझौते में शामिल नहीं है, पर युद्ध का हिस्सा रहा है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे समझौतों का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता, ये समय ही बताएगा, पर अभी के लिए बड़ी प्रगति हुई है।
3: À la table des négociations finales, nous avons appris par expérience que très souvent ce type d'accord, ces accords cadres ne sont pas toujours respectés à la lettre. Le temps nous dira, mais pour l'instant c'est une avancée.
2: इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। ये G7 शिखर सम्मेलन के बाद होगा, जिसका आरंभ सोमवार को फ्रांस में हुआ है और जिसका समापन बुधवार को होना है।
1: मॉरिशन अर्थनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एसएमई क्षेत्र छोटे और मध्यम उद्योगों के जरिए हजारों नौकरियां पैदा होती हैं, फिर भी उनके लिए चुनौतियां कुछ कम नहीं। लागत बढ़ रही है, कर्मचारियों की कमी हो रही है और वित्तीय मदद की भी कमी है। ये रोज की समस्याएं हैं। इसी के चलते छोटे और मध्यम उद्योग अधिक सहयोग की मांग कर रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी को लेकर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुल जाने की संभावना की खबर उनके लिए थोड़ी बहुत राहत लाई है। पंचसाबला में एक नाली में गंदा पानी बहकर लगून के पास पहुंच गया। इस पानी के बहाव को रोकने के लिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लगभग 100 टैंकर तैनात हैं। 5 दिनों में करीब 1000 क्यूबिक मीटर गंदा पानी पंप किया गया है। गलती से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पाइप टूट गया, जिसके बाद बुधवार रात से ही एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। नाली में भले ही मरी हुई मछलियां पाई गई हैं, लेकिन पंचसाबला के समंदर को प्रदूषित होने से बचाया गया है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: पिछले बुधवार जेक लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा गलती से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। ये पाइपलाइन जिसकी मरम्मत हो चुकी है, पंचसाबला के इंडस्ट्रियल जोन में डाइंग गतिविधियों संबंधित 80% और 20% घरेलू गंदा पानी ले जाती थी। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से निकलने वाला गंदा पानी पास स्थित एक नहर में बह गया, जो पंचसाबला लगून से लगभग 50 मीटर दूर स्थित हैं। प्रदूषण के कारण इस जलधारा में मछलियां और ईल मृत पाई गईं।

0: जतिल सुकराम ने कहा, एक पाइप टूट गई, ये करीब 180 क्यूबिक मीटर पानी प्रति घंटे पंप करती थी। हमने उचित मरम्मत की, दूसरे दिन पंपिंग का काम सामान्य हो गया। इंजीनियर हुमेश गोपल ने कहा, गंदे पानी की पंपिंग जारी है, उम्मीद है जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाए। लहरों से नहर के मुहाने और लगून के बीच बनी रेत के एक प्राकृतिक घेरे की बदौलत गंदा पानी लगून में नहीं जा सका। पर्यावरण मंत्रालय में जूनियर मंत्री फाब्रिस दाबिद ने कहा, पर्यावरण मंत्रालय और मछली मार मंत्रालय ने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बोटवी नगर पालिका और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर स्थिति पर निगरानी रखी है। सैंपल लेकर टेस्ट किए जा रहे
1: हैं।
0: आरबीओ रिसर्च सेंटर की प्रयोगशाला द्वारा समुद्री पानी के परीक्षण किए गए नतीजों के अनुसार पानी सामान्य समुद्री जल गुणवत्ता मानकों यानी कोस्टल वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप हैं। दो परीक्षणों को छोड़कर जहां पारा मर्क्यूरी का असामान्य स्तर पाया गया, विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। इस बीच मृत मछलियों पर किए गए परीक्षणों के नतीजों का इंतजार है। ये भी उल्लेख्य है कि पुएर्टो साब्ल के लगून में तैरने की मनाही है क्योंकि ये बंदरगाह क्षेत्र का हिस्सा है। बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ संघर्ष का विश्व दिवस आज है। ये मौका है अधिकारियों के लिए लापरवाही, हिंसा और दुराचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का। साल की शुरुआत से वेलफेयर एंड एल्डरली प्रोटेक्शन यूनिट के तहत 600 मामले दर्ज किए गए हैं। समाज सुरक्षा मंत्रालय कानून में सुधार पर काम कर रहा है ताकि दुर्व्यवहार के शिकार बुजुर्गों की रक्षा के लिए एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जा सके। हायर स्कूल सर्टिफिकेट के लिए सब्सिडियरी विषय के रूप में खयोल मोहिसिया की पहली परीक्षाएं इस साल और मेन लेवल पर अगले साल 2027 के लिए निर्धारित हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट को अक्रेडिटेशन के लिए जिम्मेदार संस्था के रूप में मान्यता दी है। आज इसी पर एक बैठक लगाई गई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में। ये उन प्रथम छात्रों में शामिल हैं जिन्होंने खयोल मोहिसिया को HSC में सब्सिडियरी विषय के रूप में चुना है। ये लोअर सिक्स के छात्र आए हैं।
2: Vu qu'ils ne m'ont pas des offres quand même, premier coup de lit, ça fait difficile pour moi. Mais après, j'ai décidé de lire mon langue maternelle, vu qu'il fait mon vacances avec ses
0: frères. Adhyapika Jayashri Mawwa ne kaha, HSC ke star par Kreol Mauricien ne ek bada charan paar kiya hai. Isse ek shaikshik vishay ke roop mein maanyata di gayi hai aur academic vishay banne par zyada chhatra ise tertiary level par bhi se le sakte hain. स्कूल सर्टिफिकेट में खयोल मोहिसिया पूर्ण रूप से परीक्षा का विषय है। 2026 में एक अहम चरण के तहत एक पहली बैच द्वारा HSC के स्तर पर सब्सिडियरी के रूप में इसकी परीक्षा दी जाएगी। MES के निदेशक सेज निंग टैक्चंग ने कहा, मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद कैम्ब्रिज ने MES को इसकी सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए मान्यता दी। हम अपने साझेदारों यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ मिलकर काम करेंगे। सब कैम्ब्रिज द्वारा वैलिडेट किया जाएगा।
3: La validation faite automatiquement, le KM devient sujet d'examen pour le A-level.
0: शिक्षा मंत्रालय अब तक SC के लिए 8 विषयों को सब्सिडी प्रदान करता था। अब ये फैसला लिया गया कि जो विद्यार्थी खयोल मोहिसिया को 9वें विषय के रूप में चुनेंगे, उन्हें भी ये वित्तीय सहायता दी जाएगी।
4: Gagne un petit peu bonne revendication et nous trouver qui
0: प्रीतम मोहित राम ने कहा, सरकार ने परीक्षा का सभी दायित्व लेने का फैसला किया जो एससी और एचएससी स्तर पर पहले साल परीक्षा देंगे। वर्तमान में लगभग 100 छात्र एचएससी स्तर पर खेल मौगिसिय का अध्ययन कर रहे हैं।
1: देश में हिंदी संस्था, पहली हिंदी संस्था तिलक विद्यालय अपनी शताब्दी मना रही है। उसकी स्थापना को 100 साल हो गए। इस अवसर पर कल मोतालोंग में हिंदी प्रचारनी सभा की सीट पर लोकमान्य तिलक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कई महानुभाव वहां पर उपस्थित रहे। जरा विस्तार इस खास रिपोर्ट में।
4: 12 जून 1926 को मोतालोंग में हिंदी शिक्षा प्रदान करने वाले पहले विद्यालय की स्थापना हुई थी। तिलक विद्यालय नामक इस संस्था का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में रखा गया था।
5: लिचन गांव फ्रीडम फाइटर एट द सेम टाइम लिचन हिंदी प्रोमोटर वन एंसेस्टर्स कंसिविना जो ची कोंटन गॉड जो कल्चर जो तीन गादर एंड प्लस जो तीन जे लिस नूवेन लेकोल जो तीन दन जो प्रीमियर लेकोल किन फे इसी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
4: एक शताब्दी बाद विद्यालय की विरासत को सम्मानित करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हिंदी प्रचारणी सभा द्वारा संचालित इस विद्यालय ने दशकों के दौरान हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि हिंदी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और युवाओं को इससे जोड़ने के लिए इसके शिक्षण को समय के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए।
6: हिंदी इज लूजिंग ग्राउंड and how do we make sure that future generations adopt, learn Hindi, use Hindi, speak Hindi? How do we simplify Hindi? Because there is so much competition about so many things that people have to learn. So simplify as far as you can. You must think about, not about yourself, but about the child, about the youth. Where he is, where she is, and how to take them from there.
7: जिस संस्था ने किसी एक उद्देश्य से एक यात्रा शुरू की थी, आज के दिन 100 वर्ष उसके पूरे हो रहे हैं और वो यात्रा पूरी गरिमा से सफलता की परचम लहरा रही है।
8: अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हिंदी का प्रचार इस तरह से ना हो सकते। हम तो सुविधा दे रहे हैं स्कूलों में और स्कूल के बाद भी जो ब्लूप्रिंट आ रहे हैं, एक प्लेजेंट सरप्राइज है उसमें। तमिल, तेलुगु, अनेक भाषा, उन लोगों को कैसे बच्चों को रुचि फिर से इस भाषाओं में दी जाए।
9: एम क्या है, क्या करना है हमको, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैं छोटा था, मुझे याद था, मैं गाँव में रहता था, अभी भी वहीं रहता हूँ। मुझे याद है किस तरह से हिंदी की सभा होती थी। हिंदी प्रचारिणी सभा के अध्यापक गली गली घर घर जाते थे, कितना जोर करके, कितना परिश्रम करके। हर गांव में पाठशालाएं होती थी, सायंकालीन पाठशाला, मैं वहीं पर पढ़ा था।
4: आज हिंदी प्रचारणी सभा के अंतर्गत देश में 150 से अधिक विद्यालय संचालित हैं। इस अवसर पर प्रतीकात्मक सम्मान भी प्रदान किए गए तथा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

0: विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस का दौर जारी है. नेदरलैंड्स और जापान के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा और कल भी कई मैच खेले गए थे, जिस पर पेश है ये खास रिपोर्ट.
1: आज सुबह फिलेडेल्फिया में ग्रुप ई के दूसरे मैच में आइवोरी कोस्ट ने अंतिम मिनट में जाकर इक्वाडो को 1-0 से हराया और ये गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी अमाद जालो ने स्कोर किया सब्स्टिट्यूट के रूप में आकर. एमबीसी 11 पर यह मैच सीधा प्रसारित किया गया था. अफ्रीका के हाथी कहलाते हैं आइवोरी कोस्ट वाले और इस ऐतिहासिक जीत से ये लोग बेस्ट ऑफ 16 में जाने के लिए

0: महत्वपूर्ण कदम उठा पाए। पिछली बार आइवरी कोस्ट की जीत हुई थी 2014 में। अब जबकि जो टीमें तीसरे स्थान पे आएगी, 12 टीमें, उनमें से 8 टीमें क्वालिफाई होंगी। इस तरह से आइवरी कोस्ट के लिए अगले राउंड में जाने का रास्ता खुल रहा है। पहली बार के लिए आइवरी कोस्ट की टीम ग्रुप स्टेज पार करके बेस्ट ऑफ 16 में जा सकती है। इससे पहले ग्रुप ई में जर्मनी की भारी जीत हुई, 7-1 से जर्मनी ने क्वासाओ टीम को हराया। इस प्रकार मानचाफ्ट इस प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाली टीम हो गई है, 239, यानी ब्राजील से एक गोल ज्यादा। इस मैच में एन मेचा ने पहला गोल स्कोर किया 6 मिनट पर जर्मनी के लिए, और क्वासाओ का गोल स्कोर किया कोमिनेंसिया ने। एक ऐतिहासिक गोल है क्योंकि क्वासाओ पहली बार वर्ल्ड कप में भाग ले रहा है और ये पहला गोल। इसके बाद 23वें मिनट से 28वें मिनट के बीच द नेशनल मैनचाफ्ट 6 गोल स्कोर कर पाया, खासतौर पर शोलोबेक, फिर हैवर्ट्स, पेनाल्टी पर मुसियाला ने गोल स्कोर किया, ब्राउन का एक गोल, उंदव का एक गोल और हैवर्ट्स का डबल। इस भारी जीत से जर्मनी की टीम अब ग्रुप ई में पहले हैं और उसके पीछे हैं आइवरी कोस्ट। इन दोनों के बीच मैच होगा शनिवार को रात्रि के 12 बजे। वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में नेदरलैंड्स की टीम को काफी कठिनाई हुई जापान की टीम के खिलाफ। स्कोर रहा 2-2। आर्लिंगटन में ये मैच खेला गया। सेकंड हाफ में जाकर वान डाइक ने पहला गोल स्कोर किया, 7 मिनट बाद नाकामुरा ने इक्वलाइज किया जापान के लिए। उसके बाद समरविल ने फिर से नेदरलैंड्स की टीम को लीड दिलाई, पर मैच के अंतिम मिनटों में द ब्लू सामुराई इक्वलाइज करते हैं ओगावा का गोल। नेदरलैंड्स और जापान दोनों के पास 1-1 अंक है।
1: और मैच का दौर जारी है। स्पेन खेलेगा काबो वर्दे के खिलाफ और रात 11 बजे बेल्जियम का सामना होगा इजिप्ट के साथ। इस पर ज्यादा विस्तार आप सुन पाएंगे।
0: यूएसए के मायामी स्टेडियम में आज बेल्जियम और इजिप्ट के बीच आमना सामना होगा। ये ग्रुप जी का पहला मैच है। ये 11 बजे खेला जाएगा। इसमें लेजाबल रूज यानी बेल्जियम की टीम फेवरेट हैं, पर इजिप्ट की टीम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रूडी गार्सिया की टीम है बेल्जियम, और 26 ऐसे खिलाड़ी लाए गए हैं जो बहुत दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। इसमें जेनो देबास्ट घायल हैं और रोमेलु लुकाकू, केविन डे ब्रुइन, जेरेमी डोकू इस टीम के मुख्य खिलाड़ी होंगे। बेल्जियम के सामने है मोहम्मद साला की टीम इजिप्ट, जो एक आउटसाइडर के रूप में यहां पर आ रहा है। ले फराओं एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है क्योंकि इन दोनों के बीच जब आमना सामना हुआ था वर्ल्ड कप 2022 में, तो 2-1 से इजिप्ट की जीत हुई थी। तो ग्रुप जी में ईरान और न्यूजीलैंड भी हैं। फिर कल सुबह 2 बजे दूसरा मैच है ग्रुप एच का, जिसमें यूरुग्वे का मुकाबला सऊदी अरब से होगा। यूरुग्वे की टीम जो फीफा रैंकिंग में 17वें स्थान पे है और सऊदी अरब 62वें स्थान पे, ये हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। मार्चेलियो बेल्सा की टीम ला सेलेस्ते इस ग्रुप में फेवरेट हैं। यूरुग्वे की टीम में वाल्वेर्दे, नूनेज, ओरोयो जैसे खिलाड़ी हैं, बेंताको भी हैं यहाँ पर। ये लोग चकमा दे सकते हैं। याद होगा आपको 2022 में अर्जेंटीना को हराया था पहले मैच में इस सऊदी अरब की टीम ने।
1: अब चले जाते हैं मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल दोपहर बाद 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों में कल दोपहर बाद से न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 18 से 20, अधिकतम 23 से 25।

इस और तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। कल सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग टेक्निकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड नोवेल फ्रांस में रॉयल गेट स्टोर के पास सतहत्तर साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देविका सामल पैदाशी नाम बिहारी और जो इंदिरा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे कमल सामल के मकान रॉयल रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। बोनेस्पोर रोड रिविया दे क्रियोल में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड किए श्री राजेंद्र लखन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके बेटे मन लखन के मकान बोनेस्पोर रोड रिविया दे क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबोलेन में बर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट नून। कालीचरण लेन काहोला लियान वाकवा में 42 साल की 42 ईयर्स ओल्ड की कुमारी रितिशा राम साहा जो अनुषा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान कालीचरण लेन काहोला लियान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। रॉ रोड पालमा में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री संजय बोधी जो जीसू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी पत्नी रीता हिरलाल के मकान रॉ रोड पालमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट नून। फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री स्वराज अपादू जो संजीव मेकानिसियन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 3 बजे उनके मकान फॉरेस्ट लेन लामारीवाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 3 PM। नंबर 82 रुतबा 54 में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री शाहनन की हृदय जो सारा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके मकान नंबर 82 रुतबा 54 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। एनएचडीसी कॉम्प्लेक्स मोडालबेया में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री महावीर मानिक की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विशाल मानिक के मकान एनएचडीसी कॉम्प्लेक्स मोडालबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिचित बेलेया में

0: Berg ki shmashan bhumi le jayi jayegi cremation tomorrow at 10 a.m. Saint-Antoine qu'on faut cromer, Saint-Antoine qu'on faut cromer, 75 saal ke 75 years old ke Shri Nand Kumar Kedan, Shri Nand Kumar Kedan, jo Krishna Sadao ke naam se zyada jane jate the, unki mrityu ho gayi hai. Unki arthi kal se pehar 3 baje, unke makan Saint-Antoine qu'on faut cromer se utha kar, अंतिम संस्कार के लिए कॉन्फुखो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो 8:30 PM. रेजिडेंस ओटेंसिया CO6 मॉड अल्बियर में रेजिडेंस ओटेंसिया CO6 मॉड अल्बियर में 50 साल की 50 इयर्स ओल्ड की श्रीमती मीतू देवी अजुदा श्रीमती मीतू देवी अजुदा जो प्रिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति रामलोल सूरज के मकान रेजिडेंस ओटेंसिया CO6 मॉडल बे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 10 एम रॉ रोड पालमा में 54 साल के 54 years old के श्री संजय बोधी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी पत्नी हिरलाल रीता के मकान रॉयल रोड पालमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट नून फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा में 56 साल के 56 years old के श्री स्वराजा पादू जो संजीव मेकानिसिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल से पहर 3 बजे उनके मकान फॉरेस्ट लेना माहीवाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो 8:30 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है
1: Center 95.5 North South 95.6
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं
3: मंगलवार 16 जून को सत्यार्थ प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में बोआडवाजो महिला समाज शाखा नंबर 5 एक यज्ञ और सत्संग का आयोजन कर रहा है सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस मंगलवार 16 जून को लावोचिया आर्य समाज में 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: नहीं सो। सोमवार 15 जून घड़ी मिला लीजिए, शाम के 6:33 हो रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। नई सोच इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं, आपके साथ जुड़ चुके हैं। अभी से लेकर 7 तक चलेगा नई सोच ये प्रोग्राम, और 7 से 9 तक आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को। तो चलिए, उम्मीद करते हैं पूरा दिन बहुत अच्छे से बीता होगा, और ये जो शाम का वक्त है, चलिए साथ मिलकर इसे यादगार बनाते हैं।

करते हैं, साथ मिलकर इसे मेमोरेबल बनाते हैं, जहां कहीं से भी साथ दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खूबसूरत गीत के साथ आज के इस नई सोच की शुरुआत करते हैं।

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: RM3 Radio.

यकीनन कभी कभार जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर हम होते हैं, ऐसे मुकाम पर होते हैं जहाँ पर जो कुछ हो रहा है ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, किस्मत भी हमारा साथ नहीं दे रही है, कोई अपना भी नहीं है साथ देने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी किस्मत की एक तैयारी होती है, क्योंकि हमारी तकदीर जो है हमें आने वाले कल के लिए तैयार करती है, हमें आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार करती है। आज अगर अकेला महसूस कर रहे हैं तो

समय जो है बदलता है, क्या पता कल को कोई ऐसा साथ देने वाला मिल जाए जिससे आपको कुछ कहना ही ना पड़े और बिना कहे हुए वो आपकी सारी बातें समझ जाए। आज अगर कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, क्या पता कल को चुटकियों में वो मुश्किल का हल भी मिल जाए और ऐसा लगे कि ये परेशानी तो उन खुशियों के सामने कुछ भी नहीं। तो बस जीवन में ये जो आशा होती है, जीवन में ये जो उम्मीद होती है, इसका होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना हम लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहेंगे उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिलेंगे।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. नहीं सो।
1: चलिए आशा कहे या उम्मीद कहे, ये सारे जो है एक ऐसा ज़रिया होता है, एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। एक सपना टूट जाता है, एक उम्मीद टूट जाती है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना, नए सपनों को बुनना, इसके लिए हमें तैयार करती है। तो क्या आप तैयार हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, फिर चाहे अभी आपकी लाइफ में जो भी हो रहा हो? तो चलिए, तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं ना कि लाइफ में हर एक एस्पेक्ट के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। लाइफ में जो कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, मतलब कि जो भी कुछ होता है, जो भी कोई आता है, जो भी कोई जाता है, कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाता है, कुछ ना कुछ हमें बता कर जाता है, कुछ ना कुछ हमें दे कर जाते हैं, कुछ होते हैं जो लेकर भी जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी चलते रहती है, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं इस आखिरी गाने की ओर, जिसके साथ नई सोच ये प्रोग्राम तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारी और आपकी मुलाकात जो है वो जारी रहेगी। 7 बजे से शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ की, जो चलेगा रात के 9 बजे तक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: मंडे 15th ऑफ जून घड़ी मिला लीजिए शाम के 7 बज चुके हैं और यहां से शुरुआत होती है दिलों की आवाज इस प्रोग्राम की। चलिए ऐसे तो 6:30 बजे से ही आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी से लेकर रात के 9 बजे तक दिलों की इस आवाज प्रोग्राम में आप जो है अपने डेडिकेशन हम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं। नॉट टू फॉरगेट आवर नंबर इज 4028070। यू कैन सेंड योर मैसेजेस आल्सो ऑन 5250600 पर। तो चलिए रेफ्यूजी फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं।
2: जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
3: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
2: तो चांद को ही देखे ना।
3: मगर वो सांस नहीं लेता।

0: चलिए यकीनन आपकी दिल की आवाज हम तक आप पहुंचा रहे हैं आपके डेडिकेशंस के जरिए. थैंक यू सो सो मच फॉर दिस. और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. देखते ही देखते जो है यहाँ पर 7:15 जो है लगभग बजने को है और रात के 9 बजे तक चलने वाला है हमारा ये दिलों की आवाज़ प्रोग्राम ऑन रेडियो मनोरंजन. और चलिए खूबसूरत गाने तराने हमेशा की तरह यहाँ पर हम आपके लिए आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपके मनोरंजन के लिए चला ही रहे हैं. बहुत सारे लोग जो है इस समय शायद डिनर करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आप सभी को बोनापेची शुभ आहार हम कहेंगे. और यहाँ पर अगला गाना जाता है गिरीश हरलोल आपके नाम. आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. संजय फिल्म का ये जो तराना है आपके नाम हम करते हैं. और यहाँ पर यही गाना जाता है सभी हरलाल परिवार के नाम जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं. तो चलिए कोई खूबसूरत सा तराना सुनना चाहते हैं किसी के नाम करना चाहते हैं You can connect with us. So ये जो गाना है हम और तुम इस गाने की फरमाइश आपने की है गिरीश जी. गाना चल पड़ा आपके लिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ों में.
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: चलिए यहाँ पर देखते ही देखते शाम के 7:28 ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज़ योर दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन। और ऐसे तो रेडियो पर तो आप हमें सुन ही रहे हैं, इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी है, बहुत सारे फॉलोअर्स ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। सो रेडियो के साथ साथ आप टिकटॉक पर भी हमारा साथ दे सकते हैं। आप सभी लवली लिसनर्स का और सभी फॉलोअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो तराना है, सनम बेवफा फिल्म का ये गाना होगा। लता जी और साथियों की आवाज़ों में गाना जाता है। सुदेवी जी आपके नाम वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। Enjoying your program, thank you so much। अगला गाना आपकी दीदी ललिता के नाम, सभी कुशल फैमिलीज के लिए, आत्माराम भैया के लिए, दीदी सुनीता है, शोभा देवीना मालिंगा से, सभी रामरतन परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू सो मच। चलिए इसी गाने को आपकी ओर से हमारी पूरी टीम के लिए भी थैंक यू सो मच। और आप भी अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। ये गाना उनके लिए भी चल पड़ा जो लता जी की आवाज़ को पसंद करते हैं, सनम बेवफा फिल्म का ये गाना। तो चलिए ऐसा ही कोई खूबसूरत सा गाना सुनना चाहते हैं या किसी के नाम करना चाहते हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ इन या दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: तो चलिए यहाँ पर दिलों की आवाज इस प्रोग्राम का आप सुन रहे हैं, साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर एंजल हमारा साथ दे रही है। एंजल, अगला गाना आपकी ओर से श्रेया शीशा शीशा और साथ में मौसी, आपकी मौसी सलूजा के लिए, सभी मथुरा परिवारों के नाम जो इस समय हमें

सुन रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कवि हमारा साथ दे रहे हैं, कवि के साथ रवि भी है, आपका भी शुक्रिया नाजिमा जी, धन्यवाद आपके साथ के लिए। फिया जी, थैंक यू सो मच फिया जी, ऐसे इस प्रोग्राम में हम पुराने गाने नहीं चलाते हैं, लेकिन इस अगले खूबसूरत गाने को आपके नाम हम करते हैं। And we have Yash from England, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Mr. and Mrs. Chaudhary, आपके भी प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। We have Yash and we have Yash also. Thank you so much. Avnish, आपका भी शुक्रिया। पूनम अनंत जी, आपका भी ढेर सारा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। और कवि शिरीष जी, ये गाना आपके लिए हम करते हैं। मैं हूँ ना फिल्म का ये तराना है, गाना है अभिजीत और श्रेया घोषाल जी की आवाज़ों में। ऑब्वियसली गाना जो है पिक्चराइज्ड हुआ था, शाहरुख खान साथ में थे, सुष्मिता सेन और फिल्म में और भी एक्टर थे ना, जाहिद खान था शायद, अमृता सिंह थी, अमृता एक एक्ट्रेस है जिसका नाम अमृता है, आप बताइए उस एक्ट्रेस का नाम क्या है अगर आपने ये फिल्म देखी है तो।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चलिए दिलों की आवाज़, और यहाँ पर अगला गाना जाता है सम्मान के नाम, सरफराज के नाम, डॉक्टर शनाया के लिए, पूरी फैमिली के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू नीलिमा जी, आपने हमारे 4 से 6 के प्रोग्राम को पसंद किया जो मिठुन दा पर था। कल मिठुन चक्रवर्ती इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, सो आपके सितारे ये प्रोग्राम उन पर डेडिकेटेड था और बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े थे, तो थैंक यू सो मच। अगर थोड़ी देर में मौका मिला तो एक और खूबसूरत सा गाना उन पर हम ज़रूर चलाएंगे। चलिए अभी के लिए इस अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। बादलों में छुप रहा है चांद की उजारी जी, ये गाना आपके नाम हम करते हैं। जट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे फैंटास्टिक प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। गायत्री बिशन दत्त जी, थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए। सरिता जी, केतिका जी, श्रद्ध, आमिन ए जी, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस समय सूरज जी हमारा साथ दे रहे हैं ट्रियोले से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस गाने की ओर। फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म का ये तराना है, अलका जी, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में।

0: चलिए खूबसूरत गानों का सिलसिला यहाँ पर जारी है और यहाँ पर अब बारी है इस अगले तराने की।
1: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
0: हेलो, इस समय इटली से राजन देवी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं लिसनिंग टू माय फेवरेट प्रोग्राम। और आज वो इटली में नहीं है, मॉरिशस में है, हमेशा इटली से साथ देते हैं। थैंक यू सो मच राजन जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप मॉरिशस में अपने हॉलीडेज को एंजॉय कर रहे होंगे। ऑलराइट, और अगला गाना आपके नाम हम करते हैं। तेरे नाम फिल्म का ये तराना है, आपकी ओर से जाता है अनिष्ठा के नाम, अर्चना के नाम, अनेका के नाम, सभी बुजावन फैमिलीज के नाम जो मेबक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सभी नंदू परिवार के नाम। मोस्ट वेलकम राजन जी। और ये अगला तराना हम आपके नाम भी करते हैं। थैंक यू सो सो मच एंड हैव अ वंडरफुल स्टे एंड वेरी, मतलब कि उम्मीद करेंगे कि आप इस हॉलीडे को बहुत ही इंजॉय करें अपनी

पूरे परिवार के साथ है। अरविंद जी अगला गाना सभी भी सुनी परिवार के नाम जाता है जो दागोचिया से हमारा साथ दे रहे हैं। अफीजा एंड सैलेश, नेक्स्ट वन इज फॉर यू। अनीता चामरू जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वाति जी थैंक यू आपके मैसेज के लिए। अश्मित जी आपका भी वेलकम हम करते हैं। वी हैव सूरज, वी हैव गुलशन, बेबी जान एंड राम अगला तराना आपके लिए। एलएफसी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। डैनी है जो गुडलैंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ओर से गाना जाता है सभी जगरू फैमिली के लिए। के अजोदा जी कैसे हैं आप, ठीक है ना। नीलिमा जी अगला गाना आपकी मामा रेनू के लिए, आपकी आंटी सुनीता के लिए जो इस समय पालमा से हमें सुन रहे हैं। और थैंक यू सो सो मच। हाय संध्या जी कैसे हैं आप, ठीक तो है ना सब। राइट और अगला गाना जाता है आफिजा और सैलेश, आप दोनों के नाम, आपके नाम को हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। सो तेरे नाम फिल्म का ये गाना चल पड़ा है। वैसे तेरे नाम इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था, सलमान खान इसमें नजर आए थे, भूमिका चावला थी।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: चले तेरे नाम फिल्म का ये तराना भी चल रहा था आप सभी के लिए और बढ़ते इस अगले गाने की और अगले गाना जो है यहाँ पर हम दिल दे चुके सनम का ये जो तराना है जाता है यहाँ पर एजे आपके लिए एजे की ओर से गाना प्यारी अंजू के लिए इस समय ट्रैवल करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं एजे और हमें सुन रहे हैं एमडी इस्लाम हमारा साथ दे रहे हैं रंबा जी अगला गाना आपके हस्बैंड अजय के नाम आपके बेटे कबीलेश के लिए साथ में विहा बिम ज्योति लोबिन जी आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया एस वित्रीवेल हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू सो सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाना जाता है वाइफ शर्मिला के नाम रोहित हमारा साथ दे रहे हैं सुरीनाम से थैंक यू सो मच रोहित करुणा जी आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विराज कृष्णा कैसे हैं जी ठीक है विक्रम और स्वीटीना अगला गाना आप दोनों के नाम ढेर सारा प्यार आप लोगों के नाम भी सूर्या जी नमस्ते कैसे हैं आप प्रिंसेस रीना इतने सारे हार्ट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चलिए यहाँ पर खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है कोई गाना अगर आप भी सुनना चाहते हैं किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं बेशक जुड़ जाइए हमारे साथ अभी के लिए हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये जो टाइटल ट्रैक है आप सभी के नाम चल पड़ा बहुत ही कमाल की फिल्म थी ऑब्वियसली इसमें अजय देवगन थे देन वी हैड ऐश्वर्या राय सलमान खान

संजय लीला बंसाली जी की शायद फिल्म थी। फिल्म का म्यूज़िक तो कमाल का था ही, फिल्म की स्टोरी, फिल्म की जो पिक्चराइजेशन था, मोहम्मद सलामत और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे इन द सेकेंड आवर ऑफ दिलों की आवाज़। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए यहाँ पर रात के 8:03 आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है ऑन रेडियो मनोरंजन एंड दिस इज योर सेकंड आवर ऑफ दिलों की आवाज। रात के 9 तक चलेगा दिलों की आवाज़ ये प्रोग्राम। और यहाँ पर चलिए बड़े ही प्यार से हमारे लिसनर्स, हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला गाना यहाँ पर तुम बिन फिल्म का ये टाइटल ट्रैक तुम बिन जिया जाए कैसे चित्रा जी की आवाज़ में जाता है, खासकर सनी आपके नाम इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देन वी हैव माधुरी जी, थैंक यू आपके प्यार भरे साथ के लिए। वी हैव लोवेना, गाना जाता है आपकी ओर से आपके मामा आशा के नाम, सभी फुकिया परिवार के नाम। मनीषा जयराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। शबनीस जी आपके भी प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। गुरिंदर, दनीश, सुबीता, सूरज जी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। और चलिए तुम बिन फिल्म का ये तराना चल पड़ा। आप सभी के नाम, ऐसे कुछ गाने होते हैं ना जिनको सुनकर किसी की याद आती है, या कोई ऐसी बात होती है, या कोई ऐसे मेमोरीज होते हैं जो कुछ गानों से जुड़े हुए होते हैं। आप बताएं कि इस गाने को सुनकर आपको किसकी याद आई।

0: दिलों की आवाज
1: और चलिए यहां पर दिलों की आवाज में बहुत सारे हमारे लिसनर्स बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हमारा साथ दे रहे हैं चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं गुलशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुलशन जी व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर रहे हैं हमारे टिकटॉक पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो के जरिए भी हमारा साथ दे रहे हैं सो इतने प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए शुक्रिया चलिए अगला गाना गीत फिल्म का ये टाइटल ट्रैक होगा आपकी मामा प्रभा के लिए आपकी सिस्टर दीक्षिता के नाम विहवाईशा सभी बोला फैमिलीज के नाम ये गाना आपकी ओर से आरजे हंसनी के लिए भी हम करेंगे स्वेनल हमारे साथ जुड़ी हुई है स्वेनल आपने जो गाना मांगा है इसे हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर में अगर हम चला पाए तो ऑलराइट मिथुन दापर पिक्चराइज्ड यस कल उनका जन्मदिन है मिथुन चक्रवर्ती का सो अगला गाना भाई श्रवण के नाम भाभी कृति के लिए अभिनव है कियान है नव्या है साथ में तिलक फैमिलीज के लिए जितने भी न्यूली वेडेड कपल्स है उन सब के नाम क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो ऐसे में जो है अगला गाना उनके नाम भी और चलिए बहुत सारे फॉलोवर्स यहां पर हमारा साथ दे रहे हैं वी हैव शाइलेन वी हैव अनीता राबी यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीषा जयराम जी वी हैव अश्विनी विमला देवी होप यश पोलीवाडू पूनम जी ये गाना आपके लिए भी दीपू ये गाना आपके लिए भी वी हैव आशा वी हैव यास्मिन जी जो बड़े ही प्यार से साथ दे रहे हैं

0: दिलों की आवाज की आवाज।
1: चलिए, खूबसूरत गानों का सिलसिला यहां पर जारी है, इन योर दिलों की आवाज। अब नॉर्मली दिलों की आवाज इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है, शाम का वक्त है तो कुछ मेलोडियस गाने चलाए, कुछ रोमांटिक तराने चलाए, कुछ ऐसे गाने जो सूदिंग हो, जो दिन भर की थकावट को दूर करे, जो पुरानी यादों को ताज़ा करे। तो चलिए, ऐसा ही कोई गाना किसी के नाम आप डेडिकेट करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। इस समय केविन जी बोबासन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगला गाना इन्होंने मांगा है मोताय ब्लॉश की एंजल के नाम। तो चलिए, अगला जो तराना है परदेश फिल्म का गाना है मेरी महबूबा, ये गाना जाता है केविन आपके नाम और आपकी ओर से प्यारी एंजल के लिए। ऑलराइट। इस समय प्रकाशवती जी बेल्जियम से हमारा साथ दे रही है, नाइस सिलेक्शन, थैंक यू सो मच प्रकाशवती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमेशा हमारा साथ देती है, इसके लिए थैंक यू सो सो मच। वी हैव रंगीता प्रकाश, हेलो जी आपके नाम भी अगला तराना, राजकुमारी जी आपके लिए भी ये अगला खूबसूरत सा गीत, शवि आपके लिए भी हम करते हैं, मालिनी जी, मधु जी, कामिनी जी सभी बड़े प्यार से साथ दे

रहे हैं बिश्वानी जमन जी, आपने जो गाना मांगा हम कोशिश करेंगे इसे चलाने की मौका मिला तो। रोहित यादव जी आपके भी प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। यास्मीन जी अगला गाना आपके लिए। फ्रांस से सरोज जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी यही गाना आपके लिए भी हम करते हैं और जस्ट मी यही गाना आपके लिए भी चल पड़ा। परदेश फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत और गाना जो है पिक्चराइज्ड हुआ था शाहरुख खान और महिमा चौधरी पर। ऐसे आप लोगों ने परदेश ये फिल्म देखी है? परदेश ये फिल्म सुभाष घई जी ने डायरेक्ट की थी और क्या कमाल की फिल्म थी, है ना। और फिल्म के गाने भी ऑब्वियसली बड़े ही लाजवाब थे। तो चलिए ये गाना आप सभी के नाम

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: ऐसे चलिए यहाँ पर दिलों की आवाज इस प्रोग्राम में जो है अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। आज सोमवार है और सोमवार को भगवान शिव की पूजा होती है, उनकी आराधना होती है। ऐसे तो इस प्रोग्राम में रिलीजियस गाने हम नहीं चलाते हैं, पर घूंघट फिल्म में एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत है। शायद घूंघट इस फिल्म में आयशा जुल्का नजर आई थी और इंदर कुमार थे, आई थिंक इंदर कुमार थे जो आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने काफ़ी कम फिल्में की हैं इंदर कुमार ने, लेकिन एक दो भी जो फिल्में की हैं काफ़ी अच्छी रही है उनकी फिल्में। तो चलिए अगला गाना अनीता जी आपके नाम हम करते हैं, आपकी ओर से सभी शिव भक्तों के नाम। यही गाना सरोज जी आपके लिए, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी बेटी का जन्मदिन था निर्विति, तो आपकी बेटी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। गियाना, रेशमा, खेमराज, आकाश, चेतन, मंजुलिका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के साथ के लिए शुक्रिया। ये गाना आप

तो चलिए सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। उम्मीद करते हैं ये सोमवार का दिन भगवान शिव की कृपा से अच्छे से बीत रहा होगा सभी के लिए। और अगला खूबसूरत सा तराना लीना जी आपके नाम और आपके हस्बैंड कृष्णा के नाम, जो आपसे थोड़े से नाराज़ है और उम्मीद करते हैं इस अगले गाने से उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। ओके, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये जो तराना है पूछो जरा पूछो, इस गाने में भी जैसे आमिर खान नाराज़ होते हैं तो करिश्मा कपूर उनको मनाते हुए इस गाने को गाती है, है ना। तो चलिए इसी तरह से उम्मीद करते हैं कृष्णा जी आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। धनुष जी बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हैं, जय श्री जी थैंक यू सो मच। भूषण दामरी जी अगला गाना आपके लिए भी हम करते हैं, वाकवा से शोभा जी साथ दे रही है आपके लिए भी ये गाना चल पड़ा। मिमी है, माला जरी जी है, दिनेश गोपी जी है, जॉर्डन जी आप सभी के साथ के लिए शुक्रिया। थैंक यू केविन जी, थैंक यू सो मच। चलिए आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। ऐसे बहुत सारे फॉलोअर्स इस समय टिकटॉक पर हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे इस लाइव को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, साथ ही आपके मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं ऑन व्हाट्सएप ऑन 5250 6200 पर। और चलिए अगला गाना यहाँ पर आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करते हैं।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: चले यहां पर प्यार में कभी कभी बदले में प्यार मिलता है कभी प्यार में खुशी मिलती है कभी प्यार में दुख मिलता है कभी कभी किसी को प्यार सजा लगता है किस्मत की बात होती है किसी ने हमसे कहा था कि प्यार मिलना ये किस्मत की बात है हम कितना भी प्यार दे दे बदले में प्यार तभी ही मिलता है जब किस्मत में लिखा होता है तो चलिए आप सबको अपना प्यार मिले यही विश हम करेंगे आप सभी के लिए और यहाँ पर खुशी फ्लोरियाल से हमारा साथ दे रही है अगला तराना सिर्फ और सिर्फ खुशी आपके लिए ओके परदेस फिल्म का गाना है चलिए यही गाना आप सभी के नाम हम करते हैं रजनी जी शर्मिला जी हमारे साथ है किरण जी अगला गाना आपके हस्बैंड पिंकू के नाम बेटा है आयुष बेटी है अदिति नुरैदीन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े हैं पूजा बालगोविंद जी अगला गाना आपके लिए भी तहजीब जी शुक्रिया साथ देने के लिए वी हैव अरुणा वी हैव कवि किशन जी जो बड़े ही प्यार से साथ दे रहे हैं थैंक यू अनीता जी आपके इस मैसेज के लिए आपका गाना हमने चलाया तो आपको अच्छा लगा मोस्ट वेलकम अभी के लिए परदेस फिल्म का ये गाना हो जाए ये भी एक आइकॉनिक गाना है

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चले इन खूबसूरत इन सोने सोने गानों को सुनते सुनते कब 9 बजने को चला पता ही नहीं चला। आप सभी लवली लिसनर्स का साथ हमें मिला, टिकटॉक पर हमारे सभी फॉलोअर्स का साथ हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत

जो खूबसूरत सा तराना है आप सभी के नाम हम करते हैं और इसी के साथ हमारी आपकी मुलाकात भी खत्म होने को चली। जल्द हम आपसे मिलने फिर लौटेंगे रेडियो मनोरंजन पर। जी हाँ, कल रेडियो मनोरंजन पर हम आपसे मिलेंगे भक्ति में शक्ति इस प्रोग्राम में। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। 9 बजे रेडियो मॉरिशस से सीधा प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर जुड़े रहिए। गुड नाइट आप सभी को।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

0: भोजपुरी की धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात 15 जून 2026 के 9:06 होल बा और आपके अपन मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का में हम किरण आप सबको एक स्वागत करत है। हमार करजोर नमस्ते स्वीकार करा ई उम्मीद के साथ कि आज के दिन आप सबको के बहुत अच्छा से बीतल बा। आप में से कितने जना के घर में अभी एक बगल फुटबॉल के धूम मचल बा, तो दूसर बगल आप बेसब्री से अपन मनपसंद प्रोग्राम के इंतज़ार में हव। तो चला ई प्रोग्राम के शुरुआत करी जा। जेकर इंतज़ार आपके रहेला, ऊ चाहे कुछ भी घटी उधर, कुछ भी बड़ा कोनो इवेंट में रही, लेकिन आपके चाहे अपन रेडियो सुने के, तो चला आज के पहला गीत आप सब कोई के नाम कुणाल हिरीलाल के आवाज़ में।

रात के 9:11 होलबा और आज जून महीना के 15 तारीख है। आज सकब्जा बोले ये जून बरिस बा, ये बरिस के हमने बीचों बीच माहिसा एक तर जून महीना जोन की ये बरिस के छठा महीना है और जून के बीचों बीच मतलब कि आधा बरिस पार कर दिली सा। और ऐसन में यही आशा बा कि जैसे जे तैसे ये जोन बरिस बा वो कटले आवता, कभी छाँव तो कभी धूप, लेकिन अगर अभी तक सब कुछ ठीक चला था तो ये उम्मीद चाहे रखे के कि आगे भी एकर से बढ़िया रही। और अभी रात के समय बा बोलल जला रात के जोन विचार करके सुते जेबा तो वो विचार सच में एगो हकीकत के रूप ले लेवेला। बोलल जला अंतमति सोगति, मतलब कि जोन आखिरी विचार करके आप सुते जेबा तो वैसन ही गति आपके होई, वैसन ही आपके वास्तविकता रही। तो चला यही प्रण ले जा कि ये जोन बाकी बरिस बा वो बहुत अच्छा से बीती। अगला गीत के फरमाइश कर ले हवन आत्माराम जी बेलिया से। आप नंदकेश्वर के आवाज़ में सुने चाहत हवा पैसा बात करेला, सच में पैसा बात करेला। पैसा नहीं रही तो आपके बोली के भी कोनो मोल नहीं रही। और आत्माराम जी ये गीत अपन चार गो बहिन के नाम करत हवन, ललिता, सुदेवी, छोटी और प्रभावती के नाम।

विजय बेनी प्रसाद, आप शामुनी से हवा और ये गीत आप पूरा दुली परिवार, बेनी प्रसाद परिवार और अपन दोस्त शास्त्री बुनुमाली के साथ साथ जितना कोई भी ई बखत ई प्रोग्राम सुना था वजह आप सब कोई के नाम करत हवन। तो विजय जी, आपके पसंद के गीत चला था।

आज 15 जून 2026 के जितना कोई भी अपन जन्मदिन मनावत हवा जा जेकर भी घर में अभी खुशी के माहौल छाल बा फजर से और पार्टी चलता या फिर दावत चलता या फिर पारिवारिक जुटाव बा या फिर अपनों ही के साथ साधारण रूप से जे आप अपन जन्मदिन मनावत हवा या अपन परिवार के सदस्य के जन्मदिन मनावत हवा त आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। आप सब कोई के जीवन में खुशी सुख शांति और मुस्कुराहट रहले रही ऐसन हम के शुभकामना बा। और आज एगो खास जन्मदिन बा, आज हमर भी माताजी के जन्मदिन बा और हमर माताजी प्रेमिला जी के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और ये शुभकामना देवे खातिर हमर संगे पूरा परिवार जुड़ता, उनकर बेटी शशि, उनकर बेटा, उनकर नाती पोता रुद्राक्ष, कबीर, यौवन, श्लोक, हंसले और उनकर सब बहन, उनकर सब भतीजा भतीजी और सब परिवार और ख़ास तौर पर उनकर पतिदेव सुरन के ओर से जन्मदिन के ढेरों शुभकामना। बुरल जना जे आपके जीवन दिलेबा, आपके जे जननी है उनकर जन्मदिन दुनिया में सबसे बड़ा जन्मदिन है। तो जे जन्म दिलेबा, जे हमके जन्म दिलेबा, जेकर बदौलत आज हम हैं जहाँ पर हैं, उनका जन्मदिन के ढेरों शुभकामना। जन्म दिवस हो तुझको मुबारक हमको जन्म देने वाली। और आप प्रेमिला के साथ साथ अभी जितना कोई के भी जन्मदिन मनावल जाता आज के ई विशेष दिन पर, आप सब कोई के हमर दिल से, दिल के गहराई से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।

आज 15 जून 2026 के रात्रि के एगो जबरदस्त मैच चलता और हमार ख्याल रहा कि ढेर कोई नहीं फोन करी, सब कोई फुटबॉल के पीछे रही, या तो जितना परिवार के सदस्य टीवी के सामने बैठल बा ओकर साथ दे बजा, लेकिन हमने के प्रोग्राम के जो रस बा जो स्वाद बा वो अलग ही है। हमने के महफिल वो चाहे कुछ भी होई वो सजबे करेला और आपके फ़ोन कॉल्स नहीं आए ये बात के तक कोनो गुंजाइश ही नहीं है। आपके फ़ोन कॉल्स आते बा एक हला 5-6 फ़ोन कॉल्स आवता हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब कोई के ये जो दिलचस्पी बा, आप सब कोई के स्नेह आपके प्यार खातिर। और अगला गीत के फरमाइश करा था वन तेहोश से शांति जी सुनने चाहा था वन हमर नाना राजेश खाना हमर नानी हेमा मालिनी गिरीश रूपचंद के आवाज़ में ये बहुत ही मजाकिया गीत जितना नाना नानी अभी हमने के सुनत है वजह आप सब कोई के नाम ये गीत शांति जी के ओर से। और शांति जी ख़ास तौर पर दागोचिया अपर दागोचिया के अपन पूरा मराठी परिवार और उनकर भगीना ओम के नाम ये गीत कर रथवन और आप बोल थवा कि ये गीत आप हमार नाम भी करत हवा बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो जितना नाना नानी बा सुना जा आपके हेमा मालिनी और राजेश खाना बतावल जाता काहे नहीं, चला ये गीत के संगे आनंद ले जा।

आजकल ढेर कोई के जन्मदिन बा और ढेर कोई के जन्मदिन के फरमाइश भी आवता पूर्णिमा फोकिरा जी बोलत हवन कि उनकर नाती के जन्मदिन बा शायन कालिया चेटी जे गुडलैंड्स के हवन शायन के उनकर माँ पिंकी उनकर पिताजी दादा दादी और खुद उनकर नानी के ओर से और मौसी और सब परिवार के ओर से जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और पूर्णिमा जी हमेशा की तरह अपन सब सखी सहेली अपन सब दोस्त अपन सब जो नुकर ज़िले भवनजा गुशनुओ के सब कोई के नाम ये गीत करत हवन और सब कोई के शुभकामना आज शायन कालिया चेटी के। आपके जीवन में हमेशा सुख शांति रही, आपके जीवन में हमेशा प्रगति बनल रही, ऐसा हमनी के शुभकामना बा। उधर चाची शांता भी फ़ोन कर लन और शांता सुकारी जी और आपसे जमील से हवा आपके भी नाती के आज जन्मदिन बा। नाती के नाम है नरेश, नरेश के बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत आशीर्वाद उनकर पिताजी अशोक के ओर से, दादी के ओर से दादी शांता और फिर चाची किरण हवन, चाचा रवीन और उनकर गर्लफ्रेंड निधि के ओर से। नरेश के बहुत बहुत जन्मदिन के शुभकामना और पूरा परिवार नरेश के आशीर्वाद देवता प्यार देवता और लंबा आयु के साथ साथ जीवन में सफलता के शुभकामना प्रकट करता। तो पूर्णिमा फोकिरा के आवाज़ में एगो सुंदर गीत पलना में झूले श्री राम, शांता जी के नाती नरेश के नाम और फिर पूर्णिमा जी के नाती शायन कालिया चेटी के नाम और जितना कोई के भी जन्मदिन आज मनावल जाता आप सब कोई के नाम।

0: रीजन गीत अभी चला संतोष महादेव के आवाज में। ये खास तौर पर फौजिसक के उमा जी के नाम रहल। उमा जी जिनकर परिवार में अभी अभी एगो विवाह संस्कार होल, एगो शादी विधि होल, तो उमा जी ये गीत आपके नाम रहल। और जितना भी परिवार में आजकल शादी ब्याह के मौसम चलता, शादी ब्याह के समा बंधल बा, आप सब कोई के ये शुभकामना हमने प्रकट कर रहे जा इस शुभ अवसर पर। और ये वैवाहिक दंपति हमेशा खुश रही, सुख शांति से रही, परिवार के आशीर्वाद के साथ रहन सा, और आपस में उन लोग के बीच जो प्रेम बा, जो प्यार बा, जो मोहब्बत बा, वो बढ़ते रही, ऐसा हमने के शुभकामना बा। और अगला गीत किशोर किमिया के आवाज़ में एगो बहुत ही मशहूर गीत, ऐसा एगो गीत जो बॉलीवुड में काफ़ी धूम मचेले बा। तो ये गीत के धुन पर कैसे किशोर जी भोजपुरी गीत सजेले हवन, चला एकर आनंद संगे उठाई जा।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 10:03 हो गल बा और हमने के सुने होला लोग खाली मॉरिशस में ही नहीं बल्कि मॉरिशस से बाहर भी आवन जा वो चाहे हमने के फोन कर या नहीं उन लोग के जो हित मित्र बा संबंधी बा सगी संबंधी हमने के साथ संपर्क रखेला जा और विदेश में जो लोग बसल हवन जा वो लोग खातिर भी गीत मांगत हवा जा और ऐसन में साजिद हमेशा के तरह अपन दोस्त अपन सहेली सरोवर के नाम अगला गीत करत हवन साथ में जितना कोई भी ई बखत सुनत हवा जा आप सब कोई खातिर ई गीत चल लाली सिनेमा देखे एगो ऐसन गीत जोन ई प्रोग्राम में हमर प्रोग्राम में शायद पहला चला था तो हम भी सुने चाहत है हम भी देखे चाहत है कि ई गीत में का ऐसन बात बा कि साजिद इतना उत्सुकता के साथ ई गीत के मांग कर ले हवन तो चला सुनी जा साजिद के पसंद पर चल लाली सिनेमा देखे

10:10 होला बा रात के और अगला गीत के फरमाइश कर ले हवन भाई अब्बू जे आप ही की तरह हमेशा ये प्रोग्राम सुनेलन और फोन करेलन और अपन मनपसंद गीत मांगेलन और उनका मनपसंद गीत में या था छोड़ के मोरिसवा बा या फिर धोती पोती पगड़ी और आज आप आतिश भागीरथी के आवाज़ में ये गीत सुनने चाहता था वह हमेशा की तरह अबू अफेज अयाज जहीरा रईस काला चोटी आपके दोस्त अपी उनकर पत्नी के नाम और जितना कोई भी ये बखत काम करत हवन जा रात के जितना कोई सफ़र में हवा जा जितना कोई ये प्रोग्राम सुनत हवा जा आप सब कोई के नाम ये अगला गीत

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 10:20 होलबा और अगला गीत के फरमाइश आलबा प्रभावती दादी के ओर से। प्रभावती दादी जे बहुत से हमने के श्रोता के तरह उनकर तबीयत नासाज बा, उनकर

आज लोपिताल में रेंडेवू रहल और बड़थवन की उनकर गोर में दर्द बा और ऐसा ढेर हमने के सुने होला लोग हवजा जिलो के ढेर दर्द बा या तो कमर में या तो गोर में या फिर आपके कोनो ऑपरेशन होल बा या फिर आपकी तबीयत खराब चला था तो आप सब कोई के हमार ओर से यही शुभकामना बा कि आपके स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और बोलल जरा कि ये जोन बीमारी बा एकर बारे में ढेर बोलबा तो वो बीमारी सच में बुझाला आपके सामने आके बैठ गल बा इ खातिर बीमारी के चर्चा ढेर नहीं चाहिए करे के दुख दर्द के चर्चा जितना हो सके तो नहीं कर उ जितना ओकर चर्चा करबा उतना ओके महसूस करबा जितना ओके भुलाए के कोशिश करबा उतना ओकर असर कमती रही तो ये बहुत अच्छा बात बा कि आप लोग के स्वास्थ्य चाहे कैसन भी होई आप लोग जुड़ जाला जा अपन मनपसंद रेडियो के साथ और अपन मनपसंद गाना सुनने के फरमाइश भी करे ला जा। तो प्रभावती दादी सुने चाहत हवन एगो शादी के गीत आपके खातिर ये शादी के गीत हम चलावे जात हैं और गल महीना के प्रभावती दादी के 80 बरिस हो गल तो एक बार फिर प्रभावती दादी आपके जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना आज जितना कोई के भी जन्मदिन बा आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना अगला गीत आप सब कोई के नाम प्रभावती दादी के

0: RM3 Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

वक्त रात के 10:10 हो गल बा और आप लोग के मैसेज भी आते बा हमने के व्हाट्सएप नंबर पर और हमने के सुना थवान वाकवा से सुदेवी हमेशा के तरह और आप अपन सब परिवार के नाम ये गीत अगला गीत करा था वा आत्मा राम भैया ललिता दीदी सुनीता दीदी शोभा देवीना मालेगा के राम रतन परिवार राम गुलाम कोतवारू परिवार और जितना कोई भी ये बखत हमने के सुना था वन जा आप सब कोई के नाम ये अगला गीत सुदेवी जी के ओर से जे वाकवा से हवन अब हमने के सुनत हवन खाली हिये से नहीं बल्कि विदेश से भी कितने जना सुनत हवन जा हमने के फ़ोन करत हवन जा और मैसेज भी भेजत हवन जा और लंदन से राजेन रघुपत हमने के सुनत हवन राजेन जी ये अगला गीत आपके नाम नया सिरे और फिर हमने के साथ जुड़ल हवन फ्लिक ऑफ लक से अनीता जी और अनीता जी भी हर रोज़ प्रोग्राम सुनेलन और फरमाइश करते रहेलन अपन पति राज बेटा अंतिश अंकुश बहू मनीषा आशिमा पोती हिमेशा आध्या पोता अंश सब के नाम आप ये अगला गीत करत हवा और ख़ास तौर पर एमबीसी के जितना भी टीम ये बखत काम करता रेडियो पर सब कोई के नाम अगला गीत तो चला आप सब कोई के फरमाइश पर ये अगला गीत चली कुनाल बाबूलाल के आवाज़ में नया सी

ममा के कंच पकाए मछी के खाई हो ममा के खाई हो

बेटी घरे का भाई हो भाई बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो

रात के 11 बजे में 15 मिनट कमती बा और ई बखत ले आप साथ देवत हवा। आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और 15 मिनट में हमने के ई प्रोग्राम समाप्त हो जाए और ई प्रोग्राम के साथ ही मतलब कि जैसे 11 बज जाए तो एकर बाद हमेशा की तरह सुनहरे पल प्रोग्राम चली। और अभी तक आप लोग साथ देवत हवा जा ई खातिर एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सब कोई के। कोनो कोनो गीत बा जेकर फरमाइश आ रहा पहला तो बा रेशम के सारी रंभा राम दोहल के आवाज़ में ई अभी चली। और एकर बाद जलसा के रात राधा के शोभेला और नीरज गुप्त मधु के आवाज़ में एगो बहुत जोशीला गीत। और इस सब गीत के साथ हम आपसे विदा चाहब। हमके आज्ञा दा हमने के मुलाकात का फजेर के फिर से होई हमेशा की तरह हमारी धरोहर कार्यक्रम में। और नहीं तो हमने के अगला मुलाकात ई कार्यक्रम के अंतर्गत भोजपुरी तड़का में आवत बीफे के होई। तब तक अपन ख्याल रखिया और अच्छा नींद सुता अच्छा विचार के साथ। फजेर के भी उठबा तो अच्छा विचार के साथ। जितना भी इधर उधर के जो खबर बा वो तो रेडियो टीवी पर सुनते बा ओकर से थोड़ा दूर रहा। कहे कि जितना बात अपन दिमाग में अनबा उतना वो सच्चाई के रूप लेवेला। अच्छा अच्छा सोचा अच्छा चीज देखा अच्छा चीज सुना। आप सब कोई के शुभरात्रि नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your 109 station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। पुरानी फिल्मों के गीत आज भी इसलिए अमर हैं क्योंकि उनमें सिर्फ सुर नहीं, दिल की सच्चाई बसी हुई है। आइए उन अनमोल नगमों का स्वागत करें। जी हाँ दोस्त, आप सभी लोगों का भी स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। गुड इवनिंग, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम।

शाम एक नई कहानी लिखी है और हर पुराना गीत उस कहानी को और भी खूबसूरत बना देता है। तो चलिए आज की शाम, आज की रात को यादों के नाम करते हैं और उन्हीं खूबसूरत यादों को दोबारा फिर से जीने के लिए आप तैयार हो जाइए ऑन रेडियो मॉरिशस।

जिंदगी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना चल रही हो, पुराने गीत हमें वो दो पल रुक कर जीना सिखा देते हैं। इसी सुकून के साथ बने रहे, हमारा साथ यूं ही देते रहे। ये गीत सिर्फ रेडियो पर नहीं बज रहे हैं, ये हर उस दिल में गूंज रहे हैं जहां प्यार, यादें और एहसास आज भी जिंदा है। और ये है आपका सुनहरे पल।

0: वैसे हर लफ्ज, हर धुन और हर आवाज में एक जादू है मेरी जान, जो सिर्फ पुराने बॉलीवुड के गीतों में ही मिलता है। आज उसी जादू का आनंद लीजिए और आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत खूबसूरत नगमों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

अडा है तो हम तो कहेंगे कि एक कप चाय, ठंडी हवा और रेडियो मॉरिशस पर बजते पुराने गीत, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का असली मजा इसी में है। बिल्कुल जी, अगला नगमा हमारी तरफ से उन तमाम सुनने वालों के नाम जो प्यार से शिद्दत से बैठे हुए हैं और जो हमारा साथ गुनगुना रहे हैं।

होता है, लेकिन एवरग्रीन गाने सबके दिलों को एक एक साथ जोड़ देते हैं। आज हम वही दिलों का रिश्ता लेकर आए हैं। कभी अपने माँ बाप के साथ बैठकर ये गीत सुनिए और समझ जाएंगे कि असली संगीत किसे कहते हैं। ये है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, दिल से आपके लिए।

कुछ गीत वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं और आज हम उन्हीं गीतों का खजाना लेकर आपके बीच हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से एंजॉय कर रहे हो और बस हर इन खूबसूरत इमोशंस को फिर से जी रहे हो। बस यूं ही साथ देते रहे कि निशा का ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, फिर से मिलेंगे एक और सुनहरे पल के खूबसूरत शो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shudrandiriki Hrudayapurvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum Vanakkam.
7: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: Mauritius.
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशियस.
0: रेडियो मॉरिशियस.
1: रेडियो मॉरिशियस.
2: मैंने आरडी बर्मन को उसके बचपन में देखा, उस वक्त जब मैं मिस्टर एसजी बर्मन के फादर के साथ काम किया करता था. फिर कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि ये म्यूजिक डायरेक्टर हो गए. ये वेस्टर्नाइज ज़्यादा करते थे म्यूजिक को, तो बर्मन साहब को ज़रा इस पर शिकायत होती थी. तो एक दिन हमसे कहने लगे कि भाई तुम इसके चाचा हो, तुम ज़रा इसको कहो. तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा देखिए अंकल, बाबा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखूंगा, लेकिन मैं उनके राह पे नहीं चलूंगा, मैं अपना रास्ता कुछ अलग निकालूंगा. आर डी बर्मन एक एरा था, एक स्कूल था हिमसेल्फ. वो लेवल मेरे ख्याल में दोबारा आना आसान नहीं है.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस